0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, When they are under stress, कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग, द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट, एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुणे

0: 7.8 खुश रहो खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका स्वागत करती हूँ। आज ज्ञान से रूबरू इस कार्यक्रम में प्रस्तुति कुछ सुनहरे पल जिसे ज्ञान के पिंजरों से छुड़ा कर लाई हूँ, तो क्यों ना आज ज्ञान की कुछ ऐसी बातें की जाए जिसकी परख शायद ही किसी होती है किसी को नहीं होती है। तो आज का हमारा विषय है बुद्धि की परख शक्ति को बढ़ाए। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। ऐसे तो भारत देश एक महान तीर्थ स्थान भी कहते हैं है, क्योंकि भारत में ही देवी देवताओं का स्थान रहा है शुरू से और अंत तक देवी देवताओं की पूजा इस भारत की धरा पे ही होती आ रही है, सदियों से होती आ रही इस परंपरा को आज भी सभी भक्तगण बहुत श्रद्धा से निभा रहे हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत में देवियों का जो स्थान होता है वो देवियों को अष्ट पूजाएं दिखाई गई है। अष्ट पूजाएं अष्ट शक्तियों का प्रतीक है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अष्ट शक्तियों की जरूरत पड़ती है। वे शक्तियां है परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, सहन शक्ति और संभालने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और समेटने की शक्ति। इन सभी शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ शक्ति परखने की है। परखने की शक्ति जो है वो आती है पवित्रता की धारणा से। जितना मनसा वाचा कर्मणा अगर आप और स्वप्न में भी अगर आप पवित्रता को धारण करते हैं और उसकी धारणा को अपनाते हैं तो उतना सहज ही परखने की शक्ति आती जाती है। बुद्धि की स्वच्छता ही दिव्यता को बढ़ाता है और व्यर्थ विचार संशय या संदेह की भावना बुद्धि को मलिन बना देती है। जितना पारदर्शी बनेंगे उतना बुद्धि का दिव्यकरण होगा। इससे किसी भी समय कैसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को परख कर निर्णय दे सकते हैं, धोखे से बच सकते हैं। अगर बार बार धोखा मिल रहा है, दुख की महसूसता हो रही है तो बुद्धि को स्वच्छ करें। जितना बुद्धि शुद्ध होगी उतना कदम कदम पर सफलता को प्राप्त करेंगे। एक होता है यहाँ पर हम देखते हैं कि परख शक्ति बढ़ाने के कुछ उपाय भी होते हैं, जैसे मनसा की पवित्रता। मन में अगर पवित्र भावना है, मन में किसी भी व्यक्ति वस्तु और पदार्थों के प्रति नकारात्मक भावना है, ईर्ष्या द्वेष घृणा की भावना है तो मन को पवित्र नहीं कहा जाता है। मन में सर्व के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना का विचार हो, समस्याएं कहीं से भी किसी भी रूप में आए, चाहे व्यक्ति निमित्त बने या प्राकृतिक आपदाएं, कैसी भी परिस्थिति में मन में अशुभ भाव उत्पन्न ना हो तभी मन पवित्र हो सकता है। मन में शुद्ध विचारों की जो तरंगे प्रवाहित होती है उनसे वातावरण भी और आत्माएं भी सकारात्मक हो जाती है। इसलिए विचारों की शक्ति को समझना

और प्रयोग में लाना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है। जो कर्तव्यनिष्ठ मनुष्य होंगे उनके मन में सबके प्रति सुखदायी शुभ भावना और शुभ कामना से भी यही विचार चलते रहेंगे। तो अपने को यहाँ पर चेक करें कि मेरे मन में किसी भी प्रकार के विचार आते हैं। विचार ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। विचार जो है एक सूक्ष्म क्रिया है। इसलिए कहा जाता है कि विचार भावना और दृष्टिकोण को कोई व्यक्ति छुपा नहीं सकता। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। और तब तक के लिए आइए।

0: नमस्कार दोस्तों,
1: तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है बुद्धि की परख शक्ति को बढ़ाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अक्सर लोग बोलने से पहले आज के युग में सोचते कम है, बोलते ज्यादा है, जबकि मनुष्य को चाहिए कि वो कुछ भी बोलने के पहले सोचे जरूर कि वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं वाचा की भी पवित्रता होनी चाहिए। स्लोगन है कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो और सोच समझ कर बोलो। जो मानव अपने मुख की मुख को वो मधुर बनाता है, वह सहज ही सबके दिलों में स्थान बना लेता है। सत्यवादी बनने के लिए अपने शब्दों पर लगाम दे। जो जितना शब्दों पर लगाम रखता है उसके शब्द उतने ही प्रभावशाली होते हैं। कर्म भी हमें करने वक्त ध्यान रखना है कि हमारे कर्म सुकर्म है या विकर्म है, तो कर्मों में भी पवित्रता हो जाएगी। तो हमें अपने कर्मों पर अर्थात कर्म अर्थात क्या होता है, संबंध, संबंध संपर्क में सादगी शालीनता हो, मान शान की इच्छा और आकांक्षाएं, संबंध संपर्क में भिन्नता लाती है। व्यक्तित्व को ऊंचा बनाने के लिए नम्रता निर्माणता के साथ संपर्क में आए तो संतुष्टता जीवन में स्वतः आ जाएगी और सबके माननीय और प्रशंसनीय बन जाएंगे।

अक्सर देखा जाता है कि लोग स्वप्न में भी कभी कभी कुछ बुरे स्वप्न देख लेते हैं, तो यहाँ पर हमें देखना है स्वप्न में भी पवित्रता हो। स्वप्न की पवित्रता के लिए स्वप्न ही प्रत्येक व्यक्ति की वास्तविक पहचान होती है। जीवन को पारदर्शी बनाने की परख है स्वप्न। सत्व प्रधान, रजो प्रधान और तमो प्रधान, इन तीनों स्टेज में स्वयं को चेक करना है कि किस स्टेज का स्वप्न आता है। तरुण की ध्वनि ही स्वप्न का रूप लेती है। मनसा, वाचा और कर्मणा, किस प्रकार के कर्म करते हैं, चाहे कॉन्शियस या अनकॉन्शियस स्थिति में, जागृत अथवा सुषुप्त अवस्था में, यह स्वप्न से ही मालूम पड़ता है। यदि डरावने या बुरे स्वप्न आते हैं तो अवश्य ही दुखदायी कर्म किए हुए हैं, भले ही व्यक्त रूप में न किए होंगे, परंतु विचार ही आधार है कर्म के। दो नेत्रों से हम पूरी दुनिया को नहीं देख सकते, परंतु मोबाइल हाथ में है तो कभी भी किसी भी समय पूरी दुनिया को देख सकते हैं। अच्छाई और बुराई सब चीजें इसमें है। हम जो भी देखते हैं सीधा मन और चित्त को प्रभावित करता है। इसलिए यह ध्यान रखना है कि दृष्टि के माध्यम से मन और बुद्धि को किस प्रकार का भोजन दे रहे हैं। जैसे खराब भोजन शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वैसे ही जो देखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, उससे मन और बुद्धि का पोषण होता है और वही स्वप्न संस्कार स्वभाव कर्म व्यवहार द्वारा प्रत्यक्ष होता है। तो यही है हमारे मन वचन कर्म की जो गहराई है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे अगर मिलती हूँ। तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत।

नमस्कार दोस्तों, विज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। चलते हैं, हमारा आज का विषय है बुद्धि की परत शक्ति को बढ़ाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जीवन में इंसान को इंसान के शरीर के लिए उसे भोजन की अति आवश्यकता है। तो भोजन कैसा होना चाहिए? जीवन का मूलभूत आधार है भोजन। अगर भोजन संतुलित न हो तो जीवन भी संतुलित नहीं हो सकता। अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक गर्म प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध जाता है। यदि खाद्य पदार्थ में आसक्ति से है तो उसमें दुख मिलता है। दुखों से बचना चाहते हैं तो क्षण भंगुर जीवों को उसके स्वाद रस के पीछे न जाकर जीवन जीने के लिए उपयुक्त आहार का उपयोग करें। योगी के लिए कहा गया है कि इंद्रियां रसों से मुक्त तभी आध्यात्मिक लक्षित में उत्तीर्ण हो सकेंगे। व्यक्ति को आसक्तियां से मुक्त होना चाहिए। ये जो आसक्तियां हैं किसी भी प्रकार की आकर्षण ही प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है और तत्परता से अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होना है ताकि समय से पूर्व मंजिल के

करीब पहुंच सके। परख शक्ति को बढ़ाने के लिए बुद्धि को अंतर्मुखी बनाए, अंतर्मुखी सदा सुखी, जो अंतर्मुखी बनकर सुचिंतन में व्यस्त रहता है वही वामा आकर्षणों से बचा रहता है। बाह्य जो आकर्षण बुद्धि को शक्ति की जो उसकी होती है उसको नष्ट कर देते हैं। कभी कभी बुद्धि में धुंधलापन आ जाता है जिससे राइट रॉन्ग की यथार्थता को समझ नहीं सकते हैं। अगर बुद्धि को आत्मचिंतन परमात्मा के साथ परमात्मा चिंतन और अपने श्रेष्ठ भाग्य के चिंतन में व्यस्त करें तो दैनिक जीवन में आने वाली हर रुकावट को सहज ही समाधान में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आपने देखा कि मनसा वाचा और कर्मणा मन वचन कर्म से हमें कैसा बनना है। भोजन के प्रति भी हमारी पवित्रता होनी चाहिए, स्वप्न के प्रति भी पवित्रता, हमारी सोच में भी पवित्रता। तो पवित्रता ही जीवन की एक बर्फ बन जाती है। तो इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: Assertiveness without generating anger. तभी वो real मायने में assertiveness होगा, क्योंकि assertiveness inner stability. तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी हैं और stable भी हैं, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर generate हुआ, चाहे वो suppress कर दिया, लेकिन हम stable नहीं होते हैं तब. You know, तो then I cannot say कि I'm internally stable, but now I'm being assertive. तो internal stability means, you know, no trace ऑफ एंगर, उसको जो पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो. एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है. एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड हैं कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो.
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

अवेकनिंग ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। ओम शांति। अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कितना आसान था ये सब कुछ समझना, लेकिन हम सोए हुए थे, हमें पता ही नहीं चला, हमने सारी जिंदगी निकाल दी और जान ही नहीं पाए कि

0: छोटी चीजें ही तो थी जिन्हें बदलना था और जिंदगी बदल जाती। इतनी मुश्किलों से गुजरते रहे थे हम, आज एक बार फिर रिश्तों को नई पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं और घर से बाहर निकल चुके हैं। अब एक दूसरे परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं, वो परिवार जो हमारा कर्म क्षेत्र है, जहां हम काफी वक्त गुजारते हैं और हम अच्छा भी महसूस करना चाहते हैं। हम सिर्फ अचीव ही नहीं करना चाहते, हम वो हर पल जो वहां होते हैं वो खुश और सुखी होकर गुजारना चाहते हैं। तो क्या है वो गुरु मंत्र, क्या है वो छोटी छोटी बातें जो उन सिचुएशंस में अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो सुख जिसे हम तलाश रहे हैं अपने कर्म क्षेत्र में वो भी हमें मिल सकता है। हर बार की तरह इस सफर की हम सफर हमारे साथ हैं रमा कुमारी, सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अगर पिछली कड़ी को याद करें तो बहुत अच्छी आपने बात दी थी। मैं कहूंगी गुरु मंत्र था कि एक परिवार से निकलकर अगर हम दूसरे परिवार पर जाने की, वहां पर जाने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो एक प्रेशर होता है, एक सुबह सुबह का जो प्रेशर होता है, जो हमने कहा था कि हफ्ते भर फिर अनदर वीक, वो हट जाता है।
1: यू लुक फॉरवर्ड अनदर वीक, यू नो, जस्ट द होल एटीट्यूड चेंजेस टू गोइंग बैक टू द सेम प्लेस।
0: एंड इफ आई रिमेम्बर, हमने ये भी बात की थी कि अगर मुझे अप्रिशिएट नहीं किया जाता, क्योंकि अब मैं परिवार में आ गई हूँ, एक नए परिवार में, एक ऐसा परिवार जो मेरा अपना ही चूज किया हुआ है, हो सकता है वो लोग जिन्हें मैं अपने रिश्तेदार हैं और जो यहाँ जो है वो अलग हैं, लेकिन उनके साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप तो मेरा रहेगा ही, और उन सिचुएशंस को अब मैं कैसे हैंडल करूंगी। तो एक सिचुएशन तो थी कि अगर मुझे अप्रिशिएट नहीं किया मेरे बॉस ने, या कहीं कुछ जो मैं चाह रहा था कि मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा या मेरी अचीवमेंट होगी, आगे बढ़ूंगा, वो नहीं हो पाया, उसको भी कैसे हैंडल करें। एक और सिचुएशन जो आम देखी जाती है जब हम काम पर जाते हैं वो ये कि जेलस फैक्टर, वो मुझसे बहुत चलते हैं। मैं जितना भी अच्छा कर लूं, वो मेरा कोई बॉस नहीं है, मेरे कॉम्पिटिटर हैं, और हर बार मेरे खिलाफ मेरे बॉस के या लोगों के कान भरते हैं, उनको कैसे हैंडल करूं?
1: हमें समझना पड़ेगा कि जेलसी क्या होती है, ईर्ष्या क्या है, और कौन मेरे से ईर्ष्या करता है। नॉर्मली वी फील के ये जो ईर्ष्या कर रहे हैं कि यू नो इट्स सम काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एक्चुअली, क्योंकि आपका मुझसे ईर्ष्या करना अर्थात आपका अपने काम पर कॉन्फिडेंस नहीं होना। यू नो समवेयर दैट मे बी आई कैन डू बेटर देन यू, एंड दैट इज व्हाट क्रिएट्स जेलसी। सो इफ मुझे पता चल गया कि यू आर जेलस ऑफ मी, आपको ईर्ष्या है, तो मुझे अब उस पर परेशान होने की पहली बात कोई बात नहीं है। दूसरा, गुस्सा आप पर करना ये तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आई विल हैव टू अंडरस्टैंड कि आप बहुत ज्यादा पेन में है, यू नो, आप बहुत ज्यादा पेन में है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डर में है, आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। तो अब अगर आप मेरे परिवार का हिस्सा है या अगर मेरे अंदर वो कंपैशन है, तो मुझे समझना पड़ेगा कि इफ यू आर जेलस एंड आप जेलसी वश कुछ ऐसे कर्म कर रहे हैं, कुछ लोगों से बोल रहे हैं, तो मुझे आपके प्रति सिंपथी होनी चाहिए, क्योंकि यू नो नॉर्मली हमें नफरत आने लग जाती
0: है, इरिटेशन, यू डोंट लाइक, आई डोंट वांट टू बी यू नो विद अ पर्सन हु जेलस,
1: राइट, बट यू विल हैव टू लुक एट दैट पर्सन एज अ वाउंडेड पर्सन, जिसे चोट लगी है, जो अपनी कैपेबिलिटी पर अब ध्यान नहीं देकर सारा ध्यान मेरे कैपेबिलिटी पर देखकर अंदर ही अंदर घुलता जा रहा है। अब आपके एंगल से अगर देखो, जिसको ईर्ष्या हो रही है, तो उसके लिए नुकसान ये हो रहा है कि उसकी जो लेट्स से माय यू नो योर कैपेसिटी इज हियर एंड आपको लग रहा है कि माय कैपेसिटी इज लिटिल हियर या माय वर्क इज अ लिटिल बेटर, तो आप मेरे वर्क को देखते जा रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि आप भी उधर तक पहुंचते जाए या मेरे जैसे करने लग जाए। नॉर्मली जेलसी में क्या होगा कि हम उनके जैसा करने लग जाएंगे कि वो कैसे करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे औरों को यू नो खुश रखते हैं, व्हाटएवर डिफरेंट वेज दैट वी वांट, तो हम इनके जैसा बनने की कोशिश करते रहते हैं। एंड क्योंकि ये नेचुरल है कि हम किसी की तरह बन तो सकते ही नहीं है, लेकिन हम अपने ऊपर ध्यान न देकर अपनी विशेषताएं, अपनी शक्तियों को सारा भूलकर,
0: अपनी ओरिजिनलिटी भूल जाते हैं,
1: अपनी ब्यूटी उसको भूलकर इनके जैसा बनना शुरू कर देते हैं। एंड इनके जैसा तो बन नहीं सकते, लेकिन जो अपना था वो भी खो जाते हैं। एंड इन द प्रोसेस आई एम नीदर हियर नॉर आई एम हियर एंड आई एब्सोल्युटली कोलैप्स। तो जेल

0: उसी से जो हम औरों के प्रति वर्णन करते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं और अंदर खुद ही खुद खुलते जाते हैं, तो हमारी जितनी कैपेसिटी थी हम उससे भी ज्यादा नीचे आ जाते हैं। तो हमें अगर किसी और के अंदर कोई कैपेबिलिटी दिखाई दे रही है तो एक तो डरना नहीं, सी दैट इट इज दैट फियर विच ऑटोमेटिकली मेक्स मी यू नो स्टार्ट गोइंग ऑन द रॉन्ग ट्रैक। फियर सबसे बड़ा इंस्टिगेटर है गलत की तरफ जाने के लिए। लेकिन अगर मेरा फोकस बहुत क्लियर है कि मुझे खुशी चाहिए, वो मेरे जीवन का हिस्सा होगी इररिस्पेक्टिव केस ऑफिस में कितने भी लोग आ जाएं। अब उस खुशी को मेंटेन करने के लिए अगर मुझे अपने परफॉर्मेंस पर भी ध्यान देना है, तो अब अगर मुझे लग रहा है कि somebody is better than me, maintaining my positivity, go and try and learn if you want to learn। उसके लिए हिम्मत चाहिए, रिक्वायर्स लॉट ऑफ करेज कि आप जाकर दूसरे से सीखते हैं। अगर वो कर ले तो नथिंग लाइक इट। जेलेसी तभी होती है जब सामने वाले के अंदर कोई ऐसी चीज है जो हमें फील कर रहा है कि हमारे अंदर नहीं है, और मुझे लगता है कि उस चीज के लिए लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, मुझे वो अप्रिसिएशन चाहिए और इसीलिए मुझे उनकी वो वाली चीज चाहिए, और क्योंकि मुझे उनकी वो वाली चीज नहीं मिलती तो मैं उनके बारे में,
1: जो मेरे प्रति कोई जेलस है, मैंने तो गलती नहीं की, इट इज नॉट आई एम नॉट एट फॉल्ट। उनकी जेलसी ने मेरे लिए मेरी जिंदगी मुश्किल कर दी कि मैं उस माहौल में ही नहीं रह पा रहा, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ नेगेटिविटी।
0: राइट, अब अगर आपने जैसे कहा कि उनकी जेलसी है तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, तो सबसे पहले तो ये मेंटेन करना पड़ेगा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा जिस तरह से चल रहा था वो ठीक था। तो अगर मेरी कोई गलती नहीं है तो मुझे कुछ प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। दैट्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्योंकि ज्यादातर आप इमेजिन करिए एक सीन कि ऑफिस में बहुत सारे लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, यू नो यू एंटर एंड यू सी पीपल टॉकिंग अबाउट यू, और यू कम टू नो कि यू नो सो एंड सो वाज सेइंग सो एंड सो थिंग अबाउट यू। तो अब हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम एक एक को जाकर अपनी पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं, एंड समटाइम्स हम भी उसी गेम में चले जाते हैं कि अपनी पॉइंट को प्रूव करने के लिए
1: दूसरे को डाउन करेंगे,
0: दूसरे की यू नो बुराई करने की शुरू कर देते हैं। एंड इफ आई स्टार्ट डूइंग दैट, तो मैंने तो अपनी विशेषता को खो दिया। तो अगर आपको फेथ है कि जो आपके बारे में कहा जा रहा है दैट्स नॉट ट्रू, देन डोंट इवन बॉदर, डोंट बॉदर, बिकॉज यू आर स्पेशल, यू आर इम्पोर्टेंट, everybody wants your quality and that's why they're talking about it, don't bother, keep on working on that quality even more। bilkul bhi is cycle mein jana hi nahi chahiye, because hum kabhi bol kar apni baat ko sidh nahi kar sakte, aur jo baat again if it's the truth, agar wo right hai to usko sidh karne ki koshish nahi kare। ek chhota sa phase aayega beech mein jahan aapko feel hoga कि आप अकेले पड़ गए
1: हैं, यू नो बहुत ये इसी में सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, इसी में आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसी को निकालना मुश्किल हो जाता है।
0: तो ये फेस तो आएगा, दैट्स ओके, बट सी अगेन क्योंकि आपके पास वो विशेषता है तभी तो सारे उस तरफ चले गए एंड दे आर सो कॉल्ड जेलस ऑफ व्हाट यू हैव, लेकिन इफ यू नो व्हाट यू हैव मेंटेन इट। तो वो छोटा सा फेज आएगा, लेकिन हमें निश्चय रखना होगा कि ये सिर्फ एक छोटा सा फेज है। अब इस छोटे से फेज में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी स्टेप, ईगो नहीं, अगेन देयर इज अ वेरी थिन लाइन हियर, सेल्फ एस्टीम, ईगो। एक सेल्फ एस्टीम मेंटेन करके रखेंगे उस व्यक्ति की क्या निशानी होगी, सेल्फ एस्टीम हाई है, इंटरनल डिस्टर्बेंस कोई नहीं है कि ठीक है जैसा चल रहा है, मुझे जाकर एक एक को प्रूफ नहीं करना है कि पता है मैंने ऐसा नहीं किया था, वो गलत बोल रही है, वो झूठ बोल रही है, मैंने, आई डोंट नीड टू डू ऑल दैट। और दूसरा, अगर सेल्फ एस्टीम हाई है तो मैं उस व्यक्ति के प्रति जो मेरे अगेंस्ट बोल रहे हैं, या उन सारे लोगों के प्रति जो मेरे अगेंस्ट होकर एक दूसरी साइड पर हो गए, उनके प्रति कुछ नेगेटिव नहीं सोचूंगी। दैट विल बी द साइन ऑफ अ सोल विच हैज हाई सेल्फ एस्टीम, क्योंकि उस आत्मा को ये पता है कि ये खुद सब दर्द में है। तो जो खुद ही दर्द में है, जो खुद ही कमजोर है और डरे हुए हैं, उनको क्या डराना, वो ऑलरेडी इतने डरे हुए हैं, उनसे क्या नफरत करना या उनको क्या गुस्सा करना जो ऑलरेडी बाहर से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इंटरनली वो बहुत डरे हुए हैं।
1: जिस तरह से आपने कहा कि वो एक फेज आएगा जब मैं अकेला पड़ जाऊंगा और उसके बाद फिर सिचुएशन चेंज हो जाएगी, ऐसे में जो अपॉर्चुनिटीज मिस हुई,

0: कहीं ना कहीं वो पूरे मेरी वर्किंग पे अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि कहीं लोनलीनेस या एक मैं बार बार नहीं जा रहा अपने आप को प्रूव करने, तो मैं अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज ऐसा फील होता है कि मिस होती हैं।
1: अपॉर्चुनिटीज कभी नहीं मिस होंगी लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे, जस्ट क्योंकि आप अपनी इनर स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पाएंगे। उस समय लगेगा अगेन यू नो ये इल्यूजन सारे क्रिएट होंगे कि ये मेरे हाथ से जा रही है, ये अपॉर्चुनिटी मेरी होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि इस समय सारे मेरे अगेंस्ट हैं,
0: मुझे नहीं बुलाया
1: तो ये मुझे नहीं दिया गया काम, ये किसी और को दिया गया। इट्स ओके, मेंटेन दैट पेशेंस वो थोड़े से टाइम के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो व्यक्ति ये मेंटेन कर पाएगा उसका नुकसान हो ऐसा हो नहीं सकता। दिस इज लॉ ऑफ कर्मा कि अगर आपने पॉजिटिविटी, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल नेगेटिविटी उन लोगों के प्रति, यू नो एक होता है, क्योंकि इसमें तो थिन लाइन आती है, एक है मेंटेनिंग इनर स्टेबिलिटी और दूसरा है विड्रॉ। ये विड्रॉ नहीं है, ये विड्रॉ नहीं है, आप वही हैं, आप सबके साथ ही हैं, आप इंटरनली सबके लिए वही शुभ भावना रखते हैं।
0: यू नॉट हेटिंग देम, यू नॉट डिसलाइकिंग देम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर बीइंग बैड टू मी, आई डोंट लाइक देम,
1: दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वो कौन कर पाएगा जिसको ये फेथ होगा कि मैं राइट हूँ, जो मैंने किया वो राइट है, या जो मेरी विशेषता है वो है, इन लोगों को उस विशेषता से प्रॉब्लम हो रही है, मेरी विशेषता में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादातर डाउट अपने ऊपर जब आने लग जाता है, दैट इज लो सेल्फ एस्टीम। और वो लो सेल्फ एस्टीम किसको होगा, जो खुद को ही नहीं पहचानता और जो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है कि और लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि सेल्फ एस्टीम क्रैश होने का कारण, अपने स्वमान क्रैश होने का कारण सिर्फ ये है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, आजकल मेरा क्या इम्प्रेशन है सबके ऊपर, यू नो वी थ्रो दिस वर्ड इम्प्रेशन क्या है, तो इट्स मोर इम्पोर्टेंट मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। तो इफ आई एम ओके विद दैट क्वालिटी, जस्ट कैरी ऑन, एंड इफ आई एम ओके एंड आई कम टू नो कि देर इज अ नेगेटिव अंडर करंट, नेवर माइंड, आई फील कम्पैशन कि कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा। इनफैक्ट मैं इनडायरेक्टली भी उनको वो जो चीज है जो वो शायद सीखना चाहते हैं या चाहते हैं, आई कैन शेयर इवन इफ दे डोंट आस्क। नॉर्मली विदड्रॉ हम कर लेते हैं, अपनी विशेषता को अपने तक सीमित रखते हैं, एंड हम कोशिश करते हैं कि ये चीज मैं किसी को नहीं बताऊंगी। यू नो एक होती है विशेषता, एक होती है कोई स्किल, आपके अंदर कोई स्किल है, कोई टैलेंट है जो आप औरों के साथ शेयर कर सकते हैं, आप औरों को वो चीज सिखा सकते हैं। लेकिन डर क्या होता है कि अगर मैंने इनको सिखा दी
0: तो मेरी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी।
1: आज सारे ऑफिस में मेरी इम्पोर्टेंस इस स्किल की वजह से है, एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन फॉर ये जो कंपटीशन आता है। तो हम उस स्किल को अपने तक रखते हैं, जैसे कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं किसी को नहीं सिखाऊंगी। अगर कोई पूछ भी लेता है तो उसको गोल गोल घुमाकर इनडायरेक्टली कुछ कर देते हैं, उसको अपना पूरा का पूरा जो आपको आता है वो नहीं सिखाते हैं। दिस इज साइन ऑफ इनसिक्योरिटी। अगर हमें अपने पर कॉन्फिडेंस है, हमें जितना आता है पूरा एंड टू एंड उसको पूरा का पूरा बता देना चाहिए। ये फेथ होना चाहिए, दिस इज फेथ ऑन द सेल्फ। ये पूर्ण फेथ होना चाहिए कि किसी और को सिखाने से मेरा कुछ कम नहीं हो जाएगा, उल्टा वो विशेषता और भी बढ़ती जाएगी। अगर कोई और आगे बढ़ेगा, दिस इज व्हेन वी अंडरस्टैंड थिंग्स ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल। अगर हम सिर्फ मटीरियलिस्टिक लेवल पर सोचते हैं तो हमारी थिंकिंग क्या होती है कि कोई अगर और आगे बढ़ेगा तो मैं पीछे रह जाऊंगी, बिकॉज वी लुकिंग एट थिंग्स ओनली ऑन दैट लेवल। मटेरियल प्रोग्रेस में भी अगर हमने किसी को आगे बढ़ाया है तो शिव बाबा हमेशा हमें ये बताते, किसी को आगे बढ़ाना मतलब खुद ही आगे बढ़ जाना। एंड ये हमने मतलब हर स्टेप पर इसका अनुभव किया है। तो किसी को आगे बढ़ाना नॉट विद द इंटेंशन कि ताकि हम आगे बढ़ जाए, नहीं, लेकिन सच में किसी को आगे बढ़ाने का यू नो वो फील आना, इस सब लोगों को ये आ जाए, जो मुझे आता है आई वॉन्ट टू जस्ट शेयर इट विद एवरीबडी, परमात्मा ने दिया है, आई वुड वॉन्ट टू शेयर इट विद एवरीवन। वो आगे बढ़ेंगे, उनके आगे बढ़ने में मेरा आगे बढ़ना अपने आप समाया हुआ है। बिकॉज अगर हम किसी को कुछ सिखाते हैं तो उससे मुझे क्या मिलेगा, लॉ ऑफ कर्म, सो मेनी ब्लेसिंग्स, सो मेनी गुड विशेस, जिसको कहते हैं दुआओं का खाता, इतना जमा होता है कि वो दुआओं का खाता अगर हम अपनी विशेषता से चलते तो हम इस स्पीड पर चलते, लेकिन अगर जब हमें इतनी सारी दुआएं मिल जाती हैं तो हम इस स्पीड पर नहीं चलते।
0: एनर्जी एक और मिल जाती है
1: हमें, अपनी एनर्जी

0: नहीं सिर्फ
1: सबकी एनर्जी मिलती
0: सबकी एनर्जी मिलती है और वो जो इतनी सारी एनर्जी हमें सबकी मिलती है इट जस्ट पुशेज अस वे अहेड इवन इन टर्म्स ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि आपको वो मटेरियल प्रोग्रेस मिला लेकिन साथ साथ आपकी इंटरनल स्टेट बहुत हैप्पीनेस की थी।
1: लेकिन सिस्टर शिवानी यहाँ एक बात मैं जानना चाहती हूँ कि हमने किसी दूसरे को सिखा दिया इस इंटेंशन से कि सबको आना चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने उसी का इस्तेमाल करके मेरी पोजीशन को नीचे कर दिया और ये बहुत बार देखा गया। यही प्रॉब्लम है, तभी लोग जो है वो नहीं सिखाते या अपने पास ही रखना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो बाकी सारे तामझाम या जो भी पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं उनका इस्तेमाल करते हुए, जो मैं चाहे मैं इनस्टेबिलिटी में भी रहा लेकिन वो आगे पहुंच गया, तब मेरा क्या रिएक्शन।
0: अगर मैंने किसी और को किस इंटेंशन से कुछ सिखाया था, उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हुए ये नहीं सिखाया था, देन आई एम ऑलवेज गोइंग टू लाइक कि हमने उनको सिखाया, क्योंकि मेरी भावना है देने की। वी अंडरस्टूड एट एवरी स्टेप कि आत्मा का नेचुरल संस्कार है देना, लेना नहीं। लेकिन हमने आज उसको चेंज कर दिया कि हमें सारा दिन लेना है, देना कुछ भी नहीं है। तो देने के बाद हमेशा अच्छा लगेगा। अब अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाती है जो आप कह रहे हैं, मे बी इट इज पॉसिबल कि ऐसा हो जाए कि वो व्यक्ति आपसे बहुत आगे चला जाए, बट देन हाउ डज दैट मैटर, विद व्हाट इंटेंशन डिड आई गिव इट, डिड आई नॉट शेयर इट विद दिस इंटेंशन कि आगे बढ़े। एक पेरेंट अपने बच्चे को किस इंटेंशन से सब कुछ सिखाता है, इसी इंटेंशन से सिखाता है कि मेरा बच्चा मेरे से भी आगे चला जाए। तो अगर मैंने भी उस भावना से सिखाया होगा कि ये भी सीखे, ये भी सीखे, ये भी आगे बढ़ जाए। एक टीचर एक स्टूडेंट को किस भावना से सिखाता है, नेवर सेज के आप मेरे को जितना आता है आप उससे कम रहो, नो। एंड फिर वो टीचर को कितनी खुशी होती है, पेरेंट को कितनी खुशी होती है जब वो आगे बढ़ता है बच्चा। तो उसमें कोई उनका नीचे होना नहीं होता है, वो बच्चा हमेशा अपनी सफलता का डेडिकेशन किसको देगा, उन्हीं को देगा, टीचर को देगा। अब इन दिस केस मे बी यू विल नॉट गेट इट, दैट काइंड ऑफ ग्लोरिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी, लेकिन इंटरनल
1: डीप विद इट आई थिंक द पर्सन नोज,
0: द पर्सन नोज फ्रॉम वेयर आई हैव गॉट, एंड सूनर और लेटर यू विल स्टिल गेट इट बैक इन टर्म्स ऑफ मटीरियल प्रोग्रेस। लेकिन जहां तक इनर फीलिंग की बात है वो तो आपको ऑलरेडी मिल गई है,
1: व्हेन यू गिव इट गोज थ्रू,
0: इट गोज थ्रू यू। अब अगर उसके बाद आप हर्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब यू हैड गिवन इट
1: विद एन इंटेंशन।
0: तो हर कर्म में इंटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम किस इंटेंशन से गिरे। अगर आपको डर है कि कहीं आगे निकल जाए फिर मत दीजिएगा, बिकॉज देर इज अ चांस कि वो आपसे बहुत अच्छा सीख ले,
1: क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी कितनी है।
0: बट दैट्स ओके, व्हाई नॉट। अगर मुझे खुशी हो औरों को आगे बढ़ता हुआ देख, एंड दैट विल हैपन व्हेन कि व्हेन आई एम नॉट इन द रेस, जो उनकी स्पीड उनकी है मेरी स्पीड अपनी है, दैट्स ओके, आई एम गोइंग टू मूव एट दिस स्पीड, आई लाइक माई सेल्फ एट दिस स्पीड। लेकिन इफ दे गो फास्टर इट इज फाइन, आई एम हैप्पी सीइंग अदर कार्स गोइंग अहेड ऑफ मी, देन इट्स फाइन। लेकिन अगर डर है तो फिर नहीं देना, देन कीप इट टू योर सेल्फ, बट इट्स अ वेरी लिमिटेड फीलिंग। आप सिर्फ अपने लिए ही जीते हैं, अपने लिए ही करते हैं और इसमें कभी खुशी नहीं अनुभव हो
1: सकती। हमने घर की बात की थी तो मूल्यों की बात की थी, कहीं ना कहीं गिरते मूल्य हम घर में बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें बच्चों के सामने आना है, हमें बच्चों को देने हैं। लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं, ऑफिस पहुंचते हैं, वहां मूल्य ताक पर रख दिए जाते हैं। अपने मूल्य हम बचाने की कोशिश भी करें ऑफिस पहुंच कर, कि जब माहौल ऐसा देखते हैं तो मूल्य जिनमें करप्शन एक बहुत बड़ी बात आ जाती है या और भी सारे अगर जीवन मूल्यों को देखते हैं, और हम ये मान लेते हैं कि जो माहौल है उसी के साथ मैं भी उसी में इन्वॉल्व हो जाऊंगा तो तभी मैं जी सकता हूं। तो ऐसे माहौल में अपने मूल्यों पर कायम रहना वो बहुत मुश्किल आज के वक्त में लगता है, और अपने मूल्यों को सही रूप में पहचानना, ये दो इम्पोर्टेंट चीजें।
0: ये तभी हम कर पाएंगे अगर हमने अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज कर दिया है। अगर हम अपने आप को सिर्फ एक शरीर समझते हैं, अगेन सोल कॉन्शियसनेस पर बहुत इम्पोर्टेंट आ जाता है कि अगर हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो हम समझते हैं इतना सा ही तो जीवन है, इस जीवन में जो कुछ मिल जाए यही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो कुछ प्राप्त करना है जल्दी कर लो। सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जस्ट कीप गेटिंग गेटिंग गेटिंग, दिस इज हाउ मच यू हैव टाइम, यू वॉन्ट टू गेट, यू कैन गेट एवरीथिंग। जब ये एटीट्यूड होगा तब हम उसके लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हैं। तो मतलब हम छोटी से छोटी चीज के लिए भी अपनी वैल्यूज को गिव अप कर देंगे। जब हमें समझ में आ जाता कि ये शरीर है, मैं इसको चलाने वाली शक्ति आत्मा हूँ, आत्मा की वैल्यूज है, आत्मा के गुण है, आत्मा के संस्कार है, खुशी जो है वो मुझे इन मटेरियलिस्टिक चीजों से नहीं मिलने वाली, वो मुझे इंटरनल जो मैं एक एक कर्म करूंगी, किन वैल्यूज पर बेस्ड करूंगी, वो तब मुझे मिलने वाली है। अब मुझे अपनी लाइफ को डिसाइड कर लेना चाहिए कि अगर मुझे एक प्रमोशन, एक मतलब बंगला, गाड़ी, व्हाटएवर दीज थिंग्स, ये सब मिलने वाली है एट द कॉस्ट कि मेरी खुशी जाएगी, क्योंकि वैल्यूज को साइड पे रख के प्राप्त की हुई वस्तु मन की स्थिति को खुशी कभी नहीं दे सकता, क्योंकि बीज नेगेटिव था। तो हर एक के लिए अलग अलग है। वी आर नॉट गोइंग टू से हियर और वी आर नॉट हियर टू टेल एनीवन कि दिस इज रॉन्ग और दिस इज राइट। दिस इज फॉर यू टू डिसाइड। अगर आप कहते हैं नहीं जी करप्शन के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है, दैट्स योर डिसीजन। एब्सोल्युटली आपका निर्णय है ये। प्रेशर लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसी वायुमंडल में लोग हैं जो इस चीज के लिए झुकते नहीं है। भले आप समझें कि बहुत थोड़े लोग हैं, लेकिन अगर एक भी कर सकता है
1: तो सब कर सकते,
0: तो हम सब कर सकते हैं। लेकिन शायद उस एक व्यक्ति को जो इसके अगेंस्ट जाता है उसको थोड़ा सहन करना पड़ता है, शायद उसको वो मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, वो भी इफ यू फील नहीं मिलेगी, शायद नहीं मिलेगी, बट उसके लिए वो इनर सेटिस्फेक्शन शायद ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें अपने लिए और अपने परिवार के लोगों को प्लीज पूछ लीजिएगा एक बार, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मेरी मानसिक स्थिति होगी वो सबको मिलने वाली है। तो अगर कल को मैं परेशान रहूं और बच्चे भी, घर के लोग और भी परेशान रहे, और वो कहें ऐसा किया ही क्यों, एंड आई से आई डिड इट सो दैट आई कुड बाय यू द कार, दे माइट से वी डोंट नीड द कार। So when you take the decision of compromising on your values, take the decision with your family, अपने परिवार, because we had decided कि जो right और wrong हम set करने वाले हैं वो परिवार की राय के साथ मिलजुल कर हम set करने वाले हैं। तो अपने परिवार में, चाहे बच्चे बहुत छोटे हों लेकिन जो भी बड़े आपके साथ हैं, ask them, do we want all this at the cost of values, या क्या हम अपने value system को intact रखें, and 99.9% I would think कि आपको मिलेगा keep it intact। ये हम compromise कर देते हैं ये सोच के नहीं नहीं नहीं मेरे परिवार को ये चाहिए, हाँ। मेरे बच्चों को ये चाहिए, अगर मैंने अपने बच्चों को ये नहीं दिया तो वो you know upset हो जाएंगे। नहीं, everybody wants happiness and nobody wants to lose their happiness at the cost of materialistic comforts। हम सोच रहे हैं कि people want happiness with material, it's not like that, I need to talk। और इसीलिए इन बातों की घर में बातें, discussion होनी चाहिए। We should discuss कि values क्या है, happiness क्या है, how much are we ready to compromise, or should we be that kind of family जो stick to our values।
1: और यहाँ stress, इस स्ट्रेस को कोप करना आना चाहिए, ना कि वो स्ट्रेस जो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं।
0: इस स्ट्रेस को एक्चुअली कोप करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई स्ट्रेस नहीं क्रिएट होगा, बिल्कुल नहीं स्ट्रेस क्रिएट होगा, अगर आपने अपनी चॉइस से वो डिसीजन लिया होगा, अगर वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी। लेट से ऑनेस्टी या ब्राइब नहीं देना या नहीं लेना, इफ दिस इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी देन एनीथिंग एल्स, यू नो, देन एनी कार और बंगलो, I will not get stressed, even if my job is at stake, it doesn't matter, क्योंकि मेरे पास वो value है जो शायद आज बहुत कम है लोगों के अंदर। तो वो value कोई ना कोई होगा जो उस value को recognize करेगा, तो मुझे वो tension वाले period से नहीं गुजरना पड़ेगा, if inside I'm very short। लेकिन अगर मैं कमजोर हूँ, एक बार सच बोला, थोड़ा सा उसका कुछ pressure पड़ा, नहीं नहीं नहीं सच बोलने से तो नहीं चल सकता, झूठ बोल दो, कर दो, देन आई एम नॉट फिट टू डू इट, देन आई विल हैव टू डू जो ऑल द थिंग्स जो सारे लोग कर रहे हैं, एंड देन आई विल हैव टू गेट जो सबको मिल रहा है.
1: इट मीन्स वही आ जाते हैं कि हाउ मच आई वैल्यू माई वैल्यू.
0: एब्सोल्युटली. इट्स नॉट अबाउट, ये लेम एक्सक्यूज है, ये एक बहाना है कहना कि सब लोग कर रहे हैं, अगर मैंने नहीं किया. एंड दिस इवन अप्लाइज टू यू नो सोशल एडिक्शन वगैरह. हम कहते हैं ओ हम जब पार्टी में जाते हैं सोशल कल्चर में सब लोग ड्रिंक कर रहे हैं तो मुझे करना ही पड़ेगा, अगर मैंने नहीं किया तो मेरा बॉस मेरे बारे में क्या. एक्सक्यूजेस, एब्सोल्यूट एक्सक्यूजेस. क्या इस बेसिस पर किसी की मेरिट डिसाइड हो सकती है? नथिंग. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड

0: Agar we want to do what everybody is doing, then we will get what everybody is getting, and everybody is getting tension, anxiety, and stress. If I want to get something different, that's happiness, I will have to do something different. I will have to be somebody different. That's very important. To agar wo khushi chahiye, it's in your hand already. Gawana nahi hai usko in choti choti baaton ke liye.
1: Ye jo values ki jo baat hum kar rahe hain, ya jis tarah se jo choti choti situations samne aati hain, us pe kaise aap adig reh sakte hain. Adig bhi rehne ki zarurat nahi, just a mind frame.
0: Prioritize. Ki ye bole ye jhoot bolna hi padega. I'm sorry, main jhoot nahi bol sakta. Now I'm ready to face any consequences for it. आपको ये dishonest कर्म करना ही पड़ेगा. I'm sorry sir, ये मैं नहीं कर सकता. Now I'm ready to face anything, and then it should be anything I'm ready to face, because ye mere liye possible hi nahi hai, ye main kar hi nahi sakta. So fine, maybe it is something a part of the job jo main nahi kar sakta, so I'm ready to face uske liye, lekin I'll not do it.
1: कुछ चीजें जो हैं वो अधिक रहनी चाहिए, कुछ चीजें चेंज नहीं हो सकती, उनमें ये है चेंज हमें अपने एटीट्यूड्स को जरूर करना है, अपने थॉट्स को कर सकते हैं, लेकिन वैल्यूज को नहीं, क्योंकि यहाँ हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं.
0: और यहाँ
1: फ्लेक्सिबिलिटी है, मुझे फ्लेक्सिबल
0: जहाँ चाहिए
1: वहाँ हो जाता है. सुधा शिवानी, ऑफिस में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो अभी भी जिनको जिनके बारे में जानना बाकी है. ट्रस्ट की बात आती है, एंगर की बात आती है, और फिर अगेन मेडिटेशनल एस्पेक्ट्स जो हैं कि किस तरह से स्पिरिचुअलिटी इस परिवार में भी एक स्टेबिलिटी ला सकती है. तो अभी बाकी है काम, लेकिन फिलहाल आपसे इजाजत देते हैं. ओम शांति.
0: ओम शांति.
1: ऑफिस में जब हम पहुंचते हैं, जब हमने उसे मान लिया, स्वीकार लिया कि वो मेरा परिवार है, फिर जब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि आज हमने बात की, और किस तरह से अपनी वैल्यूज पे हम अडिग रह सकते हैं, और अडिग रहना ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है. अगेन इट्स माय चॉइस कि मैं रहना चाहती हूं, किसी और के कारण मैं रहूं या ना रहूं वो नहीं हो सकता. तो डिसीजन हर बार की तरह मेरे हाथ में रहेगा. कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई सवाल गुनगुना रहा है, तो आपका स्वागत है. आप हमारे साथ शेयर कीजिए उसे, हमें फोन कीजिए या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 9999 3445 9999 3446 9873 6665, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. वक्त है कि आपसे विदा लें, लेकिन इसी वादे के साथ कि अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में कुछ और रिश्तों के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से जब हम ऑफिस में होते हैं तो एक फेथ या ट्रस्ट या विश्वास का रिश्ता होता है, और साथ ही जिस एंगर को हम कई बार सही मान लेते हैं उसे भी क्या सही माना जाना चाहिए, क्या बिना गुस्सा किए भी ऑफिस में काम चलाया जा सकता है. ऐसे ही कई और बातें हैं जो हम अगली कड़ी में जरूर उठाएंगे. तो आप इंतजार कीजिए, मुलाकात करेंगे अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में. ओम शांति.

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा आनंद।
1: पुणेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, स्वागत करते हैं एक बार फिर आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। अभी तक हमने बहुत से एस्पेक्ट्स को जानने की कोशिश की है और सबसे बड़ी बात जो अभी हमने जानी वो ये कि मैं आत्मा हूँ और मेरी आत्मा कहना छोड़कर मैं आत्मा हूँ, ये रियलाइजेशन एक सबसे बड़ी बात है जो इस पूरा जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम समझ रहे हैं। और आज हम मेडिटेशन के ऊपर बात करेंगे। मेडिटेशन एक ऐसा शब्द है जो आज मेरे ख्याल से हर कोई अवेयर है, हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन मेडिटेशन का असली एस्पेक्ट क्या है और क्या मेडिटेशन आसानी से किया जा सकता है, यहां कहीं आश्रम में जाके ही हम उसे सीख सकते हैं, कर सकते हैं, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। शिवानी, हम ये तो अच्छी तरह से जो हमने बातचीत की थी कि आत्मा एक एनर्जी है जो यहां है और मैं आत्मा हूं।
1: कैसी आत्मा हूं?
0: मैं एक शांत, प्यार करने वाली और खुश रहने वाली
1: प्योर आत्मा हूँ,
0: एक व्हाइट कलर की तरह प्योर आत्मा हूँ। और मेरे साथ
1: यू नो व्हाइल यू आर सेइंग इट सी योर एक्सप्रेशन।
0: ओके,
1: अपने आप के बारे में इस तरह से सोचते हुए भी यू जस्ट फील सो गुड।
0: यस, एक्चुअली यू नो लाइक दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि द मोमेंट वी विल रियलाइज, आई थिंक आई हैड लेफ्ट इट टू दैट, कि जैसे ही मुझे एहसास हो कि मैं इतनी सुंदर हूँ तो फिर दुनिया तो कैसी हो, क्या फर्क पड़ता है।
1: नहीं, बट लेकिन तब ये नहीं होता कि कैसी है, तब ये रियलाइज होता है कि हर एक भी तो उतना सुंदर है।
0: हाँ, बिल्कुल, वो भी उतना ही सुंदर है।
1: द वे आई फील नाइस अबाउट माई सेल्फ आई विल फील नाइस about the other people also.
0: Of course, yes. And then all the problems will go away. लेकिन उसके लिए पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आज क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, मुझे सानिध्य मिला तो मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन द मोमेंट आई गो आउट इट विल नॉट बी दैट ईजी। एंड अगेन वी टॉक्ड अबाउट इट कि मेडिटेशन से पॉसिबल हो पाएगा, पर मेडिटेशन है क्या, ये एक सबसे बड़ा पहला सवाल ये है। और क्या मेडिटेशन आसानी से किया जा सकता है, क्या मैं कर सकती हूँ, या इट्स लाइक यू नो आई हैव टू गेट इनटू समथिंग एल्स एंड देन गेट इनटू मेडिटेशन।
1: मेडिटेशन के बारे में भी कुछ गलत बिलीफ्स हैं। अगेन, मेडिटेशन इज वेरी डिफिकल्ट, मेडिटेशन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मेरे से नहीं हो सकता है।
0: एवरीबडी हैज बीन सेइंग स्टार्ट मेडिटेटिंग, एंड आई से ओके बट हाउ,
1: राइट, बट दैट वो इसलिए क्योंकि मुझे ये नहीं पता व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट। यू नो, अगर कोई कहे स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, बट वॉट एक्सरसाइज, विच एक्सरसाइज, हाउ टू डू इट, एक बार वो पता चल गया देन इट विल नॉट बी डिफिकल्ट। लेकिन सिर्फ बोलते रहे कि ये करिए करिए, लेकिन क्या करना है। मेडिटेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड मेडिरी विच मीन्स टू हील।
0: ओके,
1: टू हील, एक वोंड है, एक चोट है, उसको हील करना है, या लाइक वी डिस्कस्ड लास्ट टाइम टू क्लीन।
0: ओके, बिफोर यू गो इन टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एंड द रियल एस्पेक्ट ऑफ मेडिटेशन, लेट्स स्टार्ट taking those aspects जिसे अभी तक हम मेडिटेशन मानते आ रहे हैं, सो दैट इट बिकम्स मोर क्लियर टू मी ऑल्सो। यू नो, अभी तक मुझे ये था कि आप जिस भी पूजा की जगह पे आप जाते हैं वहां बैठिए, ध्यान लगाइए, ध्यान
1: इज
0: मेडिटेशन। लेकिन ध्यान मैं किसको लगाऊं, एक मूर्ति को, एक उस पावर को, एक एनर्जी को, और क्या करूं, कैसे ध्यान लगाऊं, यू नो, आंख बंद करके क्या करूं, यू नो, लाइक
1: मेडिटेशन को हम योगा भी कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर जो मेडिटेशन हम करते हैं उसको कहते हैं राजयोगा मेडिटेशन। तो योगा कहते ही पहली चीज जो आ जाती है वो है फिजिकल योगा, यू नो, जैसे हम प्राणायाम, हठ योग, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो शरीर के लिए है। यू कैन नॉट मिक्स दैट विद मेडिटेशन। मेडिटेशन इज इंटरनल, मेडिटेशन इज टू डू विद द माइंड, मेडिटेशन इज टू डू विद द सोल, मेडिटेशन आत्मा का कार्य है। प्राणायाम, हठ योग, ये शरीर का कार्य है, दो चीजों को हम मिक्स नहीं कर सकते। और इसीलिए मेडिटेशन करने के लिए कोई आसन की जरूरत नहीं है आपको, मतलब ऑफ कोर्स अ राइट पोस्चर होता है, लेकिन हम यहाँ के यहाँ इसी तरह इस सोफे पे बैठे हुए वी कैन डू मेडिटेशन।
0: मेडिटेशन हैज टू बी साइलेंट, लाइक साइलेंटली हमें कुछ करना है, और हमें क्या मंत्रों का जाप करना है,
1: ये भी एक अलग अलग तरीके हैं। सी अगेन, देयर इज नथिंग राइट, nothing wrong, I will have to try it out and see

0: कि मेरे लिए कौन सी विधि राइट होती है। जैसे हम मंत्र जाप करते हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि जितनी देर हम मंत्र जाप करते हैं उतनी देर हमारे मन में कोई भी और व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा। अगर मैं एक अब वो हो जाता है, जब हम शुरू में करना शुरू करते हैं, एक शब्द को, एक बहुत पवित्र शब्द को लेते हैं और उसका उच्चारण बार बार करते हैं, तो थोड़ा समय तो मन उस पर एकाग्र होता है और उतनी देर कोई और थॉट नहीं आएगा, तो हमारी एनर्जी सेव हो गई, कंजर्व हो गई, नो लीकेज, बेसिकली देयर इज नो लीकेज एट दैट टाइम। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, जब मन को एक आदत पड़ जाती है, वही चीज बोल रहे हैं, वही चीज बोल रहे हैं, तो वो वही हो गया कि अगर रोज सेम खाना खाया, आप घर पहुंचे और रोज वही सब्जी बनी है, तो थोड़े दिन के बाद आप उस सब्जी को खाने से थोड़ा सा कतराएंगे और आप सोचेंगे कुछ और खाते हुए घर चलते हैं। इसी तरह मन जब बार बार वही शब्द उच्चारण कर रहा है, तो थोड़े समय के बाद हम बिना उस पर कॉन्सेंट्रेट किए उसका उच्चारण कर सकते हैं। इट इज लाइक नए रास्ते पर जाते हैं तो बहुत ध्यान से गाड़ी चलाते हैं, लेकिन जब हर रोज उसी रास्ते पर गाड़ी चलाते हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता। कई बार हम बहुत कुछ और सोचते सोचते लगता है घर पहुंच गए, वी वर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग।
1: डेफिनेटली ये जो मंत्र उच्चारण की बात, ये चैंटिंग
0: सिमिलरली, तो अब आप चैंटिंग कर रहे हैं या मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, आप एक शब्द बोलते जा रहे हैं, साथ साथ मन सोच रहा है आज पता नहीं ऑफिस में क्या होगा, हाँ जी आज पता नहीं खाने में क्या बना है, कल उसने ये कहा था, आज पता नहीं, तो अब क्या हुआ, जर्नी पे चल रहे हैं लेकिन भटक रहे हैं, अवेयरनेस नहीं है किस रास्ते पे जा रहे हैं। तो इसलिए उस मंत्र जाप से जो प्राप्ति होनी चाहिए थी, जो लीकेज को हम प्रिवेंट करने वाले थे, वो नहीं हुआ, लीकेज हो रही है।
1: एक और तरीका जो लोग कहते हैं कि आप आंख बंद करके कंसंट्रेट कीजिए एक लाइट पर और बाकी कोई विचार नहीं आने दीजिए, तो इट्स लाइक आई ट्राइड बट इट वाज नॉट पॉसिबल,
0: क्योंकि बाकी कोई विचार नहीं आने दीजिए, दिस इज मोर और लेस इम्पॉसिबल, यू नो, क्योंकि मन का काम है सोचना, आप उसको दमन नहीं कीजिए, आप उसको रोकने की कोशिश नहीं कीजिए, वो उसका नेचुरल कार्य है, एक स्प्रिंग है, अगर आप उसको दबा देंगे जबरदस्ती वो दब तो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो प्रेशर रिलीज होगा इट विल जस्ट रीबाउंड। तो पानी बह रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसकी धारा को परिवर्तन कर सकते हैं, उसको चैनलाइज कर सकते हैं। तो मेडिटेशन जो हम सीखते हैं, इट इज नॉट स्टॉपिंग द माइंड, और वैसे भी स्टॉप करके फायदा क्या होगा, हमें क्या रिजल्ट चाहिए, हम मेडिटेशन से क्या चाहते हैं। फॉर मी पर्सनली, मुझे मेडिटेशन से क्या चाहिए था, अ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन अपने आदतों का, ट्रांसफॉर्मेशन अपने संस्कारों का, परिवर्तन अपनी पूरी जीवन शैली का, अपनी वृत्ति का, अपने दृष्टिकोण का। तो वो मन को दबन करने से नहीं होगा,
1: अपने रॉन्ग बिलीफ का,
0: वो सारा एटीट्यूडनल चेंज चाहिए था मेडिटेशन से। मन को जब हम दबन करते हैं तो कुछ देर के लिए कोई गलत संकल्प नहीं आएगा, लेकिन कोई सही संकल्प भी तो नहीं आया ना,
1: क्योंकि जनरेट ही नहीं,
0: हाँ, तो लीकेज बंद हुई, डिस्चार्ज नहीं हुआ, लेकिन चार्ज कहाँ हुआ, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, आपने डिस्चार्ज नहीं किया लेकिन क्या आपने चार्ज किया। तो मेडिटेशन शुड बी के वर्किंग ऑन योर सेल्फ चार्जिंग प्रोसेस, जिससे कि फिर आप जब सिर्फ वो 10 मिनट मेडिटेशन या 15 मिनट नहीं, आप सारा दिन में कुछ भी कर रहे हैं, वो मेडिटेशन का रिजल्ट आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई देना चाहिए। आप जब बैठकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करते हैं धीरे धीरे, तो वो सिर्फ उस टाइम के लिए नहीं होता है, वो पॉजिटिव प्रोग्रामिंग फिर आपकी सारा दिन वर्क करती है। आप सोल कॉन्शियसनेस जब सुबह बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो सारा दिन आप एक एफर्ट या एक नेचुरली रहेगा कि आप सोल कॉन्शियस स्टेज में रहते हैं। तो मेडिटेशन का रिजल्ट उतनी देर के लिए नहीं होना चाहिए, वो सारा दिन आपके ऊपर आना चाहिए। तो मेडिटेशन राजयोगा, मेडिटेशन राजयोगा अर्थात एक ऐसा योग जिससे हम स्वयं पर राज्य करें।
1: स्वयं मतलब अब कौन
0: सेल्फ, पोत द माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार एंड द फिजिकल ऑर्गन्स।
1: अनदर थिंग व्हिच इज देयर इज सोल, बॉडी एंड माइंड, दे शुड बी इन सिंक, ये हम सुनते आए हैं,
0: राइट right. लेकिन जैसे हमने शेयर किया था कि सोल एंड माइंड ये दो अलग चीजें नहीं है, दो एनर्जीज नहीं है। सोल जब सोचने का काम करती है उसको माइंड कहते हैं। तो मैं आत्मा अपना मालिक जब बन जाता हूँ, दैट इज कॉल्ड राजयोग।

0: स्वयं पर राज्य करना, जिसको हम कहते हैं स्वराज्य, सेल्फ सॉवरेनिटी, सेल्फ रूल। तो एक आत्मा एक बैटरी की तरह है, जो बैटरी आज थोड़ी सी डिस्चार्ज है और डिस्चार्ज होने के कारण वो थोड़ा सा तकलीफ दे रही है, कभी गुस्सा कभी चिड़चिड़ापन। अब उस बैटरी की चार्जिंग करनी है। एक है कि हम अपने आप उसको चार्ज करने की कोशिश करें, जो हम ट्राई करते हैं, जैसे आपने कहा कॉन्सेंट्रेट ऑन द सेल्फ। ओके, वी कैन डू इट, बट इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, अ लिटिल चैलेंजिंग, क्योंकि डिस्चार्ज है ना। तो चार्ज करने में, चार्ज कैसे करेंगे बैटरी को?
1: चार्जर इलेक्ट्रिक सॉकेट में लगा के।
0: चार्जर किससे कनेक्ट हो जाएगा?
1: जो मेन सॉकेट है,
0: पावर सप्लाई।
1: ओके,
0: तो पावर सोर्स से जब तक इस बैटरी को नहीं कनेक्ट किया, तब तक इसकी चार्जिंग, वो क्या होगा, अगर खुद को ही चार्ज करेंगे थोड़ा सा होगी, फिर डिस्चार्ज। जैसे ही ना गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, अब उस टाइम है नहीं पावर सोर्स, तो हम किसी और बैटरी के साथ थोड़ी देर कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक हो जाता है। फाइनली वी हैव टू गो एंड गेट इट चार्ज। इसी तरह खुद पे थोड़ी सी मेहनत करते हैं या किसी और से बात कर लेते हैं, तो बैटरी टू बैटरी चार्जिंग, इट वोंट लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग, थोड़े टाइम में अगेन डिस्चार्ज। तो अगर रियली चार्जिंग करनी है, द बैटरी विल हैव टू बी कनेक्टेड टू द पावर सोर्स। तो उसके लिए पहचान चाहिए, परिचय चाहिए बैटरी का भी और पावर सोर्स का भी, कि किससे जोड़ रहे हैं, कौन है वो शक्ति।
1: बैटरी तो वी अंडरस्टूड लाइक इस,
0: कि मैं आत्मा हूँ। इसलिए जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो है सेल्फ रियलाइजेशन, जो हमने लिया कि सेल्फ टॉक, सेल्फ काउंसलिंग, लेकिन ये बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है, दिस इज नॉट मेडिटेशन, ये सिर्फ एक फर्स्ट स्टेज है। मेडिटेशन इज अ रिलेशनशिप, अ कम्युनिकेशन, एक संबंध परमात्मा के साथ। हमने बहुत सारे संबंधों की बात की और बहुत सारे संबंधों में उतराव चढ़ाव देखे, लेकिन जो एक संबंध जो बहुत वैल्यूबल है और जिसको आज की भागदौड़ में हम शायद कहीं भूल से गए हैं या खो सा गया है, वो है मुझ आत्मा का उस परमात्मा के साथ संबंध, ये है योग।
1: एंड वो परमात्मा, वो पावर, जिस पावर, फुल पावर की बात कर रहे हैं, जिसके साथ हमें अपना सॉकेट जोड़ना है, वो कहाँ है?
0: उसकी पहचान चाहिए, उसका परिचय चाहिए। जैसे हम लोग प्रेयर करते हैं, हम लोग जब सबसे पहले सेंटर पर आए तो हमने कहा हम तो वैसे भी भगवान को याद करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मतलब ये कोई नई बात नहीं है। प्रेयर और मेडिटेशन, इसमें भी थोड़ा सा अंतर है। प्रेयर इज लाइक वन वे कॉन्वर्सेशन,
1: आस्किंग फॉर इट,
0: हाँ, आस्किंग ऑल्सो एंड वन वे। आप देखो, हम जाते हैं मूर्ति के सामने, बहुत आस्था से खड़े होते हैं, हम अपनी बात कहते हैं, you know,
1: can we hear him,
0: how will a relationship develop otherwise,
1: can we have a conversation with Paramatma,
0: that's a relationship na।
1: Aap
0: dekho, aap aur main baithe hain, sirf main hi bolti jaau, aap bilkul bole hi na, to sambandh kaise banega? Sambandh to main kuch bolu, aap kuch bole, main kuch puchu, aap kuch uska jawab de, tab to ek
1: rishta banta hai।
0: Ek bolta jaye, दूसरे की सुने भी नहीं और दूसरे की राय कुछ भी नहीं करे, तो ये संबंध नहीं है। और प्रेयर में और एक चीज जो थोड़ी सी हो जाती है, कि हम अपनी भावना की बात नहीं बोल रहे हैं। यू सी, एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं कि एक छोटा सा बच्चा पहाड़ी पर बैठा था, गैया चरा रहा था, तो बोर हो रहा था, पेड़ के नीचे बैठ गया। तो उसने सोचा मैं भी बोर हो रहा हूँ, भगवान भी ऊपर बैठा होगा, वो भी हम सबको ऐसे ही छोड़ देता है गैया चराने के लिए, जैसे मैंने छोड़ दिया, वो भी बोर हो रहा होगा, क्यों नहीं मैं उससे बातें करता हूँ। तो उसने बातें करनी शुरू की, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, ये हो, आप कैसे हो, वट एवर, अदर लिटिल बॉय, वो अपनी वार्तालाप कर रहा था। एक पंडित जी वहां से गुजरे, बच्चे क्या कर रहे हो? जी मैं भगवान से बातें कर रहा हूँ। तो उसको डांट दिया, तुम भगवान से ऐसे थोड़ी बातें की जाती है। फिर उसको श्लोक सिखाए, रटाए, उसको मुश्किल हो रही थी रटने में, उसको रटाए, कहा यही बोलना, ये भगवान से बात करने का तरीका होता है। तो वो वही बोलने लगा, वही बोलने लगा। रात को, कहानी है ऑब्वियसली, रात को जब पंडित जी अपने घर पहुंचे और भगवान को याद करने बैठे, तो उन्होंने भगवान की आवाज सुनी। पंडित आज क्या किया सुबह? वो छोटा बच्चा कितनी मीठी मीठी अपनी प्यारी प्यारी बातें मेरे साथ कर रहा था, तो तूने क्या करा दिया उसको? अब वो ऐसी बातें कर रहा है जो उसको ना खुद समझ में आ रही है, ना उसके पीछे उसका कोई भाव है। सो दैट कैन नॉट बी अ रिलेशनशिप। यू सी, इफ आई पिक अप अ बुक एंड आई लर्न अप अ फ्यू वर्ड्स एंड मैं वही

0: वर्ड्स आपके सामने सिर्फ बैठ के दोहराते रहो, इट्स नॉट अ रिलेशनशिप. हम 100 लोग इकट्ठे खड़े होते हैं, प्रार्थना करते हैं. मुझे याद है हम स्कूल में खड़े होकर प्रार्थना रोज करते थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें भावना मिसिंग है. हमने सिर्फ उन शब्दों को ही मैकेनिकली बोल दिया और सबके वही शब्द है. सबका वही बोल कैसे हो सकता है? तो मेडिटेशन इज कॉन्वर्सेशन, नॉट सेइंग समथिंग विच आई हैव लर्नड अप.
1: Talking to God.
0: Yeah, it's in conversation with God. Absolutely.
1: But then will he talk back to us?
0: What do you think?
1: I don't know.
0: Is it possible?
1: I don't know. And they're like, if you are saying it, and but I don't think so, because I don't know who God is.
0: Atma ka Paramatma se conversation. Right? Atma ka Atma se conversation kaise hota hai? Is mukh ke dwara. Right? Lekin kabhi kabhi bina mukh ke dwara bhi hamara conversation hota hai.
1: Gestures.
0: Aap ghar baithe, aapko maine phone kar diya. Nahi, gestures ki bhi zarurat nahi hai. Aapko maine phone kiya, aapne kaha, main aapko hi abhi yaad kar rahi thi. Kya? Kaun? Kiska conversation chal raha tha? Telepathy. Ek sankalp yahan se create hua, wo aap tak pahuncha. आपसे भी संकल्प आया. कई बार हम किसी के पास अपना प्रश्न लेकर जाते हैं, प्रश्न बोलने से पहले ही सामने वाला व्यक्ति उसका आंसर दे रहा होता. आपको कैसे पता चला ये मेरा क्वेश्चन था? पता नहीं. व्हाई? बिकॉज क्वेश्चन मुख से नहीं बोला जाता, पहले वो यहाँ क्रिएट हुआ. और अगर सामने वाला रिसीवर ठीक है, क्लियर है, उसका बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, तो माई एनर्जी इज रीचिंग एंड यू विल गिव मी बैक. टेलीपैथी. अगर आत्मा आत्मा के बीच ये कम्युनिकेशन थॉट पावर पे हो सकता है, तो आत्मा और परमात्मा से नहीं हो सकता. फर्क क्या? इनफैक्ट इट्स इजियर, क्योंकि यहाँ तो हम सब थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं और हमारे बहुत सारा कुछ चल रहा है, तो वो रिसीवर और ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा मैच करना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है. बट ही इज क्लीन, ही इज ब्यूटिफुल, ही इज वेटिंग फॉर मी. ऑल दैट आई हैव टू डू इज ट्यून माई फ्रीक्वेंसी टू हिम.
1: Lekin at one point, lots of people must be tuning their frequency.
0: But that he is the powerhouse. So lot of batteries can get connected at the same time. It's energy, it's not physical. Dekho, ye sab limitations of being with so many people at the same time tab aati hai jab ek physical costume aap use kar rahe hai. Paramatma to ek shakti hai, wo nirakar hai, wo power hai. Jaise main ek power hu, wo bhi ek power hai.
1: लेकिन ये इट्स अमेजिंग, बट इट लुक्स सो एब्स्ट्रैक्ट. एक्चुअली
0: इट्स नॉट एब्स्ट्रैक्ट, इट्स वेरी सिंपल. वंस आई गेट हिज इंट्रोडक्शन एंड आई गेट टू नो हिम, विदाउट दैट इट्स एब्स्ट्रैक्ट. एब्सोल्युटली. अगर हम कहें कि हाँ भगवान कुछ है, अभी तक क्या था भगवान? क्या था मेरे लिए? एक कॉन्सेप्ट था. गॉड वॉज अ बिलीफ. इसीलिए अभी तक कहते हैं डू यू बिलीव इन गॉड. यू नो, आप कभी नहीं कहेंगे डू यू बिलीव इन योर पेरेंट्स. What is there to believe? They are my parents. मतलब उसमें believe क्या करना? It's the truth. Similarly, there is no such thing as do you believe in God? God is my father. It's the truth. But अभी तक वो truth को नहीं पहचाना, तो अभी तक वो belief में ही चल रहे हैं. Do I believe in God? Which form of God? God क्या है? तो ये सब चीजों की थोड़ी सी पहचान चाहिए.
1: हमारे पास यू नो लाइक वक्त कम है, तो हम पहली चीज यहीं पे, क्योंकि कहीं प्रोग्राम खत्म हो जाए और हम ये पहुंच ही ना पाए कि कैसे परिचय कैसे मिलेगा परमात्मा.
0: इसी के लिए जो हम राजयोगा फाउंडेशन कोर्स हर सेंटर पे, आज ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स पूरे वर्ल्ड में 110 कंट्रीज में फैले हैं, विच इज क्वाइट बिग. एंड टुडे देर आर मोर देन 8,500 सेंटर्स, 8,500 सेवा केंद्र हर इस 110 देशों में है. भारत के तो हर शहर में, मतलब बड़े बड़े शहरों में 100 से अधिक सेवा केंद्र हैं. तो जहां भी आप रहते हैं, आपके 5-8 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको एक सेवा केंद्र जरूर मिलेगा. वहां बहने हैं जो परमात्मा के द्वारा ये दिया गया परिचय, परमात्मा का परिचय खुद उसने ही दिया है. और जब परमात्मा खुद अपना परिचय देते हैं, तब वो परिचय बिल्कुल एक्यूरेट होता है. तो परमात्मा का उनके खुद के द्वारा दिया गया परिचय वो हमें सेंटर पर जाकर मिलता है. 7 डेज कोर्स है, 1 आवर एवरी डे फॉर 7 डेज. जो समय हम चूज करते हैं, टाइम absolutely free of cost. बस थोड़ा सा समय निकालना है, दिन समय सब कुछ हम चूज करें और ये विधि को सीखते हैं. जैसे आप कह रहे थे ना कि मेडिटेशन हम सीखें कैसे, एक्चुअली परमात्मा से संबंध जोड़ना ये सीखना नहीं है, लेकिन उसका परिचय चाहिए.

0: अपना परिचय चाहिए। ये परिचय मिल जाता है, समय का परिचय मिल जाता है और वो विधि मिल जाती है, फिर उसको हम अपने आप कर सकते हैं।
1: यू सेड दिस सेवन डेज टू एक घंटा, 7 घंटों में बेसिकली हमें इंट्रोडक्शन हो जाता है गॉड का कि ये, और हम उनसे जो कॉन्वर्सेशन करते हैं वो कैसे कर पा रहे हैं। ये पूरा प्रोसेस परिचय की जो बात कर रहे थे, तो ये 7 घंटे परिचय के लिए, उसके बाद हमें हम अपने आप कभी भी
0: उसके बाद इट्स अ रिलेशनशिप। सेंटर्स आर ऑलवेज देयर, वो सेंटर है क्योंकि वहां पर जाने से एक यू नो इजी हो जाता है, क्योंकि हम सारा दिन
1: माहौल
0: बहुत हाँ, तो वो वायुमंडल मिलता है, वो शिक्षाएं मिलती हैं, लेकिन एक रिलेशनशिप हैज बिगन। उसके बाद आपको जैसे समय मिले आप सेवा केंद्र की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, लेकिन एक विधि सीख ली तो आप उसको घर पे करना शुरू कर सकते हैं, अपना समय निकाल कर। और वो सारा दिन हो सकता है, इट इज नॉट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम कि आपको इतनी देर मेडिटेशन करना है। इट्स लाइक किसी को प्यार से याद करना है, उसके लिए कोई डिफाइंड यू नो स्ट्रक्चर्ड टाइम नहीं होगा।
1: सबसे बड़ी बात है मैं आपके साथ अपना रिश्ता कितना गहरा करना चाहती हूं,
0: ये तो मेरी चॉइस है,
1: मैं कितना उसमें टाइम स्पेंड कर रही हूँ, लाइक हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर मी टू हैव अ रिलेशनशिप विद यू, अ स्ट्रांग रिलेशनशिप। और मुझे नहीं लगता कि अगर वंस माय इंट्रोडक्शन हैपन्स
0: राइट
1: आई वुड लाइक टू हैव एनी अदर रिलेशनशिप।
0: नहीं, दैट्स आल्सो यू नो, फिर कई बार लोग सोचते हैं अच्छा मतलब इस चीज में जुड़ गए, मेडिटेशन कर रहे हैं, परमात्मा की तरफ ध्यान लग गया, तो बाकी सारे संबंधों से किनारा कर लेंगे, डिटैच्ड हो जाए। दैट्स नॉट ट्रू, ये एक चार्जिंग प्रोसेस है, एंड इससे उल्टा हमारे रिलेशनशिप्स और भी ब्यूटिफुल हो जाते हैं, यू नो, जब हम खुद भर जाते हैं अंदर से, क्योंकि हम अभी तक बैटरी से मांग रहे थे, यू नो इट्स लाइक दिस, मुझे शांति दो, मुझे प्यार दो, वी गॉट कनेक्टेड टू द पावर हाउस। अब हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती,
1: हम कई बार एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो हम देना शुरू,
0: एक्स्ट्रा नहीं हो ही जाता है, नेचुरल है, देना नहीं पड़ता है। जो चीज आपके अंदर भर जाएगी, यू आर अ ट्रांसमिटर, देन आप जहां जाएंगे आपकी वाइब्रेशन, आपकी थॉट आपके साथ हर जगह ऑटोमेटिकली जाएगी, यू डोंट हैव टू मेक एफर्ट फॉर दैट। एंड परमात्मा से संबंध जब जुड़ जाता है तो यू सी जिसके साथ आपका संबंध होगा आप उसके जैसा बनना चले जाते हैं, एज द कंपनी नो सो विल बी द इफेक्ट। तो सत्संग जिसके लिए कहते हैं, लोग कहते हैं हम सत्संग में जा रहे हैं, वो है उस सत्य का संग करना। सिर्फ हम जा रहे हैं और प्रवचन सुन रहे हैं, ये सत्संग नहीं है, उस सत्य के संग में रहना, तो संग का रंग
1: अपने आप
0: ऑटोमेटिकली लगता है, नेचुरल है।
1: ओके, इट लुक्स लाइक सच अ ब्यूटिफुल,
0: इट इज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस,
1: इट इज पॉसिबल, लाइक यू नो सी वी लिविंग इन सच ब्लैक लाइफ।
0: सी आई टेल यू, ब्रह्मा कुमारीज में आज 9 लाख के करीब परिवार है, दे आर फैमिलीज, दे आर नॉट सरेंडर्ड, जो कई लोग सोचते हैं कि ये तो बस दुनिया से कट गए, आश्रम में रह रहे हैं, नहीं, फैमिलीज, प्रोफेशनल्स, हाउसवाइफ्स, चिल्ड्रन, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, जो अपनी जिम्मेवारियां, अपने संबंध, अपने परिवार सबको संभाल रहे हैं, अपनी जॉब, अपनी बिजनेस सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ जहां हम इतने रिश्ते निभा सकते हैं, क्या एक और रिश्ता नहीं जोड़ सकते,
1: जो कि हमें बाकी सारे रिश्तों को ज्यादा बेटर कर देगा,
0: जो कि मेरे करियर को बहुत अच्छा कर देता है, जो कि मेरी फिजिकल हेल्थ को अच्छा कर देता है, जो कि मेरी मेंटल वेलबींग को बहुत अच्छा कर देता है, तो वो रिलेशनशिप क्यों नहीं। और उसके लिए कोई बहुत एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं निकालना पड़ता, बिकॉज इट्स नॉट अ फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, आपके साथ अभी बैठे हुए भी मैं उसे याद कर सकती हूँ। तो डू आई नीड टू टेक आउट एक्स्ट्रा टाइम, नहीं, तो सब कुछ करते हुए ही ये पॉसिबल है। अगर हम कहें जी अभी नहीं, रिटायर होने के बाद करेंगे, तो इट इज लाइक सेइंग कि मैं अपने जीवन के सारे एग्जाम्स दे दूं फिर उनकी तैयारी करूंगी,
1: बिल्कुल
0: तब पढ़ेंगे बैठ के, नो, द एग्जाम इज नाउ, सो आई नीड द नॉलेज,
1: बिकॉज द जर्नी इज इम्पोर्टेंट,
0: एंड देन आई एंजॉय द जर्नी, इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस,
1: और
0: एक चार्ज्ड बैटरी, यू नो, यू आर सो फुल एवरी डे, यू आर सो फुल व्हाइल यू आर इंटरेक्टिंग विद पीपल, तो फिर लोगों का जो इन्फ्लुएंस, जो हमने सारी बात की, एंगर, टेंशन, एंग्जायटी, लोगों का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि आप अपने कंट्रोल में आते जाते हैं, तो उसके लिए क्या हम थोड़ा सा समय नहीं निकालेंगे? ऑल दैट इट रिक्वायर्स प्रोबेबली 10 मिनट्स एवरी डे टू बिगिन विद, 10 मिनट अपने आप से रिफ्लेक्शन, काउंसलिंग, सेल्फ टॉक, परमात्मा से बातें, बेस्ट काउंसलर जो सिर्फ काउंसिल नहीं करता, साथ में पावर भी दे देता है उस काउंसलिंग को प्रैक्टिकल की लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की।
1: और आज के वक्त में यू नो लाइक द वे वी हैव बिकम सो प्रैक्टिकल।

0: आई थिंक जितने भी दर्शक भी देखे इवन टू मी यू नो हमारा जो इंटेलेक्ट इतना स्ट्रांग हो गया है इतने लॉजिकल हो गए हैं दिस लुक्स लाइक वेरी लॉजिकल
1: इट इज वेरी लॉजिकल बिकॉज इट्स द ट्रूथ इट्स नॉट इमेजिनेशन ये कल्पना नहीं है लेकिन उसके लिए खुद एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा
0: एक्सपीरियंस करके देखना पड़ेगा जो इंट्रोडक्शन की बात है दैट द फर्स्ट स्टेप हैज टू बी फ्रॉम माई एंड
1: एक स्टेप तो लेना ही पड़ेगा एक्सपेरिमेंट कीजिए वर्क करता है एक्सपीरियंस होता है तो ये सत्य है
0: वाह वंडरफुल तो शिवानी ये जो पूरा आज जो ये कंसेप्ट यू नो इतना हमने बात की इतने सारे मुद्दों पे बात की जो हमें परेशान कर रही है लेकिन इतना आसान और इतना प्यारा सा सोल्यूशन नजर आया जो कि पॉसिबल है जिसके लिए हम सोचते थे कि ये तो हो ही नहीं सकता मुझे ऐसे बहुत लोग होंगे सोचते होंगे कि जो दिस इज नॉट डन दिस कैन बी पॉसिबल सो दिस इज इन फैक्ट सो ईजी पहली बात सबसे बड़ी बात जो है कि पहला स्टेप हमें उठाना पड़ेगा क्योंकि आई द सोल हैज टू टेक द फर्स्ट स्टेप बहुत बहुत शुक्रिया आपका
1: थैंक
0: पूरी बातचीत के लिए इतनी सारी पहेलियों में हमने बात की इतना सब कुछ हमने जानने की कोशिश की थी कि ऐसा क्यों हो रहा है वैसा क्यों हो रहा है आंसर इतना सिंपल इतना आसान था पहला कदम हमें उठाना है तो अगर आप भी इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं पहला कदम उठाना चाहते हैं तो भाई फोन कीजिए ईमेल कीजिए और अपने सवाल हमें भेज दीजिए आप हमें फोन कर सकते हैं और अपनी जो भी जानकारी चाहते हैं जो भी सवाल आपका है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com तो इसी के साथ वक्त है आपसे इजाजत देने का लेकिन इस वादे के साथ और इस दुआ के साथ कि जो ये पूरी हमने इन्फॉर्मेशन ली है जो एक आत्मा से परमात्मा के मिलन का उस कनेक्शन की हम बात करते आए हैं उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट किस तरह से उसे अपनी जिंदगी में हम शामिल कर सकते हैं राज योगा के सेंटर्स में जाकर एक बार ट्राई जरूर करेंगे पहला कदम जरूर उठाएंगे आप दीजिए इजाजत नमस्कार।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूं, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल। सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लवली लवली है समा, हम तुम दोनों हैं जमा। आज ट्विस्ट करें या शेक करें, या जर्क करें या गुली गुली, हम नाचे गाए मौज मनाए, धूम मचाए।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष प्रस्तुत करने।
3: जीवन में हमने कई बार ऐसा सुना है कि कभी समय का पता ही नहीं चलता किसी से बात करते हुए, और कई बार कई लोग कहते हैं कि ये कब जाएंगे, कब उठेंगे, जैसे ऐसा लगता है हर एक पल उस समय हमें बहुत भारी लगने लगता है। कुछ लोगों की खासियत ही होती है कि वो समय को इतना सहज बना देते हैं अपने बातचीत से कि आपको लगने लगता है कि इनके साथ थोड़ा और समय बिताएं। ऐसे लोगों को हमारे बुजुर्गों ने ज्ञानी, गुणी, विदुषी कहा है, विद्वान कहा है। क्या ऐसे लोग आपके आसपास हैं? होंगे जरूर, नजर खोल के देखने की जरूरत है, थोड़ा सा आसपास के लोगों के साथ मिलने घुलने की जरूरत है। लेकिन अगर आप बिजी हैं तो हम आपके लिए ऐसे ही लोगों को लेकर के आते हैं। यशस्वी भारत कार्यक्रम सुन रहे हैं आप 107.8 रेडियो मधुबन में। मैं आरजे शांतनु आपके बीच में फिर से आया हूँ एक और खास मेहमान को लेकर के। और आज के हमारे मेहमान ऐसे ही हैं दोस्तों, जिनसे बातचीत करना अगर आप शुरू करें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रोग्राम कभी खत्म नहीं होना चाहिए। आज के हमारे एपिसोड में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता जी, जिन्हें भारत सरकार ने वर्ष 2004 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। मैंने तो पहले ही कह दिया प्रोफेसर, तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि आज का जो हमारा ये बातचीत है ये मुझे और आपको बहुत ज्यादा ऐसी चीजों से रूबरू करेगा जिनके बारे में हमने शायद कभी इतने ध्यान से सोचा नहीं होगा, या देखा भी होगा लेकिन गौर नहीं किया होगा, सुना भी होगा लेकिन उस पे गौर नहीं किया होगा। आइए बातचीत का दौरा आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता जी का। अनिल जी, आपका रेडियो मधुबन के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद। धन्यवाद शांतनु, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके, और आपके जरिए उन लोगों तक पहुँचने की कोशिश होगी आज, जिनके पास विचार है, जिनके पास नवसर्जन है, जिनके पास कल्पना है कुछ ऐसी जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारी समस्याओं का हल होगा, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए, बिना किसी को चोट पहुंचाए हुए, बिना किसी को दर्द पहुंचाए हुए।
3: जैसे आपने कहा कि हमारे देश को बहुत फायदा होगा और देश में रहने वाले लोगों को फायदा होगा, पर्यावरण, प्रकृति, जीव प्राणी जो कोई भी है हर एक को फायदा हो, लेकिन आज के दौर में हमने देखा कि ये फायदे के दौड़ में कई बार हम ये भूल ही जाते हैं कि जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं, और दौड़ते हुए हम कहीं ना कहीं उनको ही पीछे छोड़ जाते हैं। तो ऐसे भागम भाग के दौड़ में हमारे श्रोता साथी जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो आपको सुन रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से, इतनी व्यस्तता में

0: अपना समय निकाला हमारे लिए, तो सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। अनिल जी, इससे पहले कि हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें, मैं समझता हूँ आपकी कहानी आपकी जुबानी सुनना जरूरी है कि आपने ये जो आपका दौर है जहाँ पर आपने लोगों के लिए, उनके ही द्वारा उनके लिए सृजन करना, उनके लिए उनके ही द्वारा समस्याओं का समाधान करना, इस जर्नी की शुरुआत जब आपने की, इस यात्रा की शुरुआत जब आपने की, इससे पहले की यात्रा हम जानना चाहेंगे। जब आप बचपन में कैसे थे, आपका परिवार, आपका माहौल क्या था, किन चीजों ने आपको प्रेरित किया कि आप अपने जीवन का जो ध्येय है वो इस प्रकार के समाज सेवा प्लस विद्यार्थी या विद्यार्थियों के लिए जो आपने काम किया है उसके तहत, तो ये जो टोटल एक कहानी है वो हम आपकी ही जुबानी सुनना चाहेंगे।
1: मैं संक्षेप में बताऊंगा क्योंकि बात बड़ी पुरानी है, 70 साल पुरानी बात को याद रखना 7 मिनट में कोशिश करूंगा कह दूं। तो मेरा जन्म तो एक गांव में हुआ, गंगागढ़ गांव है, बुलंदशहर जिला है उत्तर प्रदेश में, वहाँ खुर्चा है, जगह है जहाँ सिरेमिक के बर्तन बनते, जैसे अपने यहाँ मोरबी में बनते हैं गुजरात में, और उसके पास पासू है, पासू के पास गंगागढ़ है, वहाँ मेरी छोटी सी जमीन अभी भी है, खेत है, और हमारे परिवार ने वहाँ एक स्कूल बनाया है, मेरे छोटा भाई आर्मी में था, उसकी याद आलोक चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए, और वहाँ मेरा जन्म हुआ। उसके बाद हमारे पिताजी साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, तो दिल्ली में आ गए IRI में, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, वहाँ एक जाफरी में रहते थे हम लोग। उस समय तनख्वाहें बहुत कम थी, 250 रुपये में गुजारा करना पड़ता था पूरे महीने का, तो साधन ज्यादा थे नहीं, कभी कभी क्या होता था कि आखिर के महीने के आखिर में, जैसा मेरे को उन्होंने बताया, मैंने समझा, मैं छोटा था उस समय, लेकिन 2-3 साल में देखना समझना याद रखना हो गया था शुरू, कि भाई लोग साइकिल के पीछे अखबार रख के जा रहे हैं, तो दुकान मालिक ने पूछा कहाँ जा रहे हो भाई, हमारे पिताजी बोले कि भाई ऐसा है इसको बेचूंगा, कुछ मेहमान आने वाले हैं कल, थोड़े पैसे मिलेंगे तो सामान लाऊंगा, तो मतलब ऐसी स्थिति भी थी। उन्होंने फिर मदद की थोड़ी सी, बोले कोई बात नहीं आप इतना परेशान मत हो जाएगा काम, तो वहां से शुरू हुए और पढ़ना शुरू किया, फिर कानपुर गया, हमारे पिताजी का ट्रांसफर हुआ, थोड़े दिन हम उसके बीच में खुर्जा में रहे, तो उस जमाने में तख्ती पे लिखा करते थे हम लोग, तख्ती मतलब लकड़ी का एक स्लेट जैसा होता है, उस पर रोज मुल्तानी मिट्टी चढ़ानी होती है, मुल्तानी मिट्टी चढ़ाकर वो सफेद हो जाएगी, उसके बाद काली स्याही से उसकी कलम बनाकर सरकंडे की लिखते थे, और कभी टीचर को गुस्सा आ जाए तो वो उसी तख्ती से पिटाई करते थे, तो मतलब कि ये डबल पर्पज थी, लिखने का भी काम करती थी, पिटाई का भी काम करती थी।
0: और मुझे लगता है आपको कभी पिटाई पड़ी नहीं होगी क्योंकि आप बड़े अच्छे
1: क्या होता है ना, एक बार क्या होता है टीचर जब एक तरह से मारना शुरू करते हैं ना, तो वो एक तरह से सभी बच्चों को शिकायत सजा देते हैं, बच्चे शोर कर रहे हैं, फोन कौन शोर कर रहा है ये नहीं देखते ना, ध्यान कहाँ देते, टाइम भी नहीं होता है
0: ना, गेहूं के साथ घुन भी फंस गया।
1: तो वो हुआ जमाना, वहाँ पर तख्ती और स्लेट जो है टूट जाती है ना, किसी बार तख्ती टूटती नहीं। मेरा मतलब कहने का यह है कि उस जमाने में हमको बताना नहीं पड़ता था सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, टिकाऊ जीवन क्या होता है, बड़े मेरा बड़ा था तो मेरे कपड़े छोटे हुए तो छोटे वाले के काम आ गए, छोटे वाले के हुए तो उसके तीसरे काम आ गए, कभी ये नहीं होता था ये उपकरण है ये क्या है, जब तक कोई भी चीज बिल्कुल क्षीण ना हो जाए उसका इस्तेमाल करते थे। हम लोगों को सिखाया गया था बचपन में से ही झाड़ू पोछा करना, बर्तन साफ करना है, तो मतलब कि घर के सभी काम करना जरूरी है, खाली माँ का मतलब नहीं है कि वही करे, तो एक स्वाभिमान, एक कोई काम छोटा नहीं होता, ये बात बहुत बचपन में सीख ली हमने। वहां से फिर हम लोग फिर वापस दिल्ली आ गए, हमारे पिताजी वहाँ एक रामजस पहाड़ों पे एक स्कूल है वहाँ पढ़ा मैं, और बीच में क्या हुआ कि मेरा फौज में भी सिलेक्शन हो गया था, 1968 की बात है, NDA के जरिए नेशनल डिफेंस अकेडमी में, लेकिन कान में सुनने में उन्होंने कुछ तकलीफ निकाली, मैंने ज्वाइन नहीं किया, और वो करने के बाद फिर मैं हिसार चला गया पढ़ने के लिए हरियाणा में, हरियाणा कच्छ यूनिवर्सिटी, 4 साल वहां रहा, लेकिन क्या होता था गर्मी की छुट्टियों में घर नहीं जाता था, दो काम करता था, एक तो चित्रकारी करता था, चित्र बनाने का शौक था वो बनाता था, और लाइब्रेरी में पढ़ता था, तो मान लो कि माँ बाप सोचते थे छुट्टियों में सब घर आते हैं तुम क्यों नहीं आते, मैंने कहा मुझे इतना कुछ पढ़ना है कैसे पढ़ूंगा मैं, टाइम ही नहीं मिलता है, कॉलेज के दिन होते हैं तो क्लासेज होती हैं, अब मेरे पास 2 महीने हैं, मुझे बहुत कुछ पढ़ना है, साहित्य पढ़ना है, कविता पढ़नी है, जीवनियां पढ़नी है लोगों की जिन्होंने जीवन में कुछ किया, तो उसका मुझ पर काफी प्रभाव भी पड़ा, क्योंकि पढ़ने का शौक होने से क्या होता है, और हमारे माता जी पिताजी का भी काफी शौक था, वो साइंटिस्ट थे डॉक्टर ज्ञान प्रकाश गुप्ता, हमारी माता को बहुत शौक था सिलाई कढ़ाई का, सिखाती थी सबको, तो एक अपने ज्ञान को बांटने

0: माहौल मैंने देखा अपने आसपास, और उसका फायदा ये हुआ कि जब किताबों का शौक हो जाता है किसी को, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अपनी आमदनी का कम से कम 10% आप किताबों में लगाएं, किताबें खरीदें, घर में लाइब्रेरी बनाएं, पुस्तकालय बनाएं, तो फिर और किसी चीज का शौक नहीं होता और किसी चीज का अभाव आपको महसूस नहीं होता। मेरे घर में सोफा नहीं है, दो छोटी छोटी सी सेटिंग है, चार पलंग जैसे हैं, उसमें लोग आके बैठ जाते हैं, तकिए रखे हुए, भाई बैठो उस पर काम करो। मेरे पास चार कुर्सी हैं जो मैंने 1975 में खरीदी थी, वो आज भी मेरे पास है, मेरा काम चल रहा है कुर्सियों से। तो मतलब है कि किसी को आपकी इज्जत, आपके पास क्या है साधन भौतिक, उससे तो नहीं होगी ना
1: जी,
0: आपकी इज्जत आपके विचारों से होगी, आपके काम से होगी। तो मेरा अभिप्राय ये है कि आजकल बहुत सारा समय और साधन लोग भौतिक चीजों की तरफ लगा देते हैं, और उससे क्या है कि मैं कहा करता हूँ कि एक दिमाग में थिंग्स और थॉट के बीच में स्ट्रगल होता है। यू कैन एक्सपैंड द स्पेस फॉर थिंग्स, स्पेस फॉर थॉट गेट कंस्ट्रक्टेड। जब सामान की जगह बढ़ती है तो विचार की जगह घटती है, सामान को घटा देंगे, ऐसा मेरा मानना है। मेरे बाबा वानप्रस्थी थे, आर्य विरक्त वानप्रस्थ आश्रम ज्वालापुर में हरिद्वार के पास रहते थे। तो जब छोटे थे तो उनके पास जाया करते थे गर्मी की छुट्टियों, और उनसे मैंने काफी प्रेरणा ली। उनका सारा सामान एक खड्डी में आ जाता था, एक छोरा जो कंधे पर टंगता है ये थोड़ा सा सामान होता है, थोड़ा पीछे उनके हवन के सामान होते थे, हवन की सामग्री वगैरह, हवन कौन, तो वो रोज हवन करते थे। मेरे माता पिता ने रोज किया, मैं रोज करता हूँ पिछले बहुत सालों से। तो क्या होता है कि उसमें आपका सुबह जब आप शुरुआत करते हैं अपने दिन की, मैं तो 4:30 बजे उठ जाता हूँ, पहले अपने कुत्ते की शक्ति को घुमाता हूँ, फिर मैं घूमने जाता हूँ। तो मैंने ये महसूस किया है कि जीवन को शुरुआत जो है हर दिन की धन्यवाद आभार के साथ हो, अगर ईश्वर तुमने मुझे बड़ा अच्छा मौका दे दिया, अब मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मेरा जीवन तो अच्छा होगा लेकिन मेरे आसपास जो लोग हैं उनको भी मौका मिले आगे बढ़ने। हम कभी भी दूसरों को बढ़ाए बिना आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा मेरा मानना है। फिर मैं आया दिल्ली में, बैंक में रहा मैं 1973 से 1978 तक, इसलिए बैंक में था, बहुत काम किया, बहुत मेहनत की। और क्या होता था, कई बार बैंक में बुजुर्ग आते थे किसान, वो बैठते नहीं थे कुर्सी पर, क्योंकि आप अफसर हैं, तो मैं भी खड़ा होता था। मैंने कहा अगर आप खड़े हुए हैं तो मैं भी खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं बैठ नहीं सकता आपके बुजुर्गों के सामने। तो वो लोग बहुत मानते थे इस बात को कि एक कैसा अफसर है ये तुम, लेकिन उससे मेरा काम आसान हो गया कि भाई ये आदमी इज्जत करता है। तो कई लोग जो ड्रॉइंग देते थे समय पर, मैं उनसे अनुरोध करता था भाई आप देखो अच्छी बात तो नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा करते रहो, जितना सामान है उतना देते रहो, बाकी बात में हम बढ़ा देंगे समय की सीमा को। तो मुरादाबाद में था मैं, अमरोहा में था, वो इलाका बड़ा बदनाम है, लेकिन बाकी जो लोग थे वहां पर, वहां के जो अपराधी वर्ग के लोग थे वो भी मेरी इज्जत करते थे कि आप गरीबों के लिए मदद कर रहे तो हम आपका क्यों नुकसान करेंगे। तो मतलब मेरा ये है कि मैंने मर्यादा के वो रूप देखे हैं कि जिसको शायद मानना काफी आम व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि जो अपराधी हैं, जो जेल में थे, छूट कर आए हैं पैरोल में, वो कैसे आपकी परवाह कर सकते हैं। तो वे क्यों नहीं कर सकते, हर एक के अंदर एक अच्छा इंसान होता है जो शायद इंतजार कर रहा होता है एक मौके का, जिसमें उसको फलने का, फूलने का, अपनी बातों को कहने का मौका मिले। तो थोड़ी सी जगह मिलती है तो वो व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व बाहर आ जाता है। तो बैंक में मैंने काम किया बहुत साल तक, और देखा कि बैंक से कितनी दूरी है इस पर निर्भर नहीं करता है, भौतिक दूरी नहीं महत्व है, सामाजिक दूरी का महत्व है। क्योंकि मैंने देखा शहर के आसपास भी बहुत से गांव में ऐसे लोग थे जिन तक कोई सुविधा नहीं पहुंची, तो उनके लिए काम किया। फिर मैं दिल्ली में आ गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट है रिंग रोड पर, इंजीनियर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वहां 3 साल रहा। एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट था बड़ा अच्छा, जोधपुर, कर्नूल और महेंद्रगढ़, रामनाथपुरम, तमिलनाडु में, बंगाल में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, कर्नूल भी था उसमें, और इस तरह से पूरे और गुजरात में पंचमहल था। तो अलग अलग राज्यों के पिछड़े हुए जिले लिए ताकि वहां पर प्रबंधन की स्थिति सुधारने में युवा लोग कुछ काम कर पाए। तो मैं तो उस समय बहुत ही बस, और वहां उस समय के अंदर 23-24 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में हमने कोशिश की, अध्ययन किया, रिसर्च किया, और वहां 3 साल में रहा। लेकिन मैंने उस दौरान में, मेरा जो डिग्री है वो बायोकेमिकल जेनेटिक्स की है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, और मुझे जाना था अब इकोनॉमिक्स की तरफ, अर्थशास्त्र की तरफ। तो मैंने तो कोई पढ़ा नहीं था, तो पढ़ा उसको, खूब पढ़ा, और वहां पर काफी शोध किया कि सूखाग्रस्त इलाकों में जहां बारिश कम होती है वहां के इलाकों में विकास की क्या संभावनाएं पैदा की। उस दौरान मेरी रुचि पैदा हुई उन समाधानों की तरफ जो लोग अपनी सूझबूझ से पैदा करते हैं इतनी मुश्किल जगह पर।

0: और जैविक विविधता का सहारा लेकर कैसे आगे बढ़ना है, इसके लिए कल्पना की। फिर 1997 में हमने एक कॉन्फ्रेंस की, इंटर्नशिप कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन एट ग्रासरूट, ICCIG.org पर सारी रिपोर्ट दी हुई है आयन ने की 1997 में। उसके बाद हमने निर्णय लिया गुजरात सरकार के साथ मिलकर ज्ञान मनाया, गुजरात ग्रासरूट इनोवेशन ऑगमेंटेशन नेटवर्क। इसका काम था, एक त्रिकोण है इनोवेशन इन्वेस्टमेंट और एंटरप्राइज का, यानी कि निवेश उनके पास नहीं है, नवसर्जन उनके पास है, नवाचार उनके पास है, लेकिन कई बार लोगों के पास उद्यमी बनने की क्षमता भी नहीं है न कौशल है। क्योंकि उद्यमी क्या करता है, वो बैच बाय बैच हर बार बार एक ही चीज को बार बार बनाता है, लेकिन जो नवसर्जक होते हैं ना, वो कोई भी दो चीज एक जैसी नहीं बना सकते। तो एक तरीके से नवसर्जक जो है वो भी कलाकार है, वो हर बार कुछ न कुछ संशोधन करते हैं, हर बार कुछ न कुछ संशोधन करते हैं। लेकिन उद्यम के लिए बड़ा जरूरी है कि आप डिजाइन को स्थिर करते हैं और एक हर एक को एक जैसा डिजाइन मिलना चाहिए, नहीं तो किसी को लगेगा उसको तुमने ये फीचर दिया था, मेरे में तो है नहीं ये, तो मेरा तुमने इसका मतलब मेरे से ज्यादा पैसा ले लिया है, मुझे सही चीज नहीं दी। अब कैसे बताएं कि उस समय दिमाग में बात नहीं आई थी, बाद में आई है दिमाग में बात। तो इसलिए नव सब्जेक्ट के लिए, नवाचारी के लिए उद्यमी साथी ढूंढना बड़ा जरूरी है। कुछ लोग हैं जो अच्छे उद्यमी बन गए, काफी लोग नहीं बन पाते हैं। कुछ लोग करोड़पति बन गए, मनसुख भाई प्रजापति हैं जिन्होंने मिट्टी का फ्रिज बनाया, तवा बनाया, बर्तन बनाया, बोतल बनाई, बीसवें देशों में उनका माल गया है, बहुत संपन्न हो गए वो, बहुत बड़ा काम हो गया। कभी कभी रेडी पे चाय बेचते थे वो, और जो हमने मदद की थी बड़े कर्जे में थे वो उस समय, 1998 की बात है, और ज्ञान ने उनकी मदद की तो आज वो करोड़पति हो गए। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जीवन में बहुत प्रगति की, लेकिन मैं सच में कहूँ तो ऐसे लोग हजारों में होंगे, और ऐसे लोग जिनकी स्थिति बहुत ज्यादा नहीं बदली वो लाखों में है। तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सबकी जिंदगी हम बदल पाए, लेकिन कोशिश जारी है।
1: लेकिन हमने, लेकिन कुछ तो बदलाव हुआ होगा, बिल्कुल शून्य से कहीं तो पहुंचे
0: हुआ। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 2000 में हमने नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन बनाया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की मदद से और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से। तो जब एनआईएफ बन गया तो एनआईएफ के पास थोड़े ज्यादा साधन आए, सरकार की तरफ से 20 करोड़ का कॉर्पस था, और हमने तय किया था कि किसी भी नवाचारी को आप ऑफिस में नहीं बुलाएंगे, ये ज्ञान में हमने कल्पना हमने मर्यादा बनाई थी, आप उनके घर पर उनको सुविधा देंगे, किसी को आप ऑफिस में बुलाकर फॉर्म नहीं भरवाएंगे, आप खुद जाके उनके फॉर्म भरेंगे अगर कुछ आपको जानकारी चाहिए। तो एक ऐसी व्यवस्था बनी जिसमें सभी साथियों ने समझा कि तो जिनके साथ हम काम कर रहे हैं उन्होंने एक समस्या का समाधान कर दिया, हमको बता दिया, उनका काम हो गया, अब हमारा काम शुरू हुआ है। तो ऐसी विचारधारा के साथ लोगों ने बहुत ईमानदारी से बहुत मेहनत की, और 600 जिलों से देश के बहुत सारे उदाहरण लाखों में एनआप में आए। लेकिन जैसा होता है कभी कभी सरकार का हिस्सा बनने के बाद थोड़ी सी जड़ता आ जाती है। कोशिश की, जब तक मैं था 18 साल में वहां रहा, डॉक्टर मशेरकर उसके अध्यक्ष थे, मैं उपाध्यक्ष था, और डायरेक्टर रहे लास्ट में डॉक्टर भसीन थे, उसके बाद अभी डॉक्टर राणा नहीं। तो काफी हरेक ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की उसको आगे बढ़ाने की, और आज भी बहुत पूरे देश में इनोवेशन यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन जान जिसके मॉडल को हमने एनआईएफ में बनाया था, उसका जो मॉडल था उसको हमने रखा कि नवसर्जन सिर्फ स्थानीय क्षेत्र के लिए नहीं होता, पूरी दुनिया के लिए। हम G2G मॉडल बोलते हैं, B2B B2C बोलते हो ना भाई, तो हमने कहा G2G यानी ग्रास रूट टू ग्लोबल। तो UNDP के साथ मिलकर ज्ञान ने, मेरी साथी हैं डॉक्टर अनामिका दे, हम दोनों ने कोर्स पढ़ाया 115 देशों में, 91 लैब हैं उनके साथ मिलकर, कि कैसे ढूंढा जाए दुनिया के अलग अलग देशों में ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी छूझबूझ से कुछ काम किया। एक वैश्विक आंदोलन बनाया इसका हमने, और मैं बड़ा खुश हूं इस बात से कि हमको हजारों ऐसे अनुभव मिले पूरे देश के, पूरी दुनिया में, जिसमें लोगों ने बहुत साधारण सी शिक्षा के बावजूद बहुत असाधारण सा काम किया था और कर रहे हैं अभी भी। तो बस यहीं तक मैं अभी छोड़ता हूँ बात को, कि हमने एक आंदोलन शुरू किया। अभी हम लोग काम कर रहे हैं बारामूला कश्मीर में, सिक्किम में, वेस्ट सिक्किम में, और किफरे जिला है नागालैंड में, तो वहां पर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो महिलाएं हैं उनको जैविक साधनों के पारंपरिक ज्ञान को आधार बनाकर नए नए उद्यम लगाने के लिए, बायो एंटरप्राइज लगाने के लिए। क्योंकि समाज में दोनों तरह का ज्ञान है, नवसर्जन भी है, पारंपरिक ज्ञान भी है, लेकिन पारंपरिक ज्ञान को अब हम भुलाते जा रहे हैं। जितना क्षरण, जितना नुकसान हमारी ज्ञान की विरासत

0: तो इस पीढ़ी में हुआ है, आपकी पीढ़ी में शांतनु, इतना पिछले 5000 साल में नहीं हुआ। क्योंकि अभी क्या है कि जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं और पोते पोतियां हैं, नातियां हैं, उनके बीच में संपर्क कमजोर हो गया और ज्ञान का प्रभाव तो उनके बीच में होता है, बुजुर्गों से बच्चों के पास जाता है, तो वो संबंध कमजोर होने के कारण बहुत सारा ज्ञान अब नई पीढ़ी के पास है ही नहीं। तो आपके बच्चों से पूछें, भाई जुकाम सर्दी हो जाती है तो क्या करते थे तुम्हारे दादा या दादी, शायद उनको नहीं पता होगा ना, लेकिन ये बात जाननी जरूरी भी तो है। तो भाई नाक से ही आप पानी पी लीजिए तो आपकी नाक साफ हो जाएगी, सरसों का तेल लगा लीजिए तो आपका नाक साफ हो जाएगी। हम बड़े बड़े महंगे महंगे इलाज करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। अब बुजुर्ग हैं, उनको प्रोस्टेट है, तो भाई भुट्टे के ऊपर जो बाल होते हैं उसकी चाय पी लो। तो ऐसे साधारण तरीके हैं, ऐसे बहुत सारे। मैं हमेशा अपने साथियों से कहता हूं और जो आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं उनसे भी कहूंगा कि अपने आसपास दो तरह की चीजें ढूंढिए, एबंडेंट और अबंडेंट, यानी ऐसे साधन जो बहुतायत में उपलब्ध हैं और ऐसे साधन जिनको कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। मसलन कि मैंने बताया कि भुट्टे के ऊपर मक्का के अंदर, मक्का के ऊपर टैसल है जिनको आप फेंक देते हैं, उनका कोई प्रयोग नहीं करते, लेकिन उनको क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी दवाइयां बनाने के लिए? जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया अभी, अरे भाई उसकी चाय पी लो, जासूस का फूल है उसकी चाय पी लो। तो मतलब बहुत सारी चीजें हमारे आसपास हैं जिनसे हम स्वस्थ भी रह सकते हैं, प्राकृतिक संपदा को भी विकसित कर सकते हैं, संवर्धन कर सकते हैं और कम खर्च में अच्छा जीवन जी सकते हैं। मैं कंजूस हूं, मुझसे मैं खर्च नहीं करता हूं ज्यादा, क्योंकि मैं समझता हूं कम से कम साधनों में जीने की आदत होनी चाहिए हमारी।
1: ये आपने जैसे एक महामंत्र दे दिया कि अगर आपको जीवन में कोई चीज की कमी महसूस ना हो, इसके लिए कम से कम चीजों का इस्तेमाल करने का, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा महामंत्र दिया आपने। दोस्तों मैं समझता हूँ ये महामंत्र मैं और आप आज अपने जीवन में नोट करेंगे और इसको लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन अनिल जी, आपकी कहानी जब मैं सुन रहा था तो मुझे एक ऐसे हीरो का किरदार नजर आ रहा था जिसके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत है। जब आप कहते हैं कि बचपन में एक समय था जब आपने बहुत अभाव देखा, लेकिन फिर एक समय आया जब आपके पास चुनाव करने का मौका था कि आप अपने लिए अच्छे से अच्छा, बेहतरीन, उम्दा, पैसा कमाने जैसा कोई एक फील्ड आप चूज कर सकते थे, लेकिन आपने चुना कौन सा फील्ड जहां पर मेहनत है और आपके जो आसपास में आपके दोस्त रहे होंगे, जो आपके साथ में आपके कक्षा में, आपके कॉलेज में जो आपके साथी रहे होंगे, उन्होंने ऐसा कोई फील्ड चुना होगा, या जिस दौर से आप आए हैं उस दौर में भारत में या कहें जो एशियाई देश हैं उनमें औद्योगिकरण और टेक्नोलॉजी के आने की वजह से जो ये एक धुन सी रह गई कि एक टेलीविजन का आना, टेलीविजन में फिर एडवर्टीजमेंट्स का आना, उसको देखा देखी उनके जैसा बनना है, द अमेरिकन ड्रीम का गाना सुनते रहना, इन सब चीजों की वजह से आपने समाज को बनते बिगड़ते, ढलते सुलझते सब कुछ करते हुए देखा है। आपने खुद को कैसे बांध के रखा है इसमें? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जब आसपास की चीजों को बदलते हुए देखता है तो वो भी बहक सकता है या वो अपने ध्येय को छोड़कर भी कुछ नया ध्येय तैयार कर सकता है। खुद को पकड़ के रखना अपने ध्येय के साथ, इसका क्या मंत्र यूज किया आपने?
0: मेरी पत्नी साधना थी, अभी तो नहीं रही, वो 2 साल पहले चली गई, लेकिन उनका बड़ा सहयोग मिला मुझे क्योंकि वो बहुत साधित थी और सच्ची थी। तो एक उदाहरण देता हूँ, क्या हुआ, हमारा छोटा बच्चा जो है प्रयास और आभास, मैं एक बार बताना भूल गया आपको, मैंने अपने बच्चों को अपना सरनेम नहीं दिया। तो मेरे बच्चों को मेरी जाति सूचक नाम नहीं दिया उनको, तो वो प्रयास अभिनव और आभास अभिनव उनका नाम है। क्योंकि आज से बहुत साल पहले, 45 साल पहले हमको लगा, हम और साधना एक बार बैठे थे जब बच्चे हमारे होने वाले थे, हमने कहा भाई ऐसा है कि कभी कुछ बन गए अगर, उस समय तो पता नहीं था, साधारण से व्यक्ति थे, बैंक में नौकरी कर रहे थे, अगर कभी कुछ बन गए हमारे बच्चों को हमारे जीवन से कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए, हमारे नाम से कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए, तो उनको अपना नाम नहीं देंगे, वो अपना जीवन स्वयं बनाएंगे और अपने रास्ते पे अपने आप चुनेंगे और अपने आप चलेंगे, ये निर्णय हम दोनों ने किया। तो एक उदाहरण याद आ रहा है कि मेरा छोटा बच्चा जो प्रयास, तो जब छोटा था स्कूल में, तो एक दिन बोला मुझे लूना चाहिए, वो जो वो गाड़ी, वो साइकिल चाहिए स्कूल जाने के लिए। तब तक वो बस में जाता था, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बस में। मैंने बोला तुम्हारा दोस्त कौन है सबसे ज्यादा? तो बोला जोसेफ है। वो भी ले रहा है क्या लूना? बोला वो तो नहीं ले रहा है। तो लूना लोगे तो ऐसे लोगों के साथ जाओगे जिनके पास गाड़ी होगी, मोटरसाइकिल, मतलब साइकिल होगी, मोटरसाइकिल जैसे काइनेटिक होती है आजकल।

0: इज द मदर ऑफ इन्वेंशन।
1: चारों गुरुओं से
0: आवश्यकता है तो फिर उन्नत विचार आएंगे, आप तरीके निकालेंगे
1: आएंगे, लेकिन
0: परिस्थिति से निकलने के।
1: एक बार कहा करता हूँ और आप जो साथी सुनेंगे उनको भी मैं पूछूंगा कि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने विचारों को नहीं मारा है?
0: मैंने तो मारा कई बार, मुझे लगता है हमें
1: तो मैं ये सोचता हूँ शांतनु कि क्या कारण है कि सब के सब हत्यारे हैं, सब अपने विचारों की हत्या करते हैं, दूसरों के विचारों को कैसे बढ़ाएंगे? तो मतलब ये है कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर ये विचार मैं पूरा नहीं कर सकता, इसका पालन नहीं कर सकता तो मुझे इस रास्ते पर नहीं चलना। मैं दिखाता एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। क्या हुआ, वीरमपुर में थे हम, पालनपुर के पास तक नॉर्थ गुजरात में, बहुत साल की बात है, 30 साल की बात। हमारे साथ जयंती भाई थे इसरो के स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिक और फिल्म बनाने वाले। तो कभी भाई एक जड़ी बूटियों के ज्ञाता है, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उनका काम था, लेकिन पौधों के बारे में बहुत जानते थे। तो उनके ऊपर एक फिल्म बनाई थी छोटी सी, बातचीत के बीच दौरान तो उनको कहा एक पत्थर पे आप बैठ जाइए, चट्टान पे मैं बैठ जाता हूँ, बालाराम जैसोर सेंचुरी जो है रीच की बियर की उसके बाहर बैठे थे हम। तो कैमरामैन ने क्या किया, एक छोटी सी डंडी तोड़ी पौधे की, सड़क के किनारे बहुत सारे पौधे थे, निंदामण जो थे खरपतवार, और उनको बोला आप उसको हाथ में पकड़ लीजिए अच्छा लगेगा। करीब भाई नाराज हो गए। अब मैंने कहा क्या हुआ, बोले इसकी जरूरत थी क्या हमको, आप मुझे कहते थे मैं बैठ जाता पौधे के पास बैठ जाता पत्थर की जगह और उसको हाथ से पकड़ लेता, अगर आपको मेरे हाथ में पत्ता ही पकड़ना आता था। तो मेरे मुंह से एक ऐसी गलती बात निकल गई जिसका मुझे आज भी दोष दुख है। मैंने कहा करीम भाई क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, इतने सारे पौधे तो हैं सड़क के किनारे, गंडी तोड़ने का क्या हो गया? बोले क्या कहा आपने, इतने सारे, प्रकृति में कोई भी चीज आवश्यकता से ज्यादा नहीं होती है।
0: अरे ये बहुत बड़ी बात है और बहुत सही बात है।
1: मैं दम चकित रह गया क्योंकि मेरी आदत थी पहले कि कभी लॉन में बैठा हूँ तो घास का तिनका तोड़ लिया मुंह में डाल लेता था, कभी झाड़ी के पास खड़ा हूँ तो पत्ते तोड़ के हाथ में मसलने लगा, बिना बात के ऐसे।
0: तो ये तो हम में से कई करते होंगे।
1: जैसे ही मैं पत्ता तोड़ता हूँ हाथ में, करीम भाई सामने रखते हैं, जरूरत थी इसकी, क्या तोड़ा है इसको, अब मेरे से मेरी आदत छूट गई। तो मतलब मेरा ये है कि प्रकृति से सीखना भी संभव है, ये सिद्धांत की प्रकृति में कुछ भी ज्यादा नहीं होता है। हमको अगर ज्यादा लग रहा है तो हमको समझ में नहीं आया कि कौन सी चीज की क्या स्थिति है, क्या उसकी उपयोगिता है, वो हमारी अज्ञानपन है, लेकिन प्रकृति में कोई भी चीज जरूर से ज्यादा नहीं होती है।
0: इस कहानी में मैंने चारों गुरु के दर्शन कर लिए। आपने एक व्यक्ति के से जो बात सीखी वो आज तक भी आपके ऊपर आपको अच्छे संस्कारों में ढाल रही है, प्रकृति के बारे में जो आपने सीखा वो भी आपको प्रकृति के साथ एक अच्छा व्यवहार निभाने के लिए प्रेरित करती रहती है। लेकिन जब आज का हम दौर देखते हैं जहाँ पर जैसे आपने कहा कि अगर बहुत ज्यादा आपके पास वस्तु है, सामान है, थिंग्स है, तो थॉट्स के लिए, विचारों के लिए जगह नहीं होती, या यूं कहें हम समय नहीं निकालते अपने विचारों की पालना करने के लिए। विचार तो चलो हम कई क्रिएट कर भी रहे होंगे, रच भी रहे होंगे, लेकिन उन विचारों को, उनमें पानी देना, उनको सींचना, उन विचारों को बड़ा करने का जैसे एक जर्नी है, एक प्रोसेस है, उस प्रक्रिया को हम नहीं ध्यान देते। और ऐसे में आ गया है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पर जो पहले समझिए अगर कोई 10% सोचता था, आज वो 1% भी नहीं सोचना चाहता। क्यों? क्योंकि वो कुछ 2-4 शब्द लिख देता है AI में और AI उसके लिए सारा काम कर देता है। मैं किसी एक सभा में गया हुआ था, उस सभा में अंतर्राष्ट्रीय सभा थी और उस अंतर्राष्ट्रीय सभा में एक अंतर्राष्ट्रीय लीडर ने, एक नेता ने एक भाषण पढ़ा, उसका खुद का भाषण था, वो उसका कीनोट स्पीच था, और स्पीच को देने के बाद उसने बोला ये मैंने AI से निकाला है। अब आप समझो मेरे में और AI में कोई फर्क ही नहीं है, आपने तो उसमें भी ताली बजाई जब मैंने सुनाया। तो ऐसे में अनिल जी मुझे आपसे जानना है कि आपको कहीं पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस परिस्थिति में आपको क्या लगता है हमारा समाज किस तरफ जा रहा है?
1: देखिए ऐसा है कि मैंने तो ChatGPT का भी इस्तेमाल किया है, टेस्ट किया है। ये बहुत बड़ी भूल होगी यदि कोई सोचेगा कि क्या AI से हम व्यक्ति का विकल्प ढूंढ लेंगे, ये संभव नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, IIT में कोर्स पढ़ा रहा था मेरे साथी हैं, वहाँ पर एक चक्रवर्ती इंडस्ट्री डिजाइन सेंटर में, तो हम लोग डिजाइन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का कोर्स पढ़ा रहे थे दोनों मिलकर, बहुत सारे स्टूडेंट थे 250-300। कोविड का टाइम था, ऑनलाइन कोर्स था।

0: तो एक दिन मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों ये बताओ आपके घर में ठंडा खाना कौन खाता है? ये सवाल आप चैट जीपीटी से पूछेगा और क्या जवाब मिलेगा आप देखिएगा। तो बच्चा एक धीरे से बोला, माँ खाती है। अरे भाई तो बड़ा गड़बड़ हो गया यार, माँ ने तुम्हें पैदा किया, आईटी भेजा इतनी अच्छी जगह पढ़ने के लिए और उसको खाना ठंडा मिलता है। तो हमने कहा एक काम करते हैं, एक हफ्ते तक आप सभी बच्चे अपनी माँ को गर्म खाना खिलाएंगे और उसके फोटो भी अपलोड करेंगे जो अपने आसपास है, पहली रोटी का भी और आखिरी रोटी जो बनाएंगे वो भी माँ के लिए, उसका भी फोटो करना और फिर बताना हमको क्या हुआ आपके मन में। तो एक हफ्ते बाद हमने संजीव कपूर को बुलाया जो मास्टर शेफ हैं, देखते हैं क्लास में, और हमने बच्चों से कहा अपनी माँ को भी बुलाना है क्लास में, इस क्लास में आपकी माँ का भी स्वागत है। अब बच्चे बोल रहे हैं, वो जो चकला होता है ना जिसपे रोटी बेलते हैं, बोले उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, झुककर बनानी पड़ती है रोटी। अरे दे दे दे दे, इतने दिन से माँ बना रही थी, सर को झोंक रही थी, कंधे में दर्द, उसके या पीछे कमर में दर्द होता होगा, वो दर्द तो महसूस नहीं हुआ आपको, अब जब खुद बनानी पड़ी रोटी एक हफ्ता तो आपको पता लग गया। ये जो पेडागॉजी है, ये जो प्रक्रिया है, किसी के दर्द को अपना दर्द बनाकर जीने का, समझने का, और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, माँ की बात कर रहा हूँ जो हमारे को सबसे ज्यादा प्यारी है। मेरा मतलब है कि चैट जीपीटी ऐसे सवाल नहीं उठा सकता, न इनका जवाब, हमें नए तरीके से सवाल उठाने की आदत डालनी पड़ेगी, नए तरीके से मन को झकझोरना पड़ेगा, जिसमें जो पारंपरिक तरीके से जवाब ढूंढने के कि बाकी लोगों के जवाब ढूंढ रहे हैं और उनको कंपाइल करके दे रहे तो वो जवाब बन जाता था, वो काम चैट जीपीटी कर सकता है। तो जो पहले पूर्व अनुभव है, लेकिन ये अनुभव तो किसी ने किया नहीं ना कभी, बच्चों से कहो कि अपनी माँ को गर्म रोटी पिलाओ, तो ये अनुभव कैसे मिलेगा चैट जीपीटी में आपको?
1: जी, आप जैसे जिन लोगों के साथ हैं, जैसे विद्यार्थी हैं, कई बार विद्यार्थी हो सकता है आपका दिया हुआ जो होमवर्क है या जो काम है वो ऐसे एआई के माध्यम से करके ले आते हैं, तो आप उनको फर्क कैसे करते हैं कि भाई ये तुम्हारा काम नहीं, ये एआई का काम है?
0: देखिए ऐसा होता है कि एक क्रम होता है विचारों का, और वो विचारों का क्रम जो चैट जीपीटी है उसने ये मान लिया है कि जो लोगों ने कहा है उनकी बात को या उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को संवर्धित करके मुझे जवाब ढूंढना है। लेकिन हमारे प्रश्न ऐसे मौलिक होने चाहिए। तो ये जो प्रश्न है कि भाई कहीं कहीं पर जड़ता आ गई हमारे समाज में, महिलाएं जो काम करती हैं उनमें परिवर्तन बहुत धीमा हो रहा है, जो काम पुरुष करते हैं उनमें तेज हो रहा है, जो काम कारीगर कर रहा है, जैसे मैं खद्दर पहनता हूं तो खद्दर के जो करगा है उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है ना, उन क्षेत्रों में कैसे संशोधन लाना है, नव सृजन लाना है, नव सृजन का काम चैट जीपीटी नहीं कर सकता। ये जो हो चुका है उसकी समरी बना सकता है।
1: ये सुनकर के बड़ा अच्छा लगा अनिल जी कि कुछ विद्वान जैसे आप आज भी इंसानों के जो काबिलियत है उस पे पूरा पूरा भरोसा रखते हैं, क्योंकि जहाँ तक नई तकनीक जब भी आती है तो एक उसके प्रति डर कहें या अतिशोक्ति जो होती है डर की भी, वो लेकर के हम चलते हैं। जैसे जब फोन आया तो फोन के लिए भी लोग घबरा रहे थे, लेकिन आज घर घर में फोन है, घर घर से भी फोन, जब मोबाइल आया तो लोग मोबाइल को लेकर घबरा रहे थे। तो नई तकनीक का हमेशा कुछ न कुछ विरोध हुआ है, चाहे मानसिक विरोध हो चाहे सामूहिक विरोध हो, हुआ है। लेकिन ऐसे समय में जब आपके जैसे विद्वान और समाज के कर्णधार जब ये सोचते हैं कि नहीं, इसमें भी हमारे लिए भला है और इसके लिए भी हमको कुछ इस प्रकार के प्रावधान सोचने होंगे जिससे कि व्यक्ति अति में ना चला जाए, वो अपने क्या कहेंगे रूट्स को, अपने जड़ों को पकड़ के रखे और फिर ऊंची उड़ान भरे। तो जो युवा वर्ग है उसके लिए अगर, या जो ऐसा वर्ग है जो तकनीकी थोड़ा सा ज्यादा जागरूक है, उनके लिए अगर आपको कोई मैसेज देना हो तो क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: सबसे पहली बात ये है कि मेरा काम है बेचैनी के बीज बोना, उसको बेचैन करना। आप सब एक दो तीन सवाल अपने आप से पूछें, अगर 24 घंटे में एक भी क्षण ऐसा नहीं आया जब आपको अप्रत्याशित भय मिला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो ऐसा सोचा नहीं, यानी कि आप अचंके नहीं रह गए, आप सरप्राइज नहीं फील किया आपने, तो समझ लीजिए कि वो दिन बेकार गया, आप जिंदा तो रहे, आप जिए नहीं उसे। चलिए, The day you are not surprised, you have not lived, you have just existed. आप जिंदा रहे, जिंदा दिल नहीं रहे उस दिन आप। दूसरी बात है, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं

0: के आसपास जिनमें सुधार की आवश्यकता है। आपके दादा आपकी दादी बिस्तर पे से उठ रही हैं, उनको जोर लगाना पड़ रहा है उठने में। कारण क्या है? कारण यह है कि बिस्तर की ऊंचाई सही नहीं है, उनके पैर 90 डिग्री पे नहीं है, एक्यूट एंगल बन रहा है। 90 डिग्री होगा तो उनको उठने में आसानी हो जाएगी। थोड़ा बिस्तर की ऊंचाई बढ़ा दो, थोड़ा सा उसके नीचे आधा ईंट लगा दो या तो गत्ता लगा दो या तो कुछ लगा दो, ताकि जब वो उठें उतना उनका 90 डिग्री पे होना चाहिए, 60 या 80 पे नहीं होना चाहिए, तो उनको उठने में आसानी होगी। छोटी छोटी बातें हैं, हमारे बुजुर्ग परेशान रहते हैं लेकिन हम उसका समाधान नहीं करते। यानी कि जो अकर्मण्यता है, जो इनएफिशिएंसी है, काम करने के कौशल में जो कमी है, हम उसके साथ जीना सीख जाते हैं। मेरा तीसरा अनुरोध है कि कभी भी किसी काम में कोई कमी लग रही है, दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत के साथ जीना नहीं है हमको, उस दिक्कत को हल करना है। और मैं नहीं कर सकता हूँ तो किसी और से बात करेंगे ना। इसने कहा कि सभी समस्याओं का हल व्यक्ति विशेष एक व्यक्ति कर सकता है। एक बार हमने बहुत सारा डेटा स्टूडेंट से इकट्ठा करवाया है इनके अंदर कि भाई हम जाते हैं शोध यात्रा में, गांव में रहते हैं, तो स्कूलों के बच्चों के लिए कंटेंट इकट्ठा करो। तो उन्होंने कर लिया हिंदी में, अलग अलग भाषाओं में वीडियो वगैरह। हमने कहा अभी इकट्ठा तो हो गया, हम देंगे कैसे वहाँ स्कूलों में, तो कंप्यूटर नहीं है। एक बच्चा बोला टीचर के पास स्मार्टफोन तो होगा, बच्चों के पास नहीं है। मैंने कहा होगा, तो आप ऐसा करिए एक पेन ड्राइव और ओटीजी केबल दे दीजिए। तो मैंने कभी ओटीजी केबल का नाम सुना नहीं था। मैंने क्लास विद्यार्थी से कहा था ये बताओ ओटीजी केबल क्या होता है, मैंने तो कभी देखा नहीं। बोले सर उसमें एक साइड में मैक्रो यूएसबी होता है, एक साइड में यूएसबी होता है, यूएसबी पेन ड्राइव में लग जाएगा, दूसरी साइड फोन में लग जाएगी, टीचर अपने फोन पे डेटा को लेकर बच्चे को लेसन दिखा देगा जो आपने दिया है हमको। अरे वाह। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या मैं विद्यार्थी के सामने मानने मुझे संकोच होना चाहिए कि मुझे नहीं आता इस बात को। तो जीवन में यदि हमें किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो हमें मान लेना चाहिए। हमारे बच्चे कई बार सवाल पूछते हैं जिनका जवाब हमें नहीं पता होता है। ज्यादातर माँ बाप टाल जाते हैं। कुछ माँ बाप हैं जो ढूंढते हैं ऐसे व्यक्ति को जिसके पास उस सवाल का जवाब होगा, वो जवाब पता करते हैं, पता करके बच्चे को बताते हैं। उनका बच्चा वैज्ञानिक सोच वाला बनता है, उनका बच्चा जिज्ञासु बनता है, उनका बच्चा एक नवाचारी बनता है। अगर आप सब चाहते हैं कि आपके छोटे भाई बहन बच्चों में जिज्ञासा जागे, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उनके अंदर कौतूहल हो, उनके अंदर नया कुछ करने की भावना हो, तो उनके सवालों को आप अगर नहीं जानते हैं उनका जवाब, तो मान लीजिए कि आपको नहीं मालूम। तो बच्चे सीख जाएंगे कि कभी कभी हमें नहीं पता होता ना, तो मान लेंगे। हमेशा हमें उसको घुमाना नहीं चाहिए सवाल को, जवाब को। ये बहुत जरूरी बात है। हम अपनी कमी को स्वीकार कर लेंगे तो विकास संभव है, लेकिन कमी को छुपाएंगे तो विकास कभी भी संभव नहीं होगा ना। अगर मैं सवाल नहीं पूछूं क्लास में, अरे बच्चे क्या सोचेंगे, प्रोफेसर को क्या भी नहीं मालूम, नहीं मालूम भाई तो बताओ ना बच्चों, तुम्हें ज्यादा पता है इस बारे में, तुम लोग ज्यादा गैजेट को जानते हो, तो पता लग गया मुझे एक मिनट के अंदर, सब मेरी समस्या हल हो गई। तो कभी भी हमें समाज में बच्चों के सामने खास तौर से अपनी कमियों को, अपनी अज्ञानता को छुपाना नहीं चाहिए। अंत में कहूंगा कि संवेदना बड़ा एक सुंदर शब्द है। हम माने बराबर, वेदना माने दर्द। जब किसी का दर्द मुझे उतना ही गहरा महसूस हो जितना उसको होता है, तो वो उसका नहीं मेरा हो जाता है। संवेदना से सृजनशीलता, फिर मैं कुछ नया करूं, लेकिन मेरे को प्रेरणा कहां से मिलेगी? स्वांत सुखाए, अपनी खुशी के लिए करता हूं मैं काम, वो किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूं। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन, सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत है स्वांत सुखाए, अपनी खुशी के लिए जब हम काम करते हैं तो हमें कोई अपेक्षा नहीं होती कोई हमारी तारीफ करे, कोई हमें इनाम दे, कोई हमारे को पारितोषक दे, कोई हमारा सम्मान करे। ये कमी नहीं लगेगी जीवन में आपको, यदि आपने जो काम किया वो अपनी खुशी के लिए किया। आपका परिणाम, आपको तो इनाम उस चीज में मिल गया जब आपको संतोष मिला, जब आपको सुख मिला किसी की तकलीफ को दूर करके। तो मैं ये मानता हूँ कि जीवन में बहुत ज्यादा जरूरत है सृजनशीलता की, नवाचारों की, नए नए आविष्कारों की। हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, हमें उनके उदाहरणों को अपने स्कूल में लाना चाहिए, अपनी क्लास में लाना चाहिए, अपनी बातचीत में लाना चाहिए, बताना चाहिए, बच्चों की जिज्ञासा बढ़ानी चाहिए। बच्चे कोई सवाल पूछे जिसका जवाब नहीं आता तो मार्क कर उसके सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए। और महिलाओं की जो दिक्कतें हैं, उनको महिलाएं ज्यादा सहनशील होती हैं। ये समाज का एक ऐसा चरित्र बन चुका है जिसके कारण उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए दबाव नहीं बनता समाज के ऊपर। उनकी सहनशीलता उनकी कमजोरी मान ली जाती है, ना कि उनकी ताकत। मैं समझता हूं कि हमें किसी की भी सहनशीलता का, किसी की भी जो सब तकलीफ झेलने की आदत है, क्षमता है, उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। बहुत सारी तकलीफें हैं आज महिलाओं को जिनका कोई,
1: जैसे आपने माँ का उदाहरण दिया कि वो सहनशील है, रोटी बेल रही है, उनके बैक ऑफ द नेक या उनके कंधे पे दर्द हो सकता है हाइट की वजह से, ये अगर हमने इस पे सोचा ही नहीं, संवेदनशीलता अगर

0: शून्य हो चुकी है, कम हो चुकी है, तो हम शायद उनके सहनशीलता को उनका एक रोज का एक हिस्सा समझ लेंगे और कभी उसके लिए ये जो आपने कहा कि भाई कुछ बदलाव लाना वो संभव नहीं हो पाएगा। तो ये जो आपने एक बात कही कि शोध जो है वो विचार शैली जो है वो तब जाकर के आपके अंदर आती है जब आप अपने आसपास देख रहे हैं, संवेदनशील हैं, दूसरे की वेदना को समझ रहे हैं और आपने इस वेदना को समझते हुए जो एक सुंदर यात्रा शुरू की है, शोध यात्रा। इस शोध यात्रा के कई लोग हिस्सा बन चुके हैं और आगे भी बनेंगे, इसके लिए तो पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मेरा एक सवाल इस शोध यात्रा से जुड़ा हुआ है। आपके शोध यात्रा में आपने कई चीजों को ढूंढा है, कई चीजों को जाना है और भारत के कई हिस्सों पे आप गए हैं। क्या आपके शोध यात्रा में आपने कोई एक ऐसी बात देखी जो पूरे भारत को भारत बनाती है?
1: देखिए, ऐसा है, एक बात नहीं हो सकती, वो ऐसी बहुत सी बात। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पर ऐसी कोई यात्रा नहीं हुई जहाँ पर हमें कुछ ना कुछ नया नहीं मिला हो। हमारी 49वीं यात्रा बलिया से गाजीपुर में थी और उससे पहले रामनाथपुरम से रामेश्वरम, जहाँ डॉक्टर कलाम साहब का समाधि स्थल है, वहां तक थी। तो गर्मियों में जाते हैं जहाँ गर्मी पड़ती है, ठंड में जाते हैं जहाँ ठंड पड़ती है। क्योंकि ऐसे समय में जब आप जाते हैं ना तो लोगों को कहना नहीं पड़ता आप क्यों आए हैं। आपका तरीका जो है जीवन का वही आपका मकसद बता देता है। इसलिए हमें कभी ये विश्वास नहीं दिलाना पड़ा किसी भी अनजान व्यक्ति को कि आप हमारे हमको समझाओ या हमें बताओ आपने जीवन में क्या क्या संघर्ष किया है। तो मैं यही कहूंगा कि शोध यात्राओं को सबको बांधने का एक सबसे बड़ा तरीका यह है कि हमारा समाज बड़ा दयालु है। ऐसे लोग जिनसे हम कभी दोबारा मिलेंगे नहीं, उनको मालूम है शायद कि हम दोबारा नहीं आएंगे उस गांव में, वो भी कहते हैं रुक जाओ, खाना खा के जाना, यहीं सो जाओ। तो ये जो समाज का उदार भाव है पूरे देश का, एक जगह का नहीं पूरे देश का। और मैं ऐसे भी लोगों से मिला हूँ जिन्होंने ऐसा काम कर दिया जो कोई करने की कल्पना नहीं कर सकता। करण मेहर और उनकी पत्नी दोनों ने बरगढ़ जिले में उड़ीसा में कुर्ता बनाया जिसमें एक भी सिलाई का धागा नहीं था। ये कुर्ता बुना गया है पूरा का पूरा बांह के समेत, कैसा कर गया होगा वो एक कुर्ता विदाउट ए स्टिच, मेरा ब्लॉग है कभी पढ़िएगा, कैसे बनाया उसने वो। विश्वास नहीं होगा ना आपको इस बात के अंदर। ऐसे ऐसे लोग हमारे यहाँ जो अकल्पनीय चीजों का आविष्कार कर डालते हैं, कर देते हैं सिर्फ ये साबित करने के लिए कि कोई चुनौती तो ऐसी हो जिस जो सबको पराजित कर दे लेकिन मैं उसका उत्तर ढूंढूं। बहुत लोगों ने अपने जीवन के अनुभव हमसे बांटे, बड़ा निस्वार्थी जीवन है। मतलब हम ये बताएं आपको, मैंने बौद्धिक संपदा के अधिकार पर बहुत काम किया है लेकिन 90% 99% मैं कहूंगा ज्ञान लोग दूसरों से बांटने में कभी हिचकिचाते नहीं। बहुत सारे तरीके कश्मीर में मिले, सब जगह मिलते हैं, मणिपुर में हमने आज चर्चा चल रही है, संसद में भी बहस हुई, चिरा चंद्रपुर में जहाँ पर बहुत ज्यादा हिंसा हुई वहाँ हमने अपनी शोध यात्रा शुरू की थी एक ऐसे आश्रम से जहाँ कुकी और नागा जो पहले उनका युद्ध हुआ था तो उनके जो बिना माता पिता के जो ऑर्फन बच्चे थे उनका एक आश्रम बनाया गया जिसमें कुकी और नागा एक साथ पढ़ते थे। मैंने कहा मैती और कुकी जो लोग परिवार टूट गए, चल गए, तकलीफ हो गई, वो एक दूसरे को दवा लगाएंगे ना ये देश जुड़ जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: हम अभी उनको अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि तकलीफ हम सबके भीतर हुई है। ऐसा नहीं, कुछ ही लोग उसको ज्यादा हुई है मैं मानता हूँ लेकिन तकलीफ तो सबको हुई है।
0: पूरे भारत को जोड़ने वाली चीज जो आपने बताई तो उदारता और निस्वार्थ भाव, और उसको अगर मैं एक शब्द में ढालने का प्रयास करूं तो शायद आत्मीयता। ये जो आत्मीयता है व्यक्ति का, व्यक्ति के अंदर जो उसकी आवश्यकता है उसको पहचानना और ये समझना कि ये आवश्यकता केवल उस व्यक्ति की नहीं है, मैं भी कभी इस दौर से गुजरा हूँ, तो ये जो एक आत्मीयता है, ये जो एक अपनापन है, ये भारत को भारत बनाती है। अनिल जी, आपसे बात करते करते जैसे मैंने पहले भी कहा था कि समय का पता ही नहीं चलेगा और चलने भी नहीं दिया आपने, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में फिर कभी आप हमें मौका दें, आपके साथ हम जुड़े और बातचीत करें और हमारे साथी भी आपसे सुन करके, आपसे समझ करके अपने जीवन में चार गुरुओं की आपने बात की, उन गुरुओं से बातचीत करते करते भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन समय जो है हमें इशारा कर रहा है कि हम आपके साथ एक गेम खेलें, उस गेम का नाम है रैपिड फायर राउंड, तो जिसमें हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और सवाल का जवाब आपको एक शब्द में देना होगा। आपने जिस अंदाज में ठीक है कहा उस अंदाज से मुझे समझ में आएगी कि मेरे लिए बड़ा

0: होने वाला ये चैलेंज ऐसे सवाल ढूंढने के लिए। चलिए पहला सवाल आपके साथ ये है, सेवा क्या है?
1: सानिध्य।
0: वाह बहुत सुंदर, पहली बार मैंने ये जवाब सुना, सेवा मतलब सानिध्य, एक दूसरे का साथ, ये बहुत सेवा करता है हमारे ऊपर। जैसे
1: सेवा इसके बिना संभव नहीं है भाई, सानिध्य के बिना सेवा संभव नहीं है।
0: सेवा के लिए सहयोग या सानिध्य जरूरी है, बहुत
1: जरूरी है। जरूर
0: बिल्कुल। शांति क्या है?
1: संतुष्टि।
0: संतुष्टता क्या है?
1: उल्लास।
0: उल्लास क्या है?
1: उत्सुकता।
0: उत्सुकता और जीवन
1: उत्सुकता से पैदा होती है ऊर्जा, ऊर्जा से पैदा होता है उल्लास, उल्लास जो है जीवन की अंतिम आकांक्षा होती है। जब ना पता चलता है कि समय अभाव दुख सुख से परे हो जाते हैं।
0: मैं ये पूछने वाला था कि उत्सुकता और जीवन को आप कैसे जोड़ेंगे और आपने जोड़ दिया। मेरा अगला सवाल यह है कि उन्नति क्या है?
1: अंतर और बाहर के भेद को कम करना,
0: मतलब
1: अंतरंगता कह सकते हैं एक शब्द अगर आप
0: अंतरंगता, या कहेंगे बाह्य और अंतर जगत का एकीकरण,
1: एकीकरण
0: हो, समान हो। बहुत सुंदर।
1: कथनी और करनी एक जैसी हो जाए,
0: कथनी करनी और सोच, किस बात आपने विचारों से की थी, विचार से व्यवहार, व्यवहार से फिर संस्कार, तब जाके वो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो श्रेष्ठ व्यक्तित्व कहलाएगा। एक और सवाल जो मेरे जहन में उठता है वो ये है कि भारत क्या है?
1: सर्वे भवति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, सबका भला हो, हर जीव का भला हो। केवल कृष्ण का कहने मानने वाला, राम की कहानी मानने वाला, अल्लाह के बारे में विश्वास करने वाला, गुरु के बारे में विश्वास करने वाला, खाली उसका भला हो ऐसा हम कल्पना कर ही नहीं सकते अपने धर्म में। हमें तो सब जीवों का सुख चाहिए, खाली मनुष्य का नहीं,
0: भगवान तो सुखी ना,
1: सर्वे चींटी का, गिलहरी का, हर हर जीव का सुख हो, हर सब सब निरामय हो, सभी निरोगी हो, सभी सुखी रहे, ऐसे विचार का जहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ वो है भारत, जहाँ किसी वर्ग विशेष के सुख की कामना संभव नहीं है, उसको तार्किक रूप में उसको स्वीकार ही नहीं किया जाएगा उस प्रार्थना को। वो मेरा भारत।
0: बहुत सुंदर। आखिरी सवाल, अनिल कुमार गुप्ता कौन है?
1: एक बेचैन आत्मा जिसको हर समय तलाश है कि कैसे समाज को जोड़ा जाए, कैसे नए नए विचारों को तो एक माला में पिरोया जाए, ताकि न केवल हमारा देश बल्कि सारी दुनिया के जो लोग हैं उनका जीवन आगे विकसित हो, आगे बढ़े, हमारा समाहित विकास की जो कल्पना है हमारी वो आगे बढ़े।
0: अनिल जी आपने खुद को बेचैन आत्मा कहा, बट मैं समझता हूँ और हमारे सभी श्रोता साथी इससे सहमत होंगे कि आप एक वास्तविक वैचारिक क्रांति लाने वाले देश के वो यशस्वी रतन है जिनके प्रयासों ने कईयों के जीवन को बदला है, चाहे वो आपने जिक्र भी किया कईयों का, चाहे वो करोड़ों में आज लाभ अपने लिए और देश के लिए ला रहे हैं, या चाहे वो लाखों में ला रहे हैं या हजारों में ला रहे हैं, लोगों के जीवन को शून्य से कहीं और एक मुकाम तक पहुंचाने में आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमारे साथ समय बिताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करेंगे कि दोबारा कभी ना कभी आपसे जरूर मुलाकात होगी।
1: धन्यवाद, फिर मिलेंगे।
0: साथियों अभी तक मैं और आप लाभ ले रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर श्री अनिल कुमार गुप्ता जी से, उनके अनुभवों से, उनके जीवन के जो रंग हैं उन रंगों से हम हमारे जीवन के मानस पटल को एक बहुत सुंदर चित्र के साथ, कल्पना के साथ और एक शोध के साथ आगे बढ़ा रहे थे। अनिल कुमार गुप्ता जी को भारत सरकार ने 2004 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, और इस प्रकार के व्यक्तित्व से हम आगे भी मिलते रहेंगे। जैसे अनिल जी ने कहा कि व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान हमें देना होगा अपने विचारों को, विचारों के बाद देना होगा व्यवहार को, कि हमारे वो विचार श्रेष्ठ व्यवहार में तब्दील हो, और वो श्रेष्ठ व्यवहार जो है हमारे अंदर सुसंस्कारों की संरचना करे, और इस सुसंस्कारित संरचना से ही एक सुंदर परिकल्पना की जा सकती है बहुत बखूबी, बहुत खूबसूरत विश्व की। आज हमारे साथ एक वैचारिक क्रांतिकार प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता जी जुड़े थे। यशस्वी भारत कार्यक्रम में हम आपके बीच में एक और नई एक ऐसी हस्ती को लेकर के दोबारा आगे आएंगे, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो। 107.8।
2: मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: मेरा रंग दे बसंती चोला ओए रंग दे बसंती चोला।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होकर बात कर ही लेनी है।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार रेडियो श्रोतागण, प्रस्तुत है आपके पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो पुनेरी आवाज पर एक खास घोषणा। जी हाँ, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ज्ञान चिंतन, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको ज्ञान और सोच के नए आयामों से रूबरू कराएगा और बनाइए अपनी जीवन को खास। ज्ञान चिंतन केवल रेडियो पुनेरी आवाज पर, जहाँ हर आवाज है पुनेरी की पहचान। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और हमेशा की तरह आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। आज का सब्जेक्ट है संस्कार।

0: संस्कारों का जीवन में महत्व। संस्कार एक ऐसा अमूल्य धरोहर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि हमारे जीवन की नींव है। संस्कार का अर्थ होता है शुद्धिकरण, सुधार या परिष्करण। यह हमें सही और गलत का भेद समझाने में सहायता करता है। यह हमारे चरित्र, व्यक्तित्व और जीवन शैली को भी प्रभावित करता है। आइए अब हम समझते हैं संस्कारों का अर्थ क्या होता है। संस्कार शब्द संस्कृत के स उपसर्ग और कृ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है संपूर्णता की ओर बढ़ना या परिष्करण करना। यह नैतिक मूल्यों, आदर्शों और आचरणों का समुच्चय होता है जो व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू में संस्कार की महत्ता होती है, चाहे वह परिवार हो, समाज हो या व्यक्तिगत जीवन। संस्कारों के कई प्रकार होते हैं, जिनमें मुख्यतः धार्मिक, सामाजिक, नैतिक और पारिवारिक संस्कार शामिल हैं। धार्मिक संस्कार, हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का उल्लेख किया गया है, जैसे गर्भाधान संस्कार, नामकरण संस्कार, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार आदि आदि। ये व्यक्ति के जीवन को पवित्र और अनुशासित बनाने में सहायता करते हैं। सामाजिक संस्कार, ये व्यक्ति को समाज के प्रति कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से परिचित कराते हैं, जैसे सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, दूसरों की मदद करना। नैतिक संस्कार, नैतिकता हमारे चरित्र का निर्माण करती है। सत्य बोलना, अनुशासन में रहना, किसी को नुकसान न पहुंचाना आदि नैतिक संस्कारों के उदाहरण हैं। आइए अब हम समझते हैं पारिवारिक संस्कार। परिवार ही संस्कारों की प्रथम पाठशाला होती है। माता पिता द्वारा दिए गए संस्कार जीवन भर व्यक्ति के व्यवहार में झलकते हैं। बड़ों का सम्मान करना, दया और करुणा रखना, सहयोग की भावना रखना आदि पारिवारिक संस्कारों का हिस्सा है। संस्कार व्यक्ति को आत्मनिर्भर, सशक्त और सकारात्मक बनाते हैं। यह हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं और हमें एक अच्छा नागरिक बनने में मदद करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अच्छे संस्कार मिले हैं तो वह किसी भी परिस्थिति में अपने मार्ग से नहीं भटकता। समाज में शांति, सद्भाव और एकता बनाए रखने के लिए संस्कारों का होना अति आवश्यक है। संस्कारों के अभाव में व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। आज के समय में जहां भौतिक सुख सुविधाओं की होड़ मची हुई है, वहां अच्छे संस्कार ही हमें नैतिक पतन से बचा सकते हैं। हम इस चिंतन से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संस्कार किसी भी समाज और राष्ट्र की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि हमें एक सशक्त समाज और सभ्य पीढ़ी का निर्माण करना है तो हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने होंगे। संस्कार ही वह आधारशिला है जिन पर सशक्त व्यक्तित्व और उज्जवल भविष्य की नींव रखी जा सकती है। इसलिए हमें अपने संस्कारों को सहेज कर रखना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को भी इसका महत्व सिखाना चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का चिंतन। फिर मिलेंगे हम किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए पुनेरी आवाज 107.8 FM पर और सुनते रहिए हमेशा की तरह। खुश रहें, खुशियां बांटें। धन्यवाद।
1: हम आशा करते हैं कि आज की ज्ञान चिंतन ने आपके मन में नई सोच और नए विचारों को जगा दिया होगा। साथियों, बने रहें और अगले ज्ञान चिंतन में हम आपसे फिर जुड़ेंगे। रेडियो पुनेरी आवाज पर खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
3: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया। सबको डांट रहा था तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान

0: साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ऐकलत
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी। सुजी शिवानी,
2: ओम शांति।
1: वेलकम टू बीइंग शक्ति।
2: थैंक यू।
1: आई स्टार्ट विद रीडिंग समथिंग फॉर यू।
2: डेफिनेटली।
1: लव दोज हु डोंट लव यू। व्हेन हेट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स यू, repel it with love and use their hatred as motivation to show that tolerance, acceptance and love are better ways to go ahead in this world.
2: When it says love those who don't love you, ki agar aapko koi nafrat bhi bhej raha hai, aap usko wapas pyar bhejo. राइट एंड उनको वो प्यार भेजने से हम ये सिखा रहे हैं कि सहन शक्ति, एक्सेप्टेंस एंड काइंडनेस, यही इस जीवन में आगे बढ़ने का तरीका है।
1: मेरी ड्यूटी है,
2: हमारी ड्यूटी है अपने को बचाने की, हमारी ड्यूटी है अपने को संभालने की।
1: हट जाओ वहां से, जो हेट करता है बात ही मत करो।
2: हाँ, हट जाओ वहां से, भले
1: चले जाओ छोड़ो,
2: लेकिन मन से नहीं हटेंगे ना। अगर कोई हमें नफरत की एनर्जी भेज रहा है और हम भी उसको वापस नफरत की एनर्जी भेज रहे हैं, तो हम हटे नहीं ना वहां से। हम तो इनफैक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो गए उनके साथ, क्योंकि बहुत स्ट्रांग एनर्जी अब दोनों के बीच में हो गई। अब भले आपने बात करना बंद कर दी, हट गया फिजिकली वहां से, उस घर से, उस कमरे से, उस ऑफिस से, लेकिन मेंटली तो हम उन्हीं के साथ कनेक्टेड हैं, तो हटेगा?
1: हटे नहीं तो उसको लव की एनर्जी कैसे भेजेंगे?
2: लव की एनर्जी उसको भेजना, इट ओनली मीन्स कि उससे नफरत नहीं करना। दैट्स ऑल, हमें कुछ नहीं करना। और
1: आपने मुझे हेटेड की भेज दी,
2: आई हेट यू,
1: अब क्या करूं मैं?
2: ठीक है, आई हेट यू जस्ट मीन्स कि मैं आपके लिए सिर्फ गलत गलत गलत और गंदा ही सोच रहे हूं, तो आई हेट यू। अगर आप इतना सा कर लें सिर्फ कि मेरी गलत एनर्जी आने पर भी आप मेरे लिए गलत नहीं सोचे, तो आपने किसको संभाल लिया? इतना तो हम कर सकते हैं। दिस इज नॉट डिफिकल्ट, दिस इज डेफिनेटली नॉट डिफिकल्ट।
1: सोच नहीं सो रहा हूं, ऑटोमेटिक रिएक्शन जा रहा है मेरे पास से।
2: नहीं, रिएक्शन नहीं जा रहा ना, हम
1: आई एम रिस्पॉन्डिंग टू योर फीलिंग्स टूवर्ड्स मी।
2: चूज योर रिस्पॉन्स।
1: इतना टाइम होता है, इतना फास्ट फास्ट एनर्जी थॉट आती है, इतनी थॉट वापस चली जाती है।
2: थॉट वहां से आ रही है आपको, एंड आपको अपने अंदर थॉट क्रिएट होती हुई दिखाई देती है। जब हमें अपने अंदर थॉट क्रिएट होती हुई दिखाई देती है, विच इज नॉट ऑफ अ गुड क्वालिटी, हम किसी के लिए अच्छा नहीं सोच रहे, हमें ये नहीं पता कि ये हम क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए, ये या वहां से आ रही थी, विच बिकेम अ ट्रिगर कि हमारे अंदर भी उनके लिए ऐसी थॉट आई, लेकिन हमें ये तो दिखाना कि हमारे अंदर उनके लिए कैसी थॉट आ रही है, ये तो दिख रहा है। अब उस थॉट को स्टॉप करना, बंद कर देना, चेंज करना, ये हमारी अपने प्रति प्रोटेक्शन है। नहीं तो दूसरा जो नफरत कर रहा है वो तो भेजता जाएगा ना, वो तो भेजता जाएगा। दैट पर्सन हेट्स यू, तो वो भेजता जाएगा। अपनी प्रोटेक्शन के

0: ये उसके बारे में गलत नहीं सोचना है। और जैसे ही अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसके लिए हमने गलत नहीं सोचा, हमने अपने को बचाया, हमारे से ऑटोमेटिकली प्यार की एनर्जी फ्लो हुई, वो ऑटोमेटिक है, उसमें कुछ नहीं करना, क्योंकि अगर ये नहीं है तो ये है ही,
1: न्यूट्रल नहीं है कुछ बीच में।
0: नफरत की एनर्जी अगर आपने नहीं क्रिएट की उसके
1: तो
0: लिए,
1: प्यार की भी नहीं है।
0: दैट्स ओके, प्यार इज योर ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ द सोल।
1: नहीं, अब नफरत की नहीं तो न्यूट्रल गियर नहीं है क्या?
0: प्यार की एनर्जी,
1: प्यार की और नफरत के बीच में न्यूट्रल नहीं है
0: कि आप कुछ नहीं सोचेंगे ना उसके लिए।
1: हाँ,
0: बस इट्स फाइन, दैट इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि प्यार आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी है, ये हमारी ओरिजिनल वाइब्रेशन है।
1: अच्छा,
0: जैसे व्हाइट इस कपड़े का ओरिजिनल कलर है,
1: तो मतलब कुछ कोई और उससे रंग नहीं डालो,
0: रंग नहीं डालो, बस उसको उसका ओरिजिनल रहने दो, कुछ नहीं करना है। और हमें कई बार हमें लगता है कि आई कैन सिट एंड कॉन्शियसली क्रिएट वेरी नाइस थॉट्स फॉर देम, लेट्स नॉट डू इट, आई कांट, छोड़ देते हैं। मुझे बार बार उनके बारे में बैठ के सोचना अच्छा नहीं होता, छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मुझे उनके बारे में गलत नहीं सोचना है। ये करके हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे, इसमें ये हमारा बचाव है। अलग अलग आत्माएं अलग अलग संस्कार कैरी करेंगी, हमारे लिए अलग अलग सोचेंगी, अलग अलग ही सोचेंगी। हम उनकी सोच को स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमने उनकी सोच की क्वालिटी ही वापस उनको रिटर्न करी, तो वेरी सून उनकी हेट्रेड हमारी हेट्रेड बन जाएगी ना, वेरी सून हमारा चित गंदा हो जाएगा ना। तो ये अपना बचाव खुद नहीं करना पड़ेगा, हम अपने आप को नहीं बचाएंगे तो कौन हमें बचाएगा? Who will take care of me? हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन हमारा ध्यान रखेगा? Who will do?
1: सामने से कोई गाड़ी आती तो हम हट जाते हैं,
0: आप
1: कोई जानवर भाग के आता तो हम हट जाते हैं,
0: अपने को बचाते हैं ना।
1: तो ऐसा थॉट आती है तो हट क्यों नहीं जाते?
0: जब आपने अभी कहा कि ये तो किताबी बात है, ये नहीं हो सकता, रिपेल देयर हेट्रेड विद योर लव, यही लाइन थी ना उसके।
1: हाँ, तो पॉसिबल तो नहीं है मेरे लिए।
0: ये पॉसिबल है ना कि सामने से गाड़ी आती है तो हम अपने को हटा लेते हैं?
1: हाँ।
0: सामने से जानवर आता है तो हम अपने को बचा लेते हैं?
1: हाँ।
0: हम थोड़ी ये कहते हैं ये क्यों सामने से आ रहा है। सेम है, वो लाइन का मीनिंग उतना ही है सिंपल, कि सामने से हेट्रेड की एनर्जी आ रही है, चूज क्या करना चाहते हैं, What do you want to do? क्योंकि अगर आपने भी वहां से हेट्रेड की एनर्जी भेजी तो सामने वाली एनर्जी तो और बढ़ जाएगी, एंड फिर भी अगर आपने कंटिन्यू करना भेजा फिर सामने वाली और बढ़ जाएगी। प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपने को बचा लें। इज इट डिफिकल्ट अपनी थॉट को देखकर फिर चेंज करना?
1: कई साल पहले कई लोगों ने मुझे नफरत की एनर्जी भेजी, जेलसी की भेजी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। मुझे कुछ 5-10 साल बाद पता चला कि ये भेज रहे थे, तो मैं कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं किया था उसको, तो वो उधर से बंद हो गया आना।
0: Actually,
1: लेकिन यहाँ मालूम होते हुए,
0: मालूम होने के दो तरीके हैं। एक, हमें विजिबली दिख जाएगा बिहेवियर में, बात करने के तरीके में। मालूम होने का दूसरा तरीका ये है, हमारे अंदर भी उनके लिए
1: नेगेटिव
0: चलना शायद शुरू हो सकता है। अगर सामने से बिहेवियर में दिख रहा है तो अपने आप को बचाना, वो तो बहुत इजी है, लेकिन अगर अपने अंदर नेगेटिव चलता हुआ दिखाई देता है, उसको चेंज करना क्यों डिफिकल्ट होगा? वी जस्ट नीड टू पॉज टुडे बिफोर वी से इमिडिएटली, नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो बहुत डिफिकल्ट है जो इसमें लिखा है, ये तो बहुत इजी है, मुझे दिख रहा है कि मेरे अंदर किसी के लिए नेगेटिव चल रहा है, मुझे दिख रहा है। राइट डाउन योर थॉट्स, लिखें कि मैंने उनके लिए ये सोचा, फिर ये सोचा, फिर ये सोचा, दिस इज डैमेजिंग फॉर मी, ये मेरी शक्ति को कम कर रहा है। तो मैंने, अगर मैं उनके लिए कुछ अच्छा नहीं सोच सकती, तो मुझे एटलीस्ट इस लेवल पे आना होगा कि मुझे उनके बारे में फिर सोचना बंद करना होगा। ये तो लाना ही पड़ेगा अपने आप को। सी, दिस इज अगेन वही है ना पुरुषार्थ का।

0: है ना, सोचते ही जाएंगे उसी डायरेक्शन में उनके लिए, तो अपनी मतलब अनअवेयर ही कितनी बैटरी को डिस्चार्ज कर देंगे. इफ दैट इज हाउ वी लीड आवर लाइव्स, सो मेनी पीपल अराउंड अस विल थिंक अबाउट अस इन डिफरेंट वेज. हम रोक नहीं सकते उन्हें.
1: मैं अगर एक्स वाई जेड के बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहा हूँ तो ये चार यहाँ जो बैठे हैं वो उनको आएगा कि इसकी तरफ से नेगेटिव वाइब्रेशन आ रही है, पता नहीं किस बात की आ रही है लेकिन आ रही है, इनको भी फील होगा.
0: आपकी वाइब्रेशन एज अ पर्सनैलिटी हैवी होगी. जिनके
1: लोग बोलते भी नहीं पता नहीं किस सोच में आप डूबे हुए हो, आज आप नाराज से लग रहे हो.
0: वो तो लग रहे हो,
1: हाँ.
0: वो तो दिख रहे हो, चेहरे पे आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ऑरा हम क्या कैरी करते हैं, ओवरऑल हमारी एनर्जी फील्ड क्या है,
1: जो हम सोचते हैं,
0: जो हम सोचते हैं वो रेडिएट कर रही है, वो वाइब्रेट कर रही है, चारों तरफ जा रही है. उसका असर हमारे शरीर पर, प्रकृति पर, आसपास की आत्माओं पर, सब पर पड़ रहा है. बट मोस्ट इम्पोर्टेंट उसका असर मेरे अपने ऊपर पड़ रहा है. तो कोई और मुझसे नफरत करता है, उसके लिए हम भी बह गए और हम भी वैसा ही सोचने लगे. इतने कमजोर हम नहीं हैं. इट्स जस्ट दैट जब हम चेक ही नहीं करते, तो जैसे आपने कहा वो ऑटोमेटिक ही चलता है, तो वो बहुत समय तक चलता ही गया. हमें पता ही नहीं चला चलता गया. इसीलिए हम ये सब सीखते हैं, ये चल रहा है तो चेकिंग. इट्स लाइक बीमारी शरीर में हो रही थी, बढ़ रही थी, पता ही नहीं चला कि बढ़ रही है, पता ही नहीं चला किस स्टेज तक पहुंच गई. लेकिन जैसे ही सिम्टम दिखाई दिया, सपोज हमें बहुत साल नहीं पता चला कि हमारे अंदर क्या चल रहा था, हम अवेयर ही नहीं थे, मतलब हमने सोचा ही नहीं था कि ये गलत है, हमने सोचा ये नेचुरल है, इसका मतलब हम इस बीमारी को लेकर ही बहुत सालों से चल रहे थे, नेवर माइंड. लेकिन आज जैसे ही सिम्टम दिखता है, अब तो थॉट्स दिखते हैं ना, अब तो दिख जाती है ना, ये अवेयरनेस तो अभी हमें है कि ये दिखता है कि हम पहले हम उस लेवल पे हुआ करते थे, हमें अपना व्यवहार दिखता था, हमें अपने बोल दिखते थे कि हमने ऐसा बोल दिया उनको, हमने ऐसा कर दिया उनके साथ, हमने आज इस तरह से बात की, हमने ऐसे व्यवहार किया. अब हमें अपनी सोच दिखती है. आई थिंक दिस वी ऑल हैव रीच्ड एट दैट लेवल कि हमें अपनी अब थॉट्स दिखते हैं कि दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, वी आर अवेयर. ये अवेयरनेस इतनी इजी नहीं होती है, पहले नहीं थी, कर करके ध्यान रख रख के नाउ वी आर अवेयर कि दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग. दीज आर आवर सिम्टम्स. ये हमारे सिम्टम फर्स्ट हमें दिखाई दे दिया कि ये मैं उनके बारे में ऐसा सोच रहा हूं. नाउ आई एम नॉट अलाउड टू डू दिस. आई कांट लेट इट गो लाइक दिस. क्योंकि ये उनकी तरफ से एनर्जी आ रही है, फिर मेरी तरफ से जा रही है, फिर आ रही है, जा रही है, ये हम दोनों के लिए बहुत क्रॉनिक बन जाएगा. मेरे लिए तो क्रॉनिक बन ही रहा है, तो मुझे इस सोच को बदलना ही है. कॉन्शियसली चेंज, जैसे आपने कहा ना, कॉन्शियसली गाड़ी आ रही है, मुझे आउट ऑफ द वे उसके जाना ही पड़ेगा, मुझे मुड़ना ही पड़ेगा. हम ये नहीं कह सकते वो मुड़े, हम ये नहीं कह सकते वो ब्रेक लगाए.
1: उसकी ब्रेक ही फेल हो.
0: उसकी ब्रेक ही फेल हो. फिर अब सोचो, इसको इंटेलिजेंट कहेंगे क्या कि अगर सामने से कोई आ रहा है उसकी ब्रेक फेल है और हम सामने खड़े होके कहें नहीं, रॉन्ग रास्ते पे आप आ रहे हो, आप ब्रेक लगाओ. हम ब्रेक लगाएंगे. ये किताबी बातें नहीं है, ये इम्प्रैक्टिकल बातें नहीं है, ये बहुत सिंपल एंड बहुत रियल बातें हैं. सिर्फ ये बातें हमें फिजिकल में पता थी, इवन शब्दों में नहीं कहते थे, वो इतना बोल रहा है तुम चुप हो जाओ, बोलते थे ना और हम करते भी थे ना. तो ऐसे ही वो इतना सोच रहा है हमारे लिए, हम चुप हो जाते अंदर. व्हाई वुड दैट बी डिफिकल्ट. एंड जैसे ही हम अंदर चुप हो गए, तो हमने उनके नफरत की एनर्जी का रिटर्न नफरत से नहीं भेजा, और जैसे ही हमने नफरत से नहीं भेजा, हमारी ओरिजिनल क्वालिटी तो लव है, वो अनब्लॉक्ड रही, नहीं तो इट गेट्स ब्लॉक्ड. तो हमने अपनी ओरिजिनल क्वालिटी को ब्लॉक नहीं करना. तो इसको करेंगे ट्राई हम, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है. रिजेक्ट नहीं करना है इतनी अच्छी अच्छी बातों को ये कहकर कि ये बहुत डिफिकल्ट है. नहीं तो हमने अपने मन को क्या कह दिया कि ये तो तुम्हारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, ये तो ऐसे ही कोई लिख देता है, ऐसा होता
1: और नहीं. मन भी मान के बैठ जाता है मेरे लिए पॉसिबल नहीं है,
0: क्योंकि उसमें मन को कुछ करना नहीं है ना, मन ने कोई मेहनत करनी नहीं है. तो हम कहते हैं बहुत इजी, तुम्हें कुछ नहीं करना, ये तो ऐसी ही बातें हैं सारी, ऐसे ही बोलते हैं.

0: निकला, दूसरे देश में गए, लेकिन मैंने टॉलरेट कर लिया, मींस मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मौसम बदला, मैं बीमार नहीं पड़ा, इसको कहेंगे सहनशीलता। दुश्मन आत्मा को भी रहम दिल भावना से देखना, बोलना और उसके संपर्क में आना, दुश्मन आत्मा को भी सेम, जो हेट करेगा हमें, इसको कहते हैं सहनशीलता। शास्त्रों में है, महावीर हनुमान के लिए दिखाते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ भी हथेली पर एक गेंद के समान ले आया। सारे जो शास्त्रों में बातें हैं, ये हमें मैसेज देने के लिए होते हैं। उस मैसेज को समझकर उसे हमें जीवन में धारण करना है। तो हनुमान जी हथेली पर पहाड़ लेकर आए, ऐसे ही कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को भी छोटा सा खिलौना बनाए, खेल की रीति से सदा खेला करो, भारी बात को भी सदा हल्का बनाओ, स्वयं भी हल्के रहो और दूसरों को भी हल्का बनाओ। हम क्या करते हैं, सिर्फ जो शास्त्रों में बात लिखी होती है उसको सुनते हैं, पढ़ते हैं, कथा करते हैं, लेकिन उसका मीनिंग हमें जीवन में कौन सा अप्लाई करना है वो उसको नहीं यूज करते हैं। रामायण कथा कितनी बार सुनी होगी,
1: अनगिनत
0: रटी हुई है कथा, हर जगह चित्र है कि हनुमान जी पहाड़ को अपने हाथ पर लेकर जा रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में जब पहाड़ जैसी बात आती है तो फिर परमात्मा कहता है कितनी भी बड़ी बात हो, समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को भी छोटा सा खिलौना बनाए, खेल की रीति से सदा पार करो, बड़ी बात को हल्का बनाओगे तो स्वयं भी हल्के रहोगे और दूसरों को भी हल्का बनाओगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम भी हल्के बन जाएंगे और दूसरों को भी हल्का बना देंगे, इसको कहते हैं सहनशीलता। बड़ी बात आई उसको भी टॉलरेट कर लिया, छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं लेकिन पहाड़ को गेंद बनाओ, अंडरलाइन है ये लाइन, छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं बना दो,
1: पहाड़ को बॉल बनाओ,
0: पहाड़ को गेंद बनाओ। आज हम छोटी सी बात को भी पहाड़ बना देते हैं अपने जीवन के अंदर, तो परमात्मा कहते हैं छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं, पहाड़ को गेंद बनाओ, विस्तार को सार में लाना, ये है सहनशीलता। बात का विस्तार है, ऐसे किया, फिर ऐसे हुआ, फिर उसने ऐसे किया, ये किया, विस्तार को सार में लाओ, ये है सहनशीलता। विघ्नों को, समस्या को अपने मन में व दूसरों के आगे विस्तार करना अर्थात पहाड़ बनाना, विघ्नों को, समस्या को दूसरों के सामने वर्णन करना, जो हमने कुछ दिन पहले भी देखा ना कि उस बात को बार बार बोलना, दूसरों से डिस्कस करना,
1: निंदा करना किसी की बार बार,
0: इवन एक समस्या को बार बार डिस्कस करना, बार बार उस प्रॉब्लम को डिस्कस करते रहना, तो प्रॉब्लम को डिस्कस करते करते प्रॉब्लम का पहाड़ बन जाएगा। सोल्यूशन को डिस्कस करना इज डिफरेंट एंड प्रॉब्लम को डिस्कस करना इज डिफरेंट,
1: और निंदा करना तो टोटली डिफरेंट,
0: वो तो एनर्जी ही अलग है,
1: वेरी
0: ट्रू। लेकिन विस्तार में न जाए, फुल स्टॉप से बिंदी लगाओ, बिंदी बन, आगे बढ़े, इसको कहते हैं विस्तार से सार में लाना। फुल स्टॉप लगाओ और बिंदी बन जाओ, मैं आत्मा हूँ, बिंदी बन जाओ और उस बात को, प्रॉब्लम को फुल स्टॉप लगा के सोल्यूशन पर चलो।
1: विस्तार को सार,
0: विस्तार मीन्स प्रॉब्लम को डिस्कस करते करते प्रॉब्लम को, यू नो समटाइम्स हम किसी बात को बार बार खींचते ही जाते हैं इतना लंबा, तो हम विस्तार में चले जाते हैं, उस प्रॉब्लम को सार में समझो और फिर उसके सोल्यूशन पर फोकस करो। तो फुल स्टॉप लगाओ और बिंदी बन जाओ। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो, ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को भी पार कर लेगी।

0: ज्यादा थॉट्स में इंटेंगल नहीं होंगे, ज्यादा संकल्पों के ताने बाने में उलझे नहीं रहेंगे, तो वो बड़ी सी बड़ी समस्या को भी बहुत हल्के रूप में क्रॉस कर सकते हैं। जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय लगता है, शक्तियां भी समाप्त हो जाती हैं, अर्थात शक्ति ज्यादा यूज होती है, ऐसे ही विस्तार भी लंबा रास्ता है और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करने का। पार दोनों ही करते हैं, मतलब प्रॉब्लम को क्रॉस तो दोनों ही करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों को बचाते हैं। इस कारण से निराश नहीं होते, दिल शिकस्त नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं। इसको कहते हैं सहनशीलता, पावर टू टॉलरेट। कितनी सुंदर डिस्क्रिप्शन है सारी, है ना? इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट। यू नो, सबसे बड़ा बिलीफ सिस्टम जिसको खत्म करना पड़ेगा ना, ये नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट, ये नहीं हो सकता है।
1: किताबी बातें।
0: हाँ, नो वेट, ले उस बात को, हमारे अच्छे के लिए आई है वो हमारे सामने बात, हमारे फायदे के लिए आई है, हमारी उन्नति के लिए आई है, हमारे बचाव के लिए आई है। जैसे आप कितनी बार कहते हैं, जब हम कुछ करना चाहते हैं तो यूनिवर्स हमारी तरफ भेजती है ना उन चीजों को।
1: सही बात है, हेल्प करती है। लेकिन यहाँ ना टॉलरेंस का बचपन से मीनिंग ही कुछ उल्टा निकाला हुआ था मैंने। मैंने सोचा जो आदमी टॉलरेट करता है वो कमजोर होता है, वो वापस नहीं लड़ सकता है, वो आगे सक्सेसफुल नहीं हो सकता जीवन में, वो वहीं का वहीं रहेगा, बेचारा है, कमजोर है, यू नो लाइक दैट, विक्टिम है।
0: लेकिन अब टॉलरेंस का कितना अच्छा
1: है। मैं तो बोलता था मर जाना अच्छा है लेकिन लड़के मरो।
0: टॉलरेट
1: क्या करना है दुनिया में।
0: टॉलरेट करना मीन्स अंडरस्टैंड करना। जैसे कोई चीज सामने खड़ी है, अगर आपके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल है, उसके साथ लड़ना नहीं है, अंडरस्टैंड करना कि ये रास्ते में खड़ी है, अब मुझे तो इसके अराउंड होके टर्न होकर ही जाना है। ये तो विजडम है ना। आज सारा दिन में हम इसको प्रैक्टिस करेंगे कि अनेक आत्माएं, अलग अलग संस्कार, मेरे से डिफरेंट, मेरे से भिन्न हैं और रहेंगे। दे विल ऑलवेज बी डिफरेंट। उनका रोल, उनका स्क्रिप्ट, उनका संस्कार डिफरेंट है। एंड टॉलरेंस मीन्स अंडरस्टैंडिंग दिस डिफरेंस। एंड ये नहीं कि हर डिफरेंस मेरे मन की स्थिति को दैट इज लैक ऑफ विजडम ऑन माई साइड, लैक ऑफ स्ट्रेंथ ऑन माई साइड, कि जो चीज ऑब्वियस है उस ऑब्वियस चीज को लेकर उसका चिंतन करके हम डिस्टर्ब हो जाएं, तो ये हमारी कमजोरी की निशानी है।
1: ब्यूटिफुल,
0: थैंक यू
1: सो मच। ओम शांति।
2: इफ समवन रेडिएट्स वाइब्रेशन ऑफ हेट्रेड towards us, and if we radiate the same hatred towards them, then we will get strongly connected in a negative emotional bond. Even if we physically withdraw from them, we are very connected to them in our mind. Even if we are receiving hatred, the thoughts we create is our choice. We have three options. We can think the same negative way. We can stop thinking about them completely. Or we can create pure thoughts for them. We have a choice. It is for our own protection, for our own health and happiness, that we should not think negatively for anyone, even if we are receiving hatred from them. If we only take care that we don't hate them, then our original energy of love is naturally flowing. Each soul carries different sanskars. If someone hates us, we cannot stop them from thinking that way about us. But if we get

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर लिए, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

भारत एक ऐसा देश है जहां अनेकता में एकता का नारा सदा गूंजता रहा है। इतने राज्य, भाषाएं, बोलियां, संस्कृतियां मिलकर भारत को अतुल्य भारत बनाती हैं। तो आइए इस अतुल्य भारत के एक ऐसे प्रदेश में आपको ले चलते हैं जो आपको अपने एक अलग अनोखे रंग में रंगा नजर आएगा। चलिए चलते हैं बिहार।

बिहार भारत के प्रमुख राज्यों में से एक है। इसके उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में झारखंड राज्य है। यहाँ अनेक नदियाँ बहती हैं, जिनमें गंगा प्रमुख है। अन्य नदियाँ हैं सोन, पुपुन, फागु, दुर्गावती, कोसी, गंडक आदि आदि। बिहार गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के मैदान में बसा है। झारखंड राज्य बिहार से अलग होकर बना है, जिसके बाद बिहार की भूमि मुख्यतः नदियों के मैदान और समतल भूभाग है। बिहार गंगा के पूर्वी मैदान में है और गंगा नदी इसी प्रदेश के लगभग बीचों बीच से होकर बहती है। उत्तरी बिहार बागमती, कोसी, गंडक, सोन और उनकी सहायक नदियों का समतल मैदान है। बिहार के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी है और दक्षिण में छोटा नागपुर पठार है, जिसका हिस्सा अब झारखंड है। उत्तर से कई नदियां बिहार से होकर बहती हैं और गंगा में मिल जाती हैं।

भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद सन 1950 में बिहार को एक राज्य घोषित कर दिया। इसके बाद जब 1956 में सभी प्रदेशों का निर्माण भाषा के आधार से हुआ, तब बिहार के कुछ क्षेत्र वेस्ट बंगाल में शामिल हो गए। सन 2000 में बिहार को विभाजित कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। अब बढ़ते हैं बिहार के भूगोल की तरफ। प्राकृतिक रूप से यह राज्य गंगा नदी द्वारा दो भागों में विभाजित है, उत्तर बिहार मैदान और दक्षिण बिहार मैदान। सुदूर पश्चिम उत्तर में हिमालय की तराई को छोड़कर गंगा का उत्तरी मैदान समुद्र तल से 75 मीटर से भी कम की ऊंचाई पर जालोड़ समतली क्षेत्र का निर्माण करता है और यहाँ बाढ़ आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा और अन्य नदियाँ नेपाल में हिमालय से नीचे उतरती हैं और अलग अलग जलमार्गों से होती हुई गंगा में मिलती है। दक्षिण पश्चिम में सोन घाटी के पार स्थित कैमूर पठार में क्षितिज बालूकाशन की परत चूना पत्थर की परतों से ढकी

उत्तर के मुकाबले दक्षिण गंगे मैदान ज्यादा विविध है और अनेक पहाड़ियों का उत्थान कच्छारी सतह से होता है। यहाँ सोन नदी को छोड़कर सभी नदियाँ छोटी हैं। अब जानते हैं कुछ कृषि के बारे में, क्योंकि बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। राज्य में लगभग 80% लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। बिहार की प्रमुख खाद्य फसलें धान, गेहूं, मक्का और दालें हैं। वह मुख्य नकदी फसलें गन्ना, आलू, तंबाकू, तिलहन, प्याज, मिर्च, पटसन आदि हैं। बिहार में भी भारत के अन्य प्रदेशों की कृषि की भूमिका एक नींव के रूप में है। अब बात करते हैं उस विशेष हिस्से की जो किसी भी प्रदेश के भविष्य का आधार है, यानी कि शिक्षा जगत। बिहार में कई उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उनमें से मुख्य है पटना स्थित प्राचीन व महत्वपूर्ण पटना विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर में BRA बिहार विश्वविद्यालय और भागलपुर स्थित तिलका मांझी भालपुर विश्वविद्यालय। यहाँ द पटना स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है, जहाँ विशिष्ट विषयों की शिक्षा दी जाती है। प्राचीन काल में बिहार शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वर्जासन विश्वविद्यालय एवं उदंतपुरी विश्वविद्यालय यहाँ है। बिहार में आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा हुआ। शिक्षा का माध्यम संस्कृत फारसी के साथ अंग्रेजी था, लेकिन उस समय अंग्रेजी भाषा की प्रमुखता ज्यादा थी। अगर नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना गुप्तकालीन सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने 415 से 454 ईसा पूर्व में की थी। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए जावा, चीन, तिब्बत, श्रीलंका व कोरिया आदि के छात्र आते थे। जब ह्वेनसांग भारत आया था, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में 8500 छात्र एवं 1510 अध्यापक थे। इसके प्रख्यात अध्यापकों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमति, ज्ञानचंद्र, नागार्जुन, वसुबंधु, असंग, धर्मकीर्ति आदि थे। इस विश्वविद्यालय में पाली भाषा में शिक्षण कार्य होता था। 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण से यह विश्वविद्यालय नष्ट हो गया था। बिहार का एक और प्राचीन विश्वविद्यालय था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसे पालव वंशीय शासक ने 770 से 810 ईस्वी में बनवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की वज्रायन शाखा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ न्याय, तत्व ज्ञान एवं व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ के विद्वानों में रक्षित, विरोचन, ज्ञानभद्र, बुद्ध, जैत्रिप, रत्नाकर, शांति ज्ञान, श्रीमित्र, अभ्यंकर थे। बिहार का प्राचीन काल शिक्षा के लिए विख्यात है। ये तो हुई शिक्षा की बात, अब आइए बिहार की संस्कृति से करते हैं कुछ जान पहचान। बिहार का सांस्कृतिक क्षेत्र भाषाई क्षेत्र के साथ करीबी संबंध दर्शाता है। यह मैथिली भाषा है, प्राचीन मिथिला की, जिसमें ब्राह्मणवादी जीवन व्यवस्था की प्रधानता है। मैथिली बिहार की एकमात्र बोली है, जिसकी अपनी लिपि यानी तिरहुत है और समृद्ध साहित्य इतिहास है। मैथिली के प्राचीनतम और सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाकारों में विद्यापति अपने श्रृंगारिक व भक्ति गीतों के लिए विख्यात है। यहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है, परंतु इस बोली में शायद ही कोई लिखित साहित्य है, लेकिन इसका मौखिक लोक साहित्य प्रचुर है। आधुनिक हिंदी व उर्दू साहित्य में बिहार के मैदानी क्षेत्रों के रचनाकारों का भी उल्लेखनीय योगदान है। बिहार की आदिवासी संस्कृति भी अति रोचक है। अधिकतर आदिवासी गांवों में इष्ट देव की पूजा के लिए एक पवित्र उपवन शयनागार होता है। आदिवासी त्योहारों में सरहुल, वसंतोत्सव और शीतोत्सव उमंग व उल्लास के पर्व होते हैं। यहाँ ही पावापुरी है, जहाँ जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर को महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बिहार स्थित गया एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है और इसके निकट बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल बोधगया भी है, जहाँ बुद्ध को बौद्धि तत्व की प्राप्ति हुई थी। पटना के उत्तर में सोनपुर के समीप हरिहर क्षेत्र में प्रत्येक नवम्बर में भारत के प्राचीनतम विशाल पशु मेलों में से एक का आयोजन होता है। अब बिहार के अनेक हिंदू त्योहारों में होली और छठ है, जिनमें मुख्यतः स्त्रियों द्वारा सूर्य की आराधना की जाती है। ये यहाँ का अत्यधिक महत्वपूर्ण पर्व है।

पर्यटन की बात की जाए तो किसी भी प्रदेश का परिचय अधूरा है, तो आइए घूमते हैं बिहार, जो कि पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक धरोहरों, धर्म, आध्यात्म और संस्कृति का केंद्र रहा है। यहाँ की परंपराएं, संस्कृति, रीति रिवाज और जीवन पद्धति, मेले, पर्व, त्योहार हमेशा से पर्यटकों को आकर्षित करते रहे हैं। राज्य के प्रमुख पर्यटन केंद्र हैं राजगीर, नालंदा, वैशाली, पावापुरी, जहाँ भगवान महावीर ने अंतिम सांस ली और निर्वाण को प्राप्त हुए। और भी कई स्थल यहाँ देखने योग्य हैं, जैसे कि बोधगया, विक्रमशिला, उच्च शिक्षा के बौद्ध विश्वविद्यालय के अवशेष, पटना, पाटलिपुत्र का प्राचीन नगर, सासाराम, शेरशाह सूरी का मकबरा और मधुबनी। यहाँ के और भी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं मुंडेश्वरी मंदिर, कैमूर, रोहता, सगड़ किला, रोहतास, जैन तीर्थ स्थल, कुंडलपुर, नालंदा, बिहार योग केंद्र, मुंगेर, मनेर शरीफ, पटना आदि, जहाँ आप जा सकते हैं और खूब आनंद के साथ अपना समय व्यतीत कर सकते हैं तथा इतिहास को और करीब से जान सकते हैं।

आशा करते हैं कि ये विशेष कड़ी आपको भारत के इस विशेष राज्य के समीप ले गई होगी। इस सफर को अब हमें यहीं खत्म करना होगा। आगे जानिए और बहुत कुछ 29 राज्य एक राष्ट्र एक कहानी में। जय हिंद।

0: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं. लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग. लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग. दैट्स माय लाइफस्टाइल.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

यूर ट्यूब बोरियत की एरर, नएपन की कमार रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। जी हाँ, आइए आज के इस खाबों के सफर को हम लोग सजाएंगे कुछ गीत है अल्फाबेट के से। अल्फाबेट के से बहुत सारे खूबसूरत गाने हैं जो आज के शो में हम लोग सुनाने की कोशिश करेंगे, और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग इस कार्यक्रम को सुनते हैं और अपनी भावनाओं को मैसेज के जरिए, फोन के जरिए हमारे तक पहुंचाते हैं। तो आइए, आप सभी को ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा प्यार। कार्यक्रम की शुरुआत में एक बहुत ही खूबसूरत गाना, 1958 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था साधना, और ये फिल्म जो है एक बहुत ही खूबसूरत सामाजिक मार्गदर्शन फिल्म कह सकते हैं। वैजयंती माला और सुनील दत्त पर पिक्चराइज किया गया था। तो आइए

साहिल लुधियानवी साहब का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, बहुत ही खूबसूरत गीत, एन दत्ता का संगीत, साधना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। और मैंने कहा था कि आपको जैसे मुख्य कलाकार सुनील दत्त और वैजयंती माला है। इस फिल्म की कहानी इस तरह से है कि एक माँ अपने बेटे की शादी की चिंता करती है और फिर बेटे से बार बार कहती है कि आप तो शादी कर ले, लेकिन बेटा शादी नहीं करना चाहता है। और इस वजह से माँ एक दिन बीमार हो जाती है और बहू बहू की पुकार लगाती है। तो ऐसे में बेटा जो है बहुत परेशान हो जाता है। बेटा फिर अपने एक दोस्त के साथ ये बातें करता है कि इस तरह से माँ जो है बहू बहू पुकार रही है, तुम्हें क्या। तो उसका दोस्त उसे कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, किसी भी लड़की को कुछ समय के लिए नाटक करने के लिए कहो। तो बेटा कहता है, ऐसा हो सकता है, हाँ हाँ क्यों नहीं हो सकता है। बेटे के कहने पर दोस्त एक गाने वाली को घर में ले आता है जिसका नाम है रजनी, और उसे पैसे के लिए खास ये नाटक करने के लिए कहता है। तो वो राजी हो जाती है और ये नाटक शुरू हो जाता है और बाद में ये नाटक हकीकत में बदल जाता है। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत नगमा आपको सुनाते हैं जो के अक्षर से शुरू होता है, ये गाना। जी हाँ, कैसा जादू बलम तूने डाला, मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा, गीता दत्त का गाया, ओपी नैयर का संगीत और फिल्म का नाम 12 o'clock यानी रात 12 बजे। खुश रहो, खुशियां बांटो,

0: जी हाँ, 12 o'clock 1958 में फिल्म रिलीज हुई थी। एक वकील की कहानी है। हत्या की आरोपी अपनी प्रेमिका को बचाने की हर संभव कोशिश इसमें करता है और ये फिल्म प्रेम चक्रवर्ती के निर्देशन में बना था। जीपी सिप्पी साहब इसके निर्माता रहे और कलाकार के रूप में गुरुदत्त और वैदा रहमान मुख्य रोल अदा करते हैं और साथ ही कलाकार हैं जॉनी वॉकर और शशि खन्ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ बातें करते हुए और ये गीत भी पुराने 60s एंड 50s के गाने जो है अपने आप में खास है। आज के समय में ऐसे गाने कहाँ बनते हैं। वही एक और खूबसूरत गाना जिसको सुनकर आपके दिल में हलचल होगा, ये
1: काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए।
0: जी हाँ, खाली घटा छाए मोरा जिया तरसाए। मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा, आशा भोसले का गाया, सचिन देव बर्मन का संगीत। फिल्म का नाम है सुजाता। जी हाँ, 1959 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और एक अछूत अनाथ सुजाता को ब्राह्मण दाम्पति द्वारा अपनाया जाता है और वो बड़ी होती है और ब्राह्मण आदमी अदीर के प्यार में पड़ती है, लेकिन वे एक साथ रहने के लिए संघर्ष करते हैं जैसे समाज उन्हें नीची नजर से देखता है। तो ये एक जाति भेद वाली जो संघर्षमय जीवन कहानी यहाँ पर प्रेम के इस स्वरूप में कहीं न कहीं प्रेम जो है हिलोरे तो लेता है लेकिन जाति के भेदभाव में वो फिर कैसे दब जाता है, वो चीजें यहाँ पर एक समाज का जो पहलू है बताने की कोशिश की है बिमल रॉय ने। और सुबोध घोष ने इस कहानी को लिखा है। कलाकार के रूप में नूतन सुंदर और ललिता पवार ने काम किया है। चलिए सुनते हैं इस पूरे गीत को। आप सुनाए है रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM पर खाबो का सफर। खुश रहो, खुशियां पाओ।

जी हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। 1959 के बाद 1960 में आते हैं। 1960 में एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था अनुराधा, और ये जो फिल्म है इसमें एक बहुत ही खूबसूरत गाना है जिसे शैलेंद्र साहब ने लिखा था और लता मंगेशकर ने गाया था, रविशंकर साहब ने इसको संगीत दिया था। तो आइए, गीत के बोल इस तरह के हैं, कैसे दिन बिताए कैसे बिताए रात।

चलिए, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये भी खूबसूरत गाना था अनुराधा फिल्म का। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत फिल्म 1962 में आई थी जो बहुत अच्छा पॉपुलर भी रहा। और ये एक अमीर युवक की कहानी इसमें बताई गई थी जो खुद को साबित करने अपने घर की सुविधाओं का त्याग करता है और मुंबई जाता है। वहाँ रीनू नाम की एक लड़की से मिलता है और उसे उससे प्यार हो जाता है। वो लड़की जो अपने परिवार से कुछ रहस्य छिपा रही है वो जानने की कोशिश में हीरो जो है बहुत मुश्किल में आता है। और इस तरह की कुछ कहानी बताई गई है असली नकली। और 1962 में ये रिलीज हुई थी ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में और इसमें मुख्य कलाकार देवानंद, साधना मुखरी, नाजिर हुसैन और लीला चिटनिस है। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना आप सबके नाम।

चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी अच्छी बातें हो रही हैं और पुराने फिल्मी गीतों के साथ फिल्मी मसाला भी आपको मिल रहा है। आशा करता हूँ आप सब एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए आपके मनोरंजन को और बढ़ाते हैं। 1964 में एक फिल्म आई थी जो

देश भक्ति पर आधारित थी जिसका नाम था हकीकत। ये फिल्म जो है 1962 के चीन भारत युद्ध पर पिक्चराइज किया गया था और लड़ रहे सैनिकों की पलटन को लद्दाख के पर्वतीय इलाकों में मृत्यु मान लिया जाता है। हालांकि उन्हें लद्दाख की जनजातीय और कैप्टन बहादुर सिंह द्वारा बचाया जाता है और फिल्म में ये आखिर तक थोड़ा सस्पेंस बना रहता है, लेकिन इसके बाद जब लोगों को पता चलता है तो लोगों में एक बड़ा उल्लास आता है। तो 1964 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। चेतन आनंद इसके निर्देशक रहे। हरमिंदर, बलराज साहनी, विजय आनंद इस फिल्म के मुख्य कलाकार के रूप में काम किया है। तो आइए इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना जिसे कैफी आजमी साहब ने लिखा था, मोहम्मद रफी साहब ने आवाज दी थी, मदन मोहन जी ने संगीत से संवारा था। तो सुनते हैं ये खूबसूरत देशभक्ति वाला गीत आपके नाम। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनी की आवाज 107.8 FM पर। ख्वाबों का सफर और मैं हूँ आपका हम सफर सनी। तो चलिए दोस्तों, 1960s और 1970s की कुछ खास बातें मैं आपको सुना रहा हूँ, कुछ खास फिल्मों के कुछ खास गाने आपको सुना रहा हूँ। तो आइए, 1968 में एक और खूबसूरत फिल्म आई थी जिसका नाम था आदमी। ये फिल्म जो है एक जुनूनी युवक की कहानी को बताता है और एक दुर्घटना के बाद व्हीलचेयर तक सीमित हो जाता है वो, और उसे तब पता चलता है कि उसकी मंगेतर और उसके सबसे अच्छे दोस्त प्रेम संबंध में हैं। उसका क्रोध उससे उसके सबसे अच्छे दोस्त के खिलाफ जानलेवा मनसा में बदलता। तो ये कहानी में इस तरह का क्लाइमेक्स बताया गया है और कलाकार के रूप में इस फिल्म में दिलीप कुमार, मनोज कुमार, बहिदा रेमन और प्राण है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और इस फिल्म में दो खूबसूरत गाने हैं, वो भी क अक्षर से यानी के से। तो बैक टू बैक दो गाने इस फिल्म का आपके लिए खास। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आदमी फिल्म का दो गाने बैक टू बैक आपने सुना, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा है। और दोनों गाने में जैसे कि कल के सपने इसे शकील बदायूं साहब ने लिखा था, लता मंगेशकर ने गाया था, नौशाद जी ने संगीत से सवारा था, और उसके बाद जो गाना हमने आपको सुनाया उसे भी शकील बदायूं साहब ने लिखा, महेंद्र कपूर और मोहम्मद रफी साहब ने गाया था, नौशाद जी का संगीत था। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत फिल्म की बात करते हैं जो 1968 में ही रिलीज हुई, जिसका नाम था किस्मत। जी हाँ, किस्मत शब्द को सुनकर कभी कभी मुझे बड़ा अच्छा लगता है और इस शब्द में ही इसका रहस्य भी समाया हुआ है। KISMAT कहा जाता है किस्मत को, तो किस यानी KIS को अलग कर दीजिए, MAT को अलग कीजिए, यानी किस्मत पर आप चलेंगे तो किस्मत आपका बनेगा, ये इसमें बताया जाता है। तो अगर आप किसी अच्छे विचारधारा को लेकर सत्य की राह पर चलेंगे तो मुश्किलें जरूर आएंगी लेकिन किस्मत जरूर बन जाएगी, लेकिन अगर हम स्वार्थ के अधीन होकर लोभ लालच में कहीं हम भटक कर रास्ते में चलना शुरू कर देते हैं, कम समय में पैसा मिल जाता है लेकिन किस्मत तो बिगड़ ही जाती है ना। इसीलिए इस धोखे में मत रहिएगा, सत्य की राह पे चलिए और जीवन को सुंदर बनाइए, किस्मत को चमकाइए। इस किस्मत फिल्म में हीरो को एक संगीतकार के रूप में बताया है और वो एक दौड़ पर है जब कुछ गुंडे उनके गिटार में छिपाए हुए माइक्रो डॉट को पुनः प्राप्त करने उसका पीछा करते हैं। वह एक जवान औरत से मिलता है जो अपने घर से भाग आई होती है। थोड़ा सस्पेंस फिल्म है और मनु देसाई के निर्देशन में ये फिल्म 1968 में रिलीज हुई थी। ओपी नैयर साहब ने संगीत से सवारा है और कमल मेहरा ने इसे निर्माण किया है। कलाकार के रूप में बबीता विश्वजीत, एलन मुराद, उल्लास ने काम किया है। तो इस फिल्म का एक बहुत ही अच्छा गीत है गजरा मोहब्बत वाला। SH बिहारी साहब ने इस गीत को लिखा है, आशा भोसले शमशाद बेगम ने इस गीत को गाया है, ओपी नैयर का संगीत। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जी हाँ, बहुत ही मस्ती भरा गीत आपने सुना। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा है। तो 1968 के बाद चलते हैं 1969 की ओर। 1969 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था इंतकाम। एक गरीब लड़की की कहानी है जिसका नाम रीटा है। रीटा को झूठे सोहनलाल द्वारा फंसाया जाता है। जेल से उसकी रिहाई के बाद जब वो बदला लेना चाहती है, वह हीरालाल सोनालाल के पूर्व व्यापार भागीदार से मिलती है और इस तरह से कहानी में बदले की भावना को अंजाम देने में इंतकाम चलता है। तो आइए, इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना है जो मैं आपको सुनाऊंगा। और इस फिल्म के निर्देशक आर के नैयर हैं। दीवान नैयर साहब ने इस निर्माण किया है और कलाकार के रूप में हेलन साधना, संजय खान, जीवन और अशोक कुमार है। तो इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना है, कैसे रहूं चुप के मैंने, ती ही क्या है। तो राजेंद्र के

साहब का लिखा ये खूबसूरत गाना लता मंगेशकर की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, और इसी के साथ हम चाहेंगे आपसे इजाजत। इसी के साथ मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, क्योंकि अब वक्त हो गया आपसे इजाजत चाहूंगा। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात, तब तक आप बने रहिए रेडियो पुनेरी आवाज के साथ। सलाम नमस्ते, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, आनंद ही रहा, आनंद लुटा।

0: मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: चल चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल कटारा की।
2: मेरा तो शादी का कोई इरादा नहीं, मैं तो सोच रहा था कि मार्च में एमएससी का एग्जाम देकर किसी नौकरी पे लग जाऊंगा, कहीं एस्टैब्लिश हो जाऊंगा, कमाने लगूंगा, फिर शादी के बारे में सोचूंगा। लेकिन ये सब,
3: इसका मतलब है कि फिलहाल तुम उससे शादी नहीं कर सकते, और ना ये चाहते हो कि सावित्री की शादी सागर या किसी दूसरे के साथ हो।
2: मैं तो यही चाहता हूं सर, लेकिन उधर मां का दबाव, सागर के एहसान, मुझे तो डर लगता है सर। सर, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, आप मेरे गॉडफादर हैं, आप मेरे फादर बनकर उनसे बात कीजिए ना, आप हम दोनों को बचा सकते हैं।
3: डोंट वरी माय सन, सावित्री की शादी तुम्हारे साथ ही होगी, मैं उनसे जाकर रिश्ते की बात करूंगा।
2: थैंक यू सर।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे।

0: ये डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे लेकिन हिले बिना. इट्स ओनली अ लाइफस्टाइल चेंज. दीज आर लाइफस्टाइल चेंजेस. एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमैटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती हैं खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरस्व, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुलेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर है। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

చేరి సతారా సృజన జననం చేరి సతారా.

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पर डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उन

यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ बिजल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ बिजल है यूँ हमसे

0: पता है पुराना स्तंभ जी, मेरा नाम मनु क्यों है?
1: क्यों बताओ तो जरा।
0: क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम भी मनु था, इसलिए मेरा नाम भी मनु है।
1: अच्छा।
0: हाँ, और मुझे ना सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी वो कविता भी याद है।
1: कौन सी?
0: सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने ब्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदे ले हर बोलों के मुंह
2: हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
1: वाह, कमाल की कविता है ये तो। क्या तुम पुराना साहित्य पढ़ती हो मनु?
0: नहीं, बहुत तो नहीं, बस जितना स्कूल में पढ़ा था।
1: वैसे कहते हैं किताबें हमारी सबसे अच्छी साथी होती हैं।
0: हाँ वो तो है, लेकिन मुझे ना केवल नॉवेल्स पढ़ना पसंद है। हाउ एक्साइटिंग दे आर ना।
1: मनु हमारा चेतन मन जो पढ़ता है, देखता है, सुनता है, वो वहीं तक सीमित नहीं रहता, वो हमारे अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव छोड़ता है।
0: अच्छा।
1: धीरे धीरे हमें उसी तरह के विचार भी आने लगते हैं, और फिर हमारे कर्मों पर भी उसका असर पड़ता है।
0: लेकिन तो क्या पढ़ना, सुनना, देखना सब बंद कर दूं? ये तो पॉसिबल नहीं है पुराना स्तंभ जी।
1: बंद मत करो, लेकिन चुनो क्या अच्छा है तुम्हारे मन के लिए। तुम्हें पता है, अभद्र चित्र, वीडियोस, किताबें हमारे मानस पटल पर दुष्प्रभाव छोड़ते हैं, और धीरे धीरे हम इनके भी आदि हो जाते हैं।
0: ठीक है, मैं ना ध्यान रखूंगी। आखिर कर तो आप मेरे ही फायदे की बात रहे हैं।
1: तो चलो अब मैं सावित्रीबाई फूले की आगे की कहानी सुनाता हूँ। जब सावित्री फूले स्कूल जाती थी,
0: हाँ?
1: तो लोग पत्थर मारते थे, उन पर गंदगी फेंक देते थे।
0: अरे,
1: आज से 60 साल पहले बालिकाओं के लिए जब स्कूल खोलना पाप का काम माना जाता था, न जाने कितनी सामाजिक मुश्किलों से खोला गया होगा देश में एक अकेला बालिका विद्यालय। सावित्री बाई फूले पूरे देश की महानायिका है।
0: बिल्कुल।
1: हर बिरादरी और धर्म के लिए उन्होंने काम किया है।
0: अच्छा।
1: जब सावित्री बाई कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती थी,
0: हाँ?
1: तो रास्ते में लोग उन पर गंदगी, कीचड़, गोबर, विष्ठा तक फेंक देते थे। सावित्री बाई एक साड़ी अपने साथ थैले में लेकर चलती थी।
0: ओह।
1: और स्कूल पहुंचकर गंदी

0: कर दी गई साड़ी बदल लेती थी।
1: क्या बात है।
0: अपने पथ पर चलते रहने की प्रेरणा बहुत अच्छे से देती थी। ऐसा देखा गया था कि जो महिलाएं या बच्चियां विधवा हो जाती थी उन्हें अपने सर के सारे बाल कटवाने पड़ते थे।
1: ओह माय गॉड।
0: और बेहद साधारण जीवन व्यतीत करना पड़ता था। उस समय सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले ने मिलकर नाइयों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया।
1: अच्छा।
0: और महिलाओं को बाल कटने से बचवाया।
1: अरे वाह।
0: इस समय सामाजिक सुरक्षा न होने के कारण महिलाओं पर बहुत अत्याचार किए जाते थे। कई बार गर्भवती महिलाओं को बेटी पैदा होने पर बहुत प्रताड़ित किया जाता था।
1: बेटी पैदा होने पर प्रताड़ित
0: या गर्भपात भी करा दिया जाता था। ऐसी महिलाओं के लिए भी सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले ने आवाज बुलंद की थी।
1: अच्छा।
0: सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई और सावित्री बाई फूले इस समाज की अति समर्पित कार्यकर्ता थी। ये संस्था दहेज मुक्त बिना पंडितों के विवाह का आयोजन करवाती थी।
1: अरे वाह।
0: सभी पुजारियों ने इस तरह के विवाहों का विरोध किया और वे इस बात को लेकर कोर्ट तक भी जा पहुँचे।

0: सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले की गोद ली हुई संतान यशवंत फूले बड़े होकर डॉक्टर बने।
1: अच्छा।
0: उन्होंने पुणे में ही अस्पताल खोला जहाँ मरीजों की सेवा सावित्री बाई भी किया करती थी।
1: अरे वाह।
0: जब उन्हें ज्ञात हुआ कि प्लेग की बीमारी आसपास सभी जगहों पर फैल गई है, तो उन्होंने अपने पुत्र यशवंत की मदद से पीड़ितों की संभाल करना शुरू कर दिया। हालांकि सावित्री बाई को ये पता था कि ये संक्रामक बीमारी है, फिर भी वो पीछे नहीं हटी, बल्कि प्लेग से पीड़ित लोगों को खुद अस्पताल पहुंचाया करती थी।
1: अच्छा।
0: एक बार तो एक बालक को प्लेग से बचाने के उपचार में खुद सावित्री बाई फूले को भी बीमारी लग गई थी। वे कभी कोई रंग भेद या जाति भेद नहीं करती थी और न ही करने देती थी। उनकी सोच तो महान थी ही, उनके कृत्य भी उतने ही महान थे। मनु,
1: बिल्कुल सच में।
0: अस्पताल में सभी मरीजों को पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी। सावित्री बाई फूले ने अपना संपूर्ण जीवन मानव जाति की सेवा में लगाया। 10 मार्च 1897 को प्लेग के कारण सावित्री बाई फूले का निधन हो गया। उन्होंने सदैव ही अपने पति का साथ दिया।
1: हाँ।
0: समाज को अपने लक्ष्य के आगे नहीं आने दिया। वे सच में आज की महिलाओं के लिए मिसाल है।
1: बिल्कुल।
0: उनका पूरा जीवन समाज में वंचित तबके, खासकर महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए ही संघर्ष में बीता।

0: उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, जो वाणी से उच्चार करे वैसा ही बर्ताव करे, वे ही नर नारी पूजनीय, सेवा परमार्थ पालन करे व्रत यथार्थ, और होवे कृतार्थ वे सब वंदनीय। सुख हो दुख कुछ स्वार्थ नहीं, जो जतन से कर अन्यों का हित वे ही ऊंचे, मानवता का रिश्ता जो जानते हैं वे सब सावित्री कहे सच्चे सब।
1: क्या बात है, ये कविता तो कमाल की है।
0: ये है सत्य नारी की प्रतिमा, अडोल, सशक्त, स्वाभिमानी और कल्याणकारी।
1: सच में, लेकिन आजकल के कुछ वीडियोस, फोटोज, ये सब नारी की गरिमा के विरुद्ध हैं।
0: लेकिन इसे खत्म कौन करेगा मनु?
1: कौन कर सकता है पुराना स्तंभ जी, ये तो सोशल मीडिया है, सभी को पूरी आजादी है।
0: ये खत्म हम कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा वीडियो या फोटो आए जो अश्लीलता को बढ़ावा देता हो, बस हम उसे आगे फॉरवर्ड ना करें। हम सब ऐसा करेंगे तो क्या नहीं हो सकता।
1: बात तो आपकी बिल्कुल सही है, मैं पूरा प्रयास करूंगी पुराना स्तंभ जी। मैं भी नहीं चाहती ऐसे किसी भी वीडियोस को देखने के बाद किसी की दुर्भावनाओं को कुछ गलत करने की प्रेरणा मिले।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, ये हमारा ही कर्तव्य है। इसके लिए हम सभी को सजग होना पड़ेगा कि हम किसी भी ऐसी चीज को आगे दूसरों को न भेजें जो हमें खुद को अच्छी नहीं लगती है।
1: जी पुराना स्तंभ जी।

0: अपने आप को देखे एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

अहो ऐकलत का हो आमचा रेडिओ पुणेरी हो आमचा रेडिओ पुणेरी।

0: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। रिश्तों को एक नए अंदाज से देखते आ रहे हैं हम, और हमने ये जाना कि वही रिश्ते जो कई बार बोझ लगने लगते थे, लगता था कि अरे ये रिश्ता कैसे निभेगा, अगर खुद को पहचान के फिर इस रिश्ते को देखा तो लगा कि यही रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी एक रिश्ता बाकी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और वो है रिश्ता मेरा खुद अपने आप से और परमात्मा से, जिसे मैं आज तक तलाश रहा था और आज खुद उसने अपनी पहचान दी है। इसी पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं रमा कुमारी। सिस्टर शिवानी, ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, हमने हर रिश्ते को नए अंदाज में देख लिया, उसे अच्छी तरह से जाना और फिर देखा कि हाँ ऐसे भी किया जा सकता है, और हर बार की तरह एक्सपीरियंस के बाद ही हम ये बात कहने लायक बनते हैं। अभी भी एक रिश्ता बाकी है और वो मेरा खुद से। अपनी पहचान तो मैंने कर ली, परमात्मा से पहचान भी हो गई, लेकिन वो रिश्ता मैंने अपने आप से कायम किया या परमात्मा से कायम किया, वो रिश्ता कैसा होना चाहिए?
1: किसी भी रिश्ते को बनाने में इनिशियल स्टेजेस में चाहिए होता है समय। हम कहते हैं रिश्ते की फाउंडेशन है ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, लेकिन ये भी जो डेवलप होती है, इट टेक्स अ लिटिल टाइम बिकॉज आई वर्क ऑन द रिलेशनशिप। जितना मैं आपसे मिलते जाऊं, आपके संपर्क में आऊं, एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो वो ट्रस्ट डेवलप होता है या वो रिस्पेक्ट जिस लेवल पर चाहिए वो डेवलप होती है। लेकिन आज के वर्तमान भाग दौड़ के समय पर हम औरों के लिए तो सबके लिए समय निकाल देते हैं, दोस्तों के लिए, परिवार, कोलीग्स, एवरीबडी, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हमारी टाइम और एनर्जी इतनी फिनिश हो जाती कि हम कहते हैं अपने लिए समय निकालना। सो इफ वी आस्क एनीबडी कि आप रोज सवेरे अपने लिए 15 मिनट निकालिए जिसमें आप सिर्फ अपने आप के साथ हैं और आप उस परमात्मा के साथ हैं, एंड दैट टू अर्ली मॉर्निंग जब आपके बाकी सारे रिश्ते सोए हुए हैं। क्योंकि जैसे ही आपके सारे रिश्ते बाकी जाग जाएंगे, यू विल अगेन गेट इनटू दैट एनर्जी एक्सचेंज, व्हिच इज ओके, व्हिच इज फाइन, लेकिन उससे पहले 15 मिनट फॉर दैट वेरी इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप क्या हम निकालने के लिए रेडी है। तो जनरली पीपल विल इमिजिएट जो फर्स्ट रिएक्शन होता है टाइम नियम।
0: अच्छा, और यहाँ एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगी कि हम यूजुअली ये समझते हैं कि मैं सबको वक्त दे रहा हूँ, अपने को वक्त नहीं दे रहा, तो मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ।
1: दैट्स वेरी ट्रू, क्योंकि हम समझते हैं अपने को वक्त देना।
0: आई एम सो सेल्फलेस, आई डोंट इवन बॉदर अबाउट माई सेल्फ, आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर अदर्स, बट आई थिंक समवेयर वी फॉरगेट।
1: एब्सोल्युटली, एक हम

0: साइकाइट्रिस्ट से मिले जो बहुत सीनियर लेवल के साइकाइट्रिस्ट हैं, जो लोगों के स्ट्रेस, डिप्रेशन इन सब चीजों को ट्रीट करते हैं। लेकिन कहीं उनके चेहरे को देखकर ऐसा लगा कि वो खुद बहुत तनाव में है, तो उनसे बात करते हुए हमने कहा कि व्हाई डोंट यू टेक आउट 15 मिनट्स फॉर योरसेल्फ एवरी डे। सो ही सेड 15 मिनट्स इन द मॉर्निंग, नो सिस्टर आई हैव नो टाइम, एंड ही वॉज वेरी proud of this ke I do not have 15 minutes,
1: I give all my time to others,
0: to everybody, kyunki mujhe dusron ko heal karna hai, and he said like 14 ghante mere apne profession mein jaate hain, my work is my top priority, to 14 ghante mere din mein uske liye hote hain, baki commuting travel time aur jo thode se 2-3 ghante bach jate hain wo mere parivar ke liye hote hain, to ab is sab mein apne liye samay nikalna इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो आप कुछ और बताइए, लेकिन मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकता बिकॉज माई टाइम इज फॉर एवरीबडी। तो हमने कहा प्रायोरिटी इन लाइफ क्या है, वर्क, फैमिली एंड देन सेल्फ, एंड दिस हैज बिकम प्रायोरिटी फॉर मेजोरिटी पीपल, यू नो सभी जो वर्किंग लोग हैं, काम, वर्क प्लेस, फिर परिवार और फिर हम खुद, और ये दोनों कैटेगरीज परिवार एंड वर्क प्लेस इतनी सारी टाइम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं कि थर्ड स्टेप तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते, हम बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। सो नाउ ईच वन नीड्स टू आस्क देमसेल्व्स कि वर्क, फैमिली, सेल्फ, इज दिस द राइट ऑर्डर, एंड एवरीवन फील्स दिस इज द राइट ऑर्डर बिकॉज दे से आई गेट पेड एट वर्क, यू नो तो मेरा कर्म मेरा सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, फिर मेरी फैमिली, यू नो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आई एम नॉट इम्पोर्टेंट। वी वुड फील विद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वी कम टू दिस कंक्लूजन कि इट शुड बी टोटली द अदर वे अराउंड, क्योंकि काम पे भी हम क्यों जाते हैं, अपने परिवार के लिए, उन्हीं के लिए वो खुशियां, वो सब कम्फर्ट जो भी हमें लाने हैं उसके लिए हम काम पे जाते हैं, तो काम से ऊपर एक्चुअली
1: परिवार,
0: परिवार है डेफिनेटली, नहीं तो मुझे जाने की भी जरूरत नहीं है। अब परिवार को भी मुझे जो देना है, खुशी, सुख, शांति, वो मैं तब दे पाऊंगी जब वो मेरे अंदर भरी होगी, तो फिर परिवार से भी ऊपर हो गया माय सेल्फ। Now when I put the equation the other way around, work, family, self, तो self के लिए समय नहीं निकाला, internal relationship बहुत disturbed है, conflict है, उस conflict की हालत में सुबह सुबह परिवार के साथ जो interaction होता है वो भी क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, time नहीं है, तुम पढ़ते नहीं हो, वो सारे conflict से निकल कर हम office पहुंच जाते हैं और वो energy level हम office में carry करते हैं और वो हम सभी को transmit करते हैं, तो because of not taking out time for myself उसका असर परिवार पे भी पड़ा और work पे भी पड़ा, तो ये कहना कि ये मेरी top priority है is not fair, क्योंकि हम उसके साथ भी cheating कर रहे हैं, we are only giving negative energy, क्योंकि वो हमारी गलती भी नहीं है, वो हमारे पास है। Now if I change the order and I say self, family and then work, you know self most important, it's top on the
1: thing, because I think baki dono cheeze self pe dependent
0: hai, self pe dependent hai, lekin self jab healed hogi andar se bilkul bharpoor hogi us atma ke relationships kaise honge parivar mein very healthy, aur ek healthy family ko chhod kar jab aap kaam par jayenge to aapki mansik sthiti kaisi hogi, you will be totally empowered to give everything to work, so you will be doing justice to all three, rather right now we are cheating all three by saying I don't have time, to apne liye samay nikalna, we should remember that I am the most important person in the world, because unless I am healed I cannot do anything,
1: I cannot achieve anything, that's very true,
0: kuch bhi nahi.
1: I have met people, ek social organization mein main thi, they said ki hum new year resolutions ki baat kar rahe the, to almost everybody was saying ki main logon ke liye help karunga, main itne logon ko introduce karunga iske bare mein, लेकिन फाइनली आई थिंक क्योंकि हम खुद ही हील्ड नहीं है तो हम लोगों को क्या बता सकते हैं,
0: क्योंकि आज जो सबको चाहिए वो ये चाहिए, शक्ति चाहिए, शांति चाहिए, ये सबको चाहिए, और ये सबको देने के लिए मेरे अंदर खुद कुट कुट के भरी होनी चाहिए, और उसके लिए मुझे चाहिए अपने आप से बहुत अच्छा संबंध, और इन सबका जो सागर है, जो स्रोत है, निराकार परमात्मा जिसको हम प्यार से शिव बाबा भी कहते हैं, तो उसके साथ जब संबंध जुड़ जाता है तो जो उसके पास है वो ऑटोमेटिकली सब मेरा हो जाता है, सो आई गेट फिल्ड इन साइड एंड देन आई एम एबल टू गिव टू एवरीबडी। अब जब हम अपने साथ संबंध जोड़ना शुरू करते हैं तब अपने ऊपर ट्रस्ट डेवलप होना शुरू होता है,
1: खुद में विश्वास,
0: आज खुद में विश्वास नहीं है, आज हमारे खुद की रिस्पेक्ट हम नहीं करते हैं डेफिनेटली, और उसका प्रूफ यही है कि हमें औरों को रिस्पेक्ट करना

0: समय बिताना शुरू करते हैं तो मुझे क्लैरिटी आ जाती है कि ये इनर प्रोसेस कैसे वर्क करता है, ये सारा मेरे कंट्रोल में है। तो हर संकल्प की जिम्मेवारी
1: मैं खुद उठा सकता हूँ, और इनफैक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल वर्क हियर, कि मैं जानते हुए अगर कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं पॉजिटिव हूँ क्योंकि मैं अपनी पूरी अवेयरनेस के साथ वो कर्म करने जा रहा हूँ, सो आई थिंक वो उसका रिजल्ट अच्छा ही होना चाहिए।
0: तो तीन चीजें जो संबंधों में चाहिए, विश्वास, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सबसे अच्छी बहुत बढ़िया से जुड़ जाएगी, और जब वो अपने साथ हो जाएगी तो औरों के साथ करना बहुत ईजी हो जाएगा।
1: परमात्मा से रिश्ते की बात करते हैं, ये वो रिश्ता है जिसको हम सब बहुत ज्यादा तलाश रहे थे। अगेन खुद से बात करना, यानी मैं अपने आप को, क्योंकि मैं देख तो पा रहा हूँ कहीं ना कहीं बॉडी कॉन्शियसनेस में हम इतना है कि मैं अपनी बॉडी का एहसास तो है, परमात्मा वो पॉइंट ऑफ लाइट है, उसको हर बार मैं इमेजिन जरूर करूं जब मैं मेडिटेट कर रहा हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो ये बातचीत है उसका जवाब मैं, मुझे लगता है कि क्या मुझे मिलेगा, और वो जो तलाशना है या वो, जैसे कहा आपने कि वो कहीं वो विश्वास या वो रिश्ता, एक बार हमने पहले बात की थी कितनी देर लगेगी, तो आपने कहा था कि जहां पहचाना वहीं रिश्ता बन गया, लेकिन हाँ उसमें जो दृढ़ता है, सुदृढ़ता है, वो उसमें समय लग सकता है। उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी कि किस आस्पेक्ट को लेकर हम उस रिश्ते को और स्ट्रांग करें।
0: एक्चुअली जो समय लगता है वो आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध जुड़ने में नहीं लगता है, वो एक क्षण लगेगा। समय जो लगता है वो लगता है बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ जाने में, क्योंकि अभी हम जब बैठते हैं याद करने या संबंध जोड़ने की कोशिश करते हैं, हम अभी तक वो बॉडी कॉन्शियसनेस में है। तो शरीर के भान में जब होंगे तो शरीर से संबंधित सारी बातें याद आएंगी, मन उन्हीं की तरफ चलता रहेगा, तो हमें लगता है बट आई एम गिविंग टाइम, आई एम सिटिंग टू डू मेडिटेशन, तो क्यों नहीं मुझे अनुभव हो रहा। तो सेकेंड स्टेज पहले नहीं अचीव हो सकती है, पहले फर्स्ट स्टेज को करना पड़ेगा। तो इसलिए सोल कॉन्शियसनेस ये फर्स्ट स्टेप है, जब तक हम इसको नहीं ठीक से प्रैक्टिस करते हैं हमें थोड़ा सा समय लगेगा, अनुभव अभी भी होगा लेकिन हमें थोड़ा सा लगेगा कि आज तो लगा, यू नो मोस्टली पीपल फील आज तो बहुत अच्छी तरह से अनुभव हो रहा था, अब फिर अगले दिन फील करेंगे आज तो बिल्कुल अनुभव नहीं हुआ, बिकॉज दैट डिपेंड्स मोर ऑन माई कॉन्शियसनेस कि मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में हूँ या सोल कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियसनेस अर्थात अपने आप को उस स्वरूप में अनुभव करके मैं आत्मा हूँ, वो आत्मा स्वरूप में जब टिक गए, ताकि यहाँ की दुनिया की जो सारी बातें, जो सारे संकल्प थे वो फुल स्टॉप, ये नहीं कि बैठे हैं मैं आत्मा हूँ वो आज क्या बोला उन्होंने, ऐसे क्यों बोला, नहीं मैं आत्मा हूँ मैं शांत स्वरूप हूँ,
1: कि वहाँ ये हुआ वहाँ से वो हो गया, देन यू कम बैक, नहीं मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, फिर अगेन
0: सो यू आर गोइंग ऑन द सीसो, मैं आत्मा हूँ लेकिन ऑफिस में क्या हुआ, मैं आत्मा हूँ लेकिन मेरे बच्चों ने ऐसे क्यों कहा, सो यू आर नॉट रियली सोल कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियस मतलब फिर उसको आत्मा के अलावा और कोई संकल्प नहीं आएगा, आत्मा के स्वरूप के अनुभव के अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो मॉर्निंग में जब हम बैठते हैं इसका अनुभव करें, इसका प्रैक्टिस करें, लेकिन उसको सिर्फ मॉर्निंग तक नहीं रिस्ट्रिक्ट करें, उसको सारा दिन हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सारा दिन अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो उसी के इम्प्रेशंस बनते जाएंगे। सी दिस इज लाइक अ शूटिंग विच इज टेकिंग प्लेस द होल डे, कि सारा दिन हरेक को मिले, हरेक संकल्प क्रिएट किया, संकल्प किया कर्म में आया, कर्म का इम्पैक्ट रिकॉर्ड होता गया होता गया। अब जब हम साइलेंस में बैठते हैं तो सारी सीडी जो रिकॉर्ड हुई होती है वो प्ले करती है ना? अब अगर सीडी में सारे बॉडीली रिलेशंस, बॉडी कॉन्शियसनेस की बातें वो ही रिकॉर्ड की है, और फिर बैठ गए, सीडी प्ले हो गई, उसमें सारी वही बातें रिवाइंड हो रही है, और हम बीच में बोल रहे हैं नहीं लेकिन मैं आत्मा हूँ, यू नो देन दैट कॉन्फ्लिक्ट विल बी देयर एंड देन आई विल नॉट बी एबल टू एक्सपीरियंस दैट। तो इसलिए सारा दिन में एक कॉन्शियस अटेंशन रखना ये बहुत बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे फिर वो जब मॉर्निंग में हम बैठेंगे वो अनुभव बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि मैंने सोल कॉन्शियसनेस के थॉट सारा दिन में क्रिएट किए थे तो उसके इम्प्रेशंस वो सीडी में रिकॉर्ड हो जाएंगे। क्योंकि जनरली जब भी हम साइलेंस में बैठते हैं ना ये सीडी रिवाइंड हो जाती है अपने आप और प्ले होनी शुरू हो जाती है, ब्लैंक नहीं रहता है। तो इसलिए सारा दिन में इस सीडी पर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं दैट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो सारा दिन कर्म करते, इसलिए हम कहते हैं हर एक घंटे में

0: एक बार हर एक घंटे में एक मिनट जो करें, दैट्स फॉर दिस, कि बार बार रुके, अगेन रिमाइंड योर सेल्फ कि मैं एक शक्ति हूँ. दिस इज माई क्वालिटी, पीस, प्योरिटी, नॉट एंगर, नॉट अग्रेशन. सो वाई एम आई यूजिंग इट, यू नो, बिकॉज हर क्षण जब हम इनको यूज कर देते हैं, गुस्से को, संशय को, झूठ, हर क्षण, तो हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं. तो हमने कितनी लीकेज सारी कर दी. फिर कहें मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, नहीं. तो सिर्फ सोचने की बात नहीं, लेकिन कर्म की क्वालिटी क्या है सारा दिन. क्योंकि अगर मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ तो मेरा सारा दिन रोल कैसा होना चाहिए?
1: शांति का.
0: तब हम कहेंगे कि रियली आप सोल कॉन्शियसनेस में सारा दिन कर्म कर रहे थे. ये नहीं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ओम शांति, और फिर गुस्सा, फिर किसी के साथ कोई खिटपिट, नहीं. सोल कॉन्शियसनेस मतलब सोल की जो क्वालिटीज है उसको सारा दिन की एक्टिविटी में वो दिखाई देनी चाहिए. आई शुड एक्सपीरियंस दोज क्वालिटीज, देन आई एम इन दैट कॉन्शियसनेस. क्योंकि जो कॉन्शियसनेस होगी वही तो कर्म में आएगा. डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर की तरह बिहेव करूंगा, मदर हूँ मदर की तरह, आत्मा हूँ आत्मा की तरह. तो उसका कॉन्शियस अटेंशन रखेंगे तो मॉर्निंग में जब बैठेंगे, वेरी सिंपल, और फिर परमात्मा से वो संबंध, क्योंकि परमात्मा के साथ जो संबंध है दैट इज सो ब्यूटिफुल, बिकॉज दैट्स द ओनली रिलेशनशिप जहां हमें अनकंडीशनल लव मिलता है. वो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस एंड पूरा पूरा ट्रस्ट. ऐसा ट्रस्ट जो कभी टूटता नहीं है, जो दुनिया में बहुत जल्दी टूट जाता है, क्योंकि परमात्मा हर्ट नहीं होते, क्योंकि उन्हें हमारे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है. तो परमात्मा सिर्फ देते हैं, देते हैं, देते हैं. ही डजंट हैव एनीथिंग दैट ही नीड्स फ्रॉम अस. तो जब हमारा ऐसा कोई संबंध जुड़ता है जो हमें सिर्फ देता ही रहे, देते रहे, और यही हम ढूंढ रहे थे कि किसके साथ मैं ये संबंध जोड़ू, माँ बाप के साथ जोड़ू, पत्नी के साथ, पति बच्चों के साथ, कौन ऐसा जुड़े जो मेरे को देता रहे. कोई दे नहीं पाया तो फिर वो अंदर पेन आने लगा. जब वो मिल रहा है संबंध, फिर हम उसके लिए कह देते हैं टाइम नहीं है. दैट्स चीटिंग विद माई सेल्फ, यू नो. द सोर्स इज देयर रेडी टू गिव एंड आई एम सेइंग आई डोंट हैव टाइम.
1: एंड अगेन रिलेशनशिप विद माई ओन सेल्फ, इन रियलिटी हु एम आई, उसके साथ जो रिश्ता है. सिस्टर शिवानी, ये पूरा जो हमारा सफर रहा है रिश्तों को एक नई दृष्टि से देखने का, सचमुच बहुत सुंदर रहा है. और उसमें आज जो हमने एक बार फिर उस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की है, मेडिटेशन एक्चुअली एक बहुत अहम हिस्सा है, वही फाउंडेशन है. सो हम थोड़ा सा उसमें फिर जाने चाहें.
0: कुछ क्षणों के लिए हम वापस वही अभ्यास करेंगे कि मन संकल्प करेगा, इंटेलेक्ट बुद्धि उसका दृश्य निर्माण करेगी, विजुअलाइज करेगी, क्योंकि हम सीडी को रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो इट विल बी थॉट्स प्लस पिक्चर विजुअलाइजेशन, और जैसे ही वो विजुअलाइजेशन होगी तब वो अनुभव ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा. तीनों पर अटेंशन रख के देखें, एंड इफ सम अदर थॉट कम्स तो स्टॉप इट देन एंड देयर, यू नो, उसको बैठने न दे और उसकी तरफ ही न झुक जाए कि हाँ अब तो मेरा लिंक टूट गया. नहीं, स्टॉप, कम बैक आफ्टर 5 मिनट्स, क्योंकि हमारा मन हमारी बात मानता है. तो लेट्स गिव इट द इंस्ट्रक्शन देन. कुछ क्षणों के लिए अपने बाकी सभी संबंधों से किनारा करते हुए उस सबसे मीठे संबंध की तरफ ध्यान करें, अपने आप को देखें. सबको देखते हुए इतने व्यस्त हो चुके थे कि अपने आप को देखना ही भूल गए. चारों तरफ से बुद्धि को हटाते हुए सिर्फ अपने आप को देखने का अभ्यास करें कि मैं कौन हूं, इस शरीर को चलाने वाले हर संकल्प की रचना करने वाले, हर भावना को महसूस करने वाले, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं. अपने आप को देखें, भ्रिकुटी के बीच अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, एनर्जी

0: शरीर की मालिक है, ये मैं हूं। मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में शांत स्वरूप हूं। शांति मेरी अपनी नेचर है, शांति मेरा ही संस्कार है। शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकल चारों तरफ फैल रहे हैं। मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया से कुछ समय के लिए किनारा कर अपने घर की तरफ चलते हूँ। देखें अपने आप को, दैट पॉइंट ऑफ लाइट ट्रैवलिंग अपवर्ड्स, ऊपर जा रहा है। इस सृष्टि को पार करते हुए अपने घर की तरफ मैं जा रही हूँ। उस चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए अपने घर में आत्मा पहुंची हूँ, जहाँ चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। जस्ट पीस एवरीवेयर अराउंड मी। शांति धाम मुझ आत्मा का घर है। मैं आत्मा मीठे शिव बाबा, जो मुझ आत्मा का पिता है, मुझ आत्मा की तरह ही वो भी एक प्रकाश का पुंज है, ज्योति स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा उनके सम्मुख आकर बैठ जाती हूँ। शिव बाबा, जिनसे मैं हर संबंध जोड़ सकती हूँ, चाहे वो माता पिता का संबंध है, चाहे वो बच्चे या दोस्त का संबंध है, हर संबंध मैं शिव बाबा के साथ अनुभव कर सकती हूँ। शिव बाबा, जो मुझे देते ही जाते हैं, मुझे भरपूर करते जाते हैं, इतना प्यार देते जो मैं खुद से प्यार करने लग जाती हूँ, जो अपने आप को पहचानना शुरू कर देती हूँ। अपने मन में जो भी बात हो, जो परेशान कर रही हो, इस दोस्त से कर सकते हैं, कहकर हल्के हो जाएंगे। शिव बाबा, शांति का सागर है, जिस शांति को सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो शांति का सागर मेरा पिता है। शांति की शक्ति को अपने अंदर भरते जाइए, भरकर वो शक्ति मुझ आत्मा से निकल सारी सृष्टि पर फैल रही है, सब आत्माओं तक पहुंच रही है जो शांति को ढूंढ रही है। अब मैं आत्मा धीरे धीरे पुनः इस दुनिया की तरफ आ रही हूँ, इस कर्म क्षेत्र पर अपने कॉस्ट्यूम में धीरे धीरे पुनः अपने स्थान पर आकर बैठ जाती हूँ। लेकिन स्मृति के साथ कि मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ और मैं किसकी हूँ,
1: ओम शांति। सिस्टर शिवानी, ये जो अनुभव आज हमने किया और खुद से कैसा रिश्ता बने और परमात्मा या शिव बाबा से रिश्ता कैसे बनाए, ये पूरा ये कैसी जर्नी है, कैसा अनुभव है, सचमुच अनुभव ही किया जाना चाहिए। पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। रिश्ते हम बाकी आत्माओं के साथ जब भी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं एनर्जी का एक्सचेंज होता है, लेकिन जब हम खुद से बना रहे हैं तो एक नया एस्पेक्ट सामने आता है, और जब हम उस परमपिता परमात्मा से बनाते हैं, उस शिव बाबा से बनाते हैं, तो हम सब कुछ उससे ले रहे हैं। एक एक्सचेंज न होकर यहाँ ऐसा लगता है कि हमें मिल रहा है, तो क्यों ना इस रिश्ते को सबसे अधिक मजबूत करें। रिश्तों को नई पहचान देने का ये प्रयास

0: आपके पास भी कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9999 3 4 4 5 9 9 9 3 4 4 6 9 8 7 3 6 6 5 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में इस पूरी श्रृंखला में हमने रिश्तों को नई पहचान दी है और एक खूबसूरत मोड़ देकर आगे चलना सीखा है। आगे और भी बहुत सी बातें होंगी, फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, ओम शांति।
1: ब्रह्मा कुमारीज द्वारा राजयोग मेडिटेशन प्रत्येक सेवा केंद्र पर निःशुल्क सिखाया जाता है। यह कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। भारत के बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें 09999 3 4 4 5 5 09999 3 4 4 6 6 और 09873 6 6 5 5। आप ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है omshantistudio@gmail.com।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। जिंदगी है, मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन हमारे चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही है कि हमें रास्ता मिल गया है। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में हमने बहुत से मुद्दों को उठाने की कोशिश की है जो हमारे लिए कहीं अड़चन बन जाते थे, कहीं ऐसा लगता था कि इनसे पार नहीं पाया जा सकता। तो आज भी कुछ मुद्दों पर हम बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत। शिवानी जी, हमने पिछली बार अगर आपको याद होगा तो एक कॉल आई थी हमारे पास, जिसको हमने डिस्कस किया था कि एक मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ की प्रॉब्लम थी।
1: शिखा
0: जी, और इतना अच्छा उसका रिस्पांस आया, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों ने कहा कि हम फेस कर रहे हैं, लेकिन लगता था कि ये प्रॉब्लम है या नहीं और कैसे इसके बारे में बात की जाए। तो सोल्यूशन हमें अपने ही अंदर तलाशने हैं, ये बात समझ में आई, और नेगेटिविटी को किस तरह से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है ये भी लोगों को समझ में आ रहा है। तो आज जो मुद्दा हम उठाएं वो भी वो मुद्दा है जिसके लिए हमें बहुत से कॉल आए हैं, और वो है रिश्तों की बात। क्योंकि रिलेशनशिप्स जो है वो इतने इम्पॉर्टेंट हैं, हम में से हर कोई ये जानता है कि रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का या प्यार का रिश्ता नहीं, मेरा और आपका रिश्ता, भाई और बहन का रिश्ता, बॉस और सबॉर्डिनेट का रिश्ता, उसमें जो ट्रस्ट की कमी आ गई है, जो फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है, उसके लिए क्या करें?
1: आई थिंक औरों पे ट्रस्ट करना इसलिए मुश्किल हो गया है क्योंकि शायद हम पहले खुद पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। यू नो, तो मुझे जो चीज मैं खुद करूं तो मुझे लगता है दूसरे भी वही करते होंगे। खुद की इंटेग्रिटी, अगर हम खुद अंदर से भरपूर हैं, वी आर फिल्ड एंड यू नो वी आर कॉन्फिडेंट, तो फिर हमें कोई इनसिक्योरिटी नहीं होगी। ट्रस्ट करना तब मुश्किल हो जाता है जब इनसिक्योरिटी होती है, एंड उसमें भी जो एक बिलीफ सिस्टम फिर आ जाएगा कि वो है कि ये धोखा देंगे, ये गलत करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर से वो धारणा बन चुकी है कि मेजोरिटी तो सब लोग धोखा ही देते हैं, मेजोरिटी तो सब लोग गलत ही कर रहे हैं आजकल,
0: तो ऐसी
1: मतलब ये जो बिलीफ है ना, तो ये थॉट हमें अच्छी वाली लाने नहीं देगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि हम ब्लाइंडली यू नो वी जस्ट नॉट केयरफुल और हम ब्लाइंडली सबकी चीज सबके ऊपर सौंप दें, लेकिन एक व्यक्ति को हम इवेल्युएट जब एक बार कर लेते हैं, और एक्चुअली हमें स्टार्ट ऑपोजिट चीज से करना चाहिए। हम नॉर्मली करते हैं कि हम परखते रहेंगे, फिर जाकर बहुत समय बाद हम कहेंगे अब हम उनको ट्रस्ट करते हैं। वी कैन ट्राई टू डू इट द अदर वे अराउंड,
0: कम्प्लीट फेथ।
1: हम पहले कम्प्लीटली ट्रस्ट करते हैं,
0: लेकिन मुझे लगता है उससे हम अपनी इमोशन हटा दें, क्योंकि वो बहुत हर्ट करता है। यू नो, एक एक बात, बिकॉज आई बिलीव इन दैट।
1: ट्रू,
0: मैं अपना ही एग्जांपल ले लेती हूँ। हर बार हम इतना, क्योंकि ये डिस्कशन ऐसा है कि जिसमें पर्सनल मैं इन्वॉल्व ना करूं ऐसा नहीं हो सकता। इट्स लाइक आई हैव बीन लाइक दिस, यू नो, कि मैं कम्प्लीट फेथ पे ही जिंदगी जी।
1: राइट,
0: एक बार प्रोग्राम में कहीं बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा था, नहीं पर एक आंख खुली रखनी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि नहीं, वो भी कहीं गलत होगा, कम्प्लीट आंख बंद करके ही फेथ करो। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर हम उसको निगेट करते रहते तो हर्ट साथ में जुड़ता जाता है। पहला धोखा पहला हर्ट देगा, फिर आप दोबारा हिम्मत करके हर्ट विश्वास करते हैं, दूसरा धोखा मिलता है, तो कहीं इमोशन को हम हटा देंगे।
1: अगर हमने रियली बहुत अच्छी तरह से किसी को ट्रस्ट किया था, जेन्युइनली अंदर से पूरी तरह से, तो धोखा मिलने का चांस पहली बात बहुत कम है। क्योंकि व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस्ड इज कि अगर आप किसी को ट्रस्ट करते हैं, यू विल ऑलवेज गेट ट्रस्ट इन रिटर्न। दैट्स लाइक मैंडेटरी, उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। सिर्फ ये है कि हमें, जब हमें किसी से धोखा मिलता है तो हम अपनी वाली स्थिति हम नहीं चेक कर पाते, हम ये देख लेते हैं कि उन्होंने हमें धोखा दिया, लेकिन उनके धोखा देने का कारण क्या। अगर हमने रियली अच्छी तरह से पूरा कंप्लीट ट्रस्ट किया है किसी पे, द पर्सन जस्ट कैन नॉट डू विदाउट ट्रस्टिंग यू बैक। यू नो, इट इज लाइक इट्स टोटली विद यू, टोटली फॉर यू। वो बिल्कुल मतलब कैसे रुक सकता है आपको ट्रस्ट करे बिना। तो इट विल हैव टू स्टार्ट विथ ट्रस्टिंग द पर्सन, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि अभी मैं इनको पहले इवेल्युएट कर लूं, परख लूं, फिर अगर लगे कि ये ठीक है तो।
0: सवाल ये उठने लगता है कि डू वी रियली अंडरस्टैंड व्हाट रियल फेथ इज, सही तरह से विश्वास क्या, कैसे किया जा सकता है?
1: सबसे पहले ये सोच कि सामने वाला जो व्यक्ति है, चाहे वो कोई भी हो, एक दुकानदार हो, लाइक वी अगेन डिस्कस, थॉट इज ट्रांसमिटिंग, यू नो। तो इट्स एज सिंपल एज अगर मैं एक ऑटो रिक्शा में बैठ जाऊं और मेरे मन में ये विचार चल रहा हो, ये तो मुझे चीट करने वाला है, ये तो मुझे चीट करने वाला है,

0: मुझे ध्यान से चलना चाहिए, मुझे ऐसे चलना, आई एम क्रिएटिंग दैट वाइब्रेशन, एंड वो वाइब्रेशन दूसरे तक पहुंचेगा ही। एंड दूसरी तरफ अगर मैं ये थॉट क्रिएट करूं, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरे से गलत नहीं कर सकता, मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, आई एम ऑनेस्ट इन माई डीलिंग विद पीपल, तो ये मेरे साथ क्यों गलत करेगा। बट देन दिस हैज टू बी मेंटेन्ड विद एवरीबडी। आप ये नहीं कर सकते हो कि आप 10 लोगों के साथ गलत करो और फिर मैं आपके सामने आकर ये सोचूं कि मैंने आपके साथ गलत नहीं किया तो आप मेरे साथ गलत क्यों करेंगे। इफ आई एम क्लीन इन माई डीलिंग विद एवरीबडी, देन देर इज नो वे दैट एनीबडी शुड रिबाउंड एंड डू एनीथिंग रॉन्ग विद मी। लेकिन उसके लिए मुझे वो थॉट रखना पड़ेगा कि ये मेरे साथ गलत नहीं कर सकते, देर इज नो रीजन। एंड ट्रस्ट, सिंपल ऑटो रिक्शा, सिंपल शॉपकीपर, आप सब्जी लेने जा रहे हैं, जैसे बहुत सिंपल बातें होती है, जैसे मैं सब्जी लेने जाती हूँ, पहले होते थे कितने का है भैया, ये कितने का है, वजन आपने ठीक से किया नहीं किया, चेक करो, नहीं इसको फिर ऐसे करो, नो बॉन्डिंग, नथिंग। नाउ देयर इज अ फिक्स्ड पर्सन जिससे आई हैव टू टेक, एंड आई नेवर आस्क हिम व्हाट इज द रेट ऑफ एनीथिंग, बिकॉज एंड आई हैव रियलाइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि क्योंकि एंड स्पेशली अभी के समय पर, क्योंकि बहुत कम लोग उनको ट्रस्ट कर पाते हैं, बहुत कम लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, तो जब उन्हें कोई ऐसा किसी को भी मिलता है जो उनके ऊपर इतना ट्रस्ट कर लेता है, वो उस ट्रस्ट को नहीं तोड़ना चाहते, वो तोड़ेंगे ही नहीं, बिकॉज दैट ट्रस्ट इज वेरी वैल्यूएबल टू देम।
1: इट्स सो रेयर,
0: इट्स वेरी रेयर, सो इट्स वेरी वैल्यूएबल एंड इट इज सो प्रेशियस कि मैं 5 रुपए के लिए उस ट्रस्ट को नहीं तोड़ूंगी आपकी। तो देन यू नो समटाइम्स जो मेरे साथ हूँ वो कहेंगे आपने पूछा भी नहीं वो कितने का, मैंने कहा वो राइट ही देगा, वो राइट ही दे रहा है, और अगर उसने 5-10 रुपए ज्यादा ले भी लिए आज नहीं तो कल मुझे कहीं और से अगर पता चली गया, इट्स हिज लॉस। मेन चीज ये है कि दूसरे को ये रियलाइज करना पड़ेगा, इट्स हिज लॉस, उसने 10 रुपए कमा लिए, विश्वास खो दिया। बट फॉर मी जस्ट बिकॉज ये सोच के कि कोई एक धोखा देने वाला है, आई कीप डाउटिंग एवरीबडी आई मीट।
1: लेकिन जिस दिन आपको ये पता चलेगा कि आपके 10 रुपए का उसने धोखा दिया, विल यू कंटिन्यू बीइंग विद हिम? आई जस्ट वांट टू
0: आस्क, नो आई विल जस्ट हैव टू बी वन स्टेप मोर केयरफुल।
1: या एंड अनदर, विल यू गेट हर्ट?
0: नो, बिकॉज ही डिड नॉट टेल मी ट्रस्ट मी, सी व्हाई आई विल नॉट गेट हर्ट, ये मेरा डिसीजन था। उसने नहीं कहा मुझ पे विश्वास करो, मुझ पे विश्वास करो, उसने ये नहीं कहा कि आप बिना पूछे लो, ये मेरा डिसीजन था। उसने ये नहीं, उसने रेट बताने से मना नहीं किया, ये मेरा डिसीजन था। तो अगर ये मेरा डिसीजन है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन, आई प्लेड माई पार्ट, ही प्लेड हिज पार्ट, आई प्लेड माई पार्ट ऑफ नॉट आस्किंग, ही प्लेड हिज पार्ट ऑफ टेकिंग मोर मनी, फ्रॉम टुमोरो आई विल बी केयरफुल बट आई विल नॉट गेट हर्ट, नॉट विद हिम, because he is fine with what he did.
1: Acha, or,
0: but I will not stop trusting other people just because one person turned out to be a little different. Lekin jab majority time soch aise chalti hai ki nahi ye galat hi kar rahe hain, matlab aap dekhiye, aap morning se start kijiye, agar maid late aa jaye, kyun late aaya, wo genuine bhi koi reason hoga to nahi doubt, auto rickshaw wala doubt, shopkeeper se mile doubt, inhi logon par itna doubt karte hain, to jo apne colleagues, ये तो मेरे लिए अच्छा सोच ही नहीं सकता, इसको तो आगे बढ़ना है, ये तो मुझे नीचे खींचना चाहता है, ये तो मेरे पीठ पीछे गलत बोलता ही होगा, वी आर क्रिएटिंग सो मच ऑफ दैट थॉट। ये भी हो सकता है कि ऐसा हो रहा है कि आपके पीठ पीछे कोई बोल रहा है या कोई कुछ गलत कर रहा है, बट देन हाउ एम आई गोइंग टू चेंज इट? यू सी, इफ आई कीप चर्निंग अबाउट इट एंड वही एनर्जी मैं और ट्रांसमिट करूं, तो वो मिसट्रस्ट और स्ट्रांग होता जाएगा। आई विल हैव टू स्टिल कीप दैट थॉट कि नहीं ये ठीक है, ये अच्छे हैं। आई विल हैव टू रिकग्नाइज द गुडनेस इन एवरीबडी बिकॉज एवरीबडी इज सो ब्यूटिफुल।
1: एंड अनदर थिंग इज लाइक मे बी वी हैव टू कंटिन्यू गिविंग चांसेस, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू आस्क, शुड वी कंटिन्यू गिविंग चांसेस इवन इफ वी
0: एक्चुअली वी आर नोबडी टू गिव अ चांस टू एनीबडी, हु आर वी, हु हैज गिवन मी द अथॉरिटी टू गिव यू अ चांस? यू आर वॉट यू आर, ठीक है, आपको जैसे रहना है आप रहिए, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है आपको चांस देने का, आपको फॉरगिव करने का, आई एम नोबडी, ठीक है, आई ओनली हैव अ चॉइस कि मुझे आपके बारे में कैसा सोचना है, दैट्स ऑल, आई जस्ट हैव दैट मच चॉइस, आई डोंट हैव द पावर टू चेंज यू, आई डोंट हैव द पावर टू मेक यू लाइक आई वॉन्ट यू टू बी, आई जस्ट हैव द पावर टू चूज माई थॉट। नाउ मेरे पास चॉइस है कि आपके बारे में सोचूं कि आप बहुत अच्छे हैं, या आपके बारे में सोचूं कि नहीं आप तो धोखा दे सकते हैं, आपके बारे में सोचूं कि आप मेरे साथ कभी गलत नहीं करेंगे, या ये सोचूं कि आप मेरे साथ गलत ही करेंगे, आपके बारे में सोचूं कि आप सच बोल रही हैं इस टाइम, या सोचूं कि आप मेरे से झूठ बोल रहे हैं. That's all the choice I have. And just depending on these choices that I make in every thought, I am building or breaking a relationship.
1: Wonderful. लेकिन अगर हम ये जो हमने अभी जो मुद्दे उठाए, जो examples या जो बातें ली, जो quote किया, वो लोग थे जिनको हम replace कर सकते हैं.
0: Definitely.
1: लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते हैं
0: right.
1: जिनको हम जो हमारे permanent है, हमारे अपने हैं
0: right.
1: वहाँ जो trust break होना और उसके बाद दोबारा अपने आप को तैयार करना, इवन इफ मेरी उनके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं एहसान नहीं कर रही कि मैं आप पे दोबारा ट्रस्ट कर रही हूँ. मैं मान लेती हूँ इस बात को. वैसे ये अभी तक मैं ये नहीं मानती थी, मुझे लगता था कि नहीं, आई एम ट्रस्टिंग यू अगेन.
0: बट वी से दैट लाइक अ फेवर.
1: That's what I'm
0: saying. You know, it's like अगर आपके बच्चे ने या आपके कुलीग ने किसी ने कोई गलती कर दी है और हम कहते हैं यू मेड दिस मिस्टेक बट चलो आई एम गोइंग टू ट्रस्ट यू अगेन. डोंट इफ यू डोंट वॉन्ट टू. आप किस पे फेवर कर रहे हैं? यू आर ट्रस्टिंग बिकॉज यू वॉन्ट टू ट्रस्ट. डोंट वॉन्ट टू ट्रस्ट, डोंट ट्रस्ट. एंड अगर आप बार बार इस तरह से रबिंग कर रहे हैं देन यू आर रियली नॉट ट्रस्टिंग. ये आप सिर्फ ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं जी हम आप पर बहुत विश्वास करते हैं, हम आप पर बहुत विश्वास. ये कोई बोलने की चीज है ही नहीं. ये तो आपकी हर थॉट और हर एक्शन में दिखाई देगा कि आप किस पर कितना ट्रस्ट कर रहे हैं. और अगर हमें बार बार उस व्यक्ति को अपनी उसकी गलती याद दिलानी पड़े वो आपने ऐसा किया था उस दिन, अब फिर से अपना विश्वास तोड़ना मत, मतलब वो टूटा हुआ है ऑलरेडी. कुछ भी नहीं है, हम अभी भी उसको चेंज करने की कोशिश में लगे हुए हैं. हम सबसे पहले अपने पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रस्ट मतलब क्या कि आपने एक बात कही लेकिन करी दूसरी. एंड आई विल से यू ब्रोक माई ट्रस्ट. यू नो यू से समथिंग टू मी बट एक्चुअली इट्स नॉट द ट्रूथ. तो आई से यू हैव ब्रोकन माई ट्रस्ट. वट अबाउट माई ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ. मैं अपने आप से सारा दिन में कितना कुछ कहती हूँ और करती कुछ और. आज सुबह डिसाइड किया गुस्सा नहीं करना, शाम तक आकर गुस्सा कर दिया. किसको धोखा दिया?
1: खुद को दे.
0: खुद को कहा कि टेंशन लेना अच्छी बात नहीं है लेकिन सारा दिन टेंस्ड रहे. किसको धोखा दिया? अपने आप को. हम अपने आप को सारा दिन इतना धोखा दे रहे हैं, अपना नुकसान सारा दिन इतना कर रहे हैं, तो हम दूसरे के साथ लॉयल होना फिर थोड़ा सा इसलिए क्रिटिकल हो जाता है. जब हम अपने आप से सच नहीं बोल पाते हैं तो औरों से सच बोलना ऑब्वियसली वो बहुत एक ऊंची मंजिल हो जाएगी. लेकिन जितना हम अपने आप के साथ यू नो वी कम बैक टू आवर सेल्व्स एंड वी आर फिल्ड एंड देयर इज नो इनसिक्योरिटी, वी आर लाइक स्टेबल, तो फिर औरों पे ट्रस्ट करना इज नो एफर्ट. एक्चुअली मिसट्रस्ट करने में फिर आपको एफर्ट लगेगा. बिल्कुल एफर्ट लगेगा बिकॉज इट्स समथिंग लाइक विच वी हैव फेल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जैसे जैसे आप अपने ऊपर मेहनत करते हैं, आई हैव फेल्ट कि अब किसी के ऊपर मिसट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया. इन द प्रोसेस वंस इन अ व्हाइल इट डज हैपन कि आपने जो ट्रस्ट किया दूसरे ने बिल्कुल उसका यू नो ही जस्ट डिडंट लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशन, बट दैट्स फाइन. दैट विल बी वन इन अ हंड्रेड. उस वन इन अ हंड्रेड के लिए जो सौ में आपने विश्वास किया एक ने धोखा दे दिया. लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं, एक दो लोगों ने अगर धोखा दे दिया तो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है जी आजकल दुनिया ऐसी है,
1: दुनिया धोखा देती है. इनफैक्ट सरबजीत गांगुली नोएडा से हैं और एक एमएनसी में काम करते हैं और इनका जो मेल हमें आया था और वो ये कह रहे हैं कि मेरे टारगेट्स, क्योंकि आजकल जब मार्केटिंग में होते हैं तो टारगेट्स होते हैं, फिर उसके बाद उसके हिसाब से आपको काफी कुछ यू नो चीजें मिलती हैं, कुछ इस तरह से ये बातें होती हैं. तो ही सेज कि मैंने सारी मेहनत की बॉस पे अपनी पूरी तरह से ट्रस्ट करके और बॉस पे मेरा ट्रस्ट, मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन जब बात आई कि टारगेट अचीव हो गए हैं तो मेरे टारगेट चेंज कर दिए गए.
0: ओके.
1: और मेरा जो मेरी मेहनत का पूरा फल मेरे बॉस को मिला और मुझे कुछ भी कंपनसेशन या वट एवर
0: मॉनेटरी
1: जो भी चीजें थी वो नहीं मिला गया. अब इतने डिस्ट्रस्ट में, इतने डिप्रेशन में मुझे कोई विश्वास नहीं रह गया. मुझे जिंदगी से ही विश्वास उठता जा रहा है क्योंकि जब मैंने उस बॉस को, उसके लिए कितना काम किया, उस पर इतना विश्वास किया, तो अब मैं कहाँ जाऊँ? क्या मैं नौकरी छोड़ दूँ?
0: ट्रू. ये हो सकता है ना, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग जो होता होगा. तो शायद हमें अपने आप से पहली बात पूछना पड़ेगा कि क्या हमने ट्रस्ट किसी मॉनेटरी बेनिफिट के लिए किया था. यू नो हम वैल्यूज को मॉनेटरी या इस तरह की चीजों के साथ इवैल्यूएट या यू नो कंपेयर नहीं कर सकते.
1: लेकिन देखिए एक बात है, ट्रस्ट तो उन्होंने किया कि भाई मैं जो कर रहा हूँ, जो मैं अपना टारगेट पूरा कर रहा हूँ,

0: उसका, क्योंकि बॉस को पता है
1: तो वो ठीक है, वो ठीक बात है। आज उन्होंने वो ट्रस्ट को बिट्रे कर दिया आपके, लेकिन आपने अपनी पूरी सिंसियरिटी से अपने काम को कर दिया था। अब ये सिचुएशन हो गई है कि दूसरे ने आपका सारा क्रेडिट ले लिया, नाउ व्हाट कैन यू डू? टू ऑप्शन, डिसिल्यूजन्ड, पूरी तरह से यू नो गिव अप, सोच ले कि आगे से इस तरह से लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अपना फायदा सोचना चाहिए, दूसरों पर विश्वास करके देखा क्या हुआ, गुड, इफ दैट्स माय थॉट दैट्स माय डेस्टिनी। आगे जीवन में जितने भी लोगों के मैं संपर्क में आऊं, चाहे वो ऑफिस में, वो मेरा एक दृष्टिकोण जो उनके प्रति बन जाएगा कि विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी एक ने धोखा दिया था, तो वो मेरा जो आगे संबंध बनते जाएंगे वो बहुत अच्छे फाउंडेशन पे नहीं खड़े होंगे। तो बहुत आवश्यकता है कि अभी तुरंत अपने थॉट को चेंज करना पड़ेगा। आई पुट इन माई बेस्ट एफर्ट, मेरे बॉस ने उसको नहीं अप्रिशिएट किया या उसका क्रेडिट ही खुद ले लिया, नाउ व्हाट कैन आई डू? अगर तो मेरे लिए वो सिचुएशन बिल्कुल अपने मेरे कंट्रोल के बाहर की चीज है, देन आई चेंज माई जॉब। अगेन इट्स अ चॉइस, आई कैन चेंज माई जॉब। सेकेंड थिंग इज,
2: वो भी एक्चुअली हमने टेंशन की बात की थी, वो भी सिचुएशन से भागने वाली,
1: हाँ, तो एक्चुअली दैट्स नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। लेकिन वहां रहकर डिसिल्यूजन रहने से, वहां रहकर एक नेगेटिव वाइब्रेशन बिल्डअप करने से और सारा दिन ये सोचने से कि मैं छोड़ दूं, तो फिर छोड़ दीजिए, यू नो, बट दैट्स नॉट द ऑप्शन। क्योंकि अगर आप जब अपने नेक्स्ट ऑफिस में जाएंगे,
2: नेगेटिविटी लेके जाएंगे और मिस्ट्रस्ट
1: हो सकता है वहां भी और आपको इस तरह से लोग मिले, तो द ऑप्शन विल बी टॉक टू योरसेल्फ, आई पुट इन माय बेस्ट एफर्ट, आई हैव डन थिंग्स सिंसियरली और एंड आई हैव द सैटिस्फैक्शन कि वो टारगेट अचीव हो चुका है। तो सबसे पहली चीज, कोई भी एक्शन लेने से पहले अपने आप को पहले स्टेबलाइज कर दीजिए, अपनी काउंसलिंग करके पहले स्टेबलाइज कर दीजिए। जब तक वो इनर स्टेबिलिटी नहीं होगी, डोंट टेक द नेक्स्ट स्टेप, चाहे वो बॉस से जाके बात करने की बात है, चाहे वो जॉब चेंज करने, कोई भी इस तरह का डिसीजन डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड में कभी नहीं लेना। पहली बात, अपने आप को अप्रिशिएट करिए, अपनी सिंसियरिटी को अप्रिशिएट कीजिए और दूसरे की इनसिंसियरिटी की वजह से अपनी सिंसियरिटी को मत गवा दीजिए। कि दूसरा सामने
2: वाला क्या फायदा,
1: फायदा क्या हुआ? सी, दिस इज अ वेरी डीप थिंग एंड इट कम्स सो इजिली टू पीपल कि मैंने किया, फायदा क्या हुआ, इससे अच्छा मैं आगे से करूंगा ही नहीं। इसका मतलब कि आपके पास एक इतनी वैल्यूबल चीज थी, इतनी वैल्यू थी उस चीज की, लेकिन जस्ट बिकॉज सामने वाले ने उसकी वैल्यू को नहीं समझा, आप अपनी वैल्यूबल चीज को गवा देंगे। लेकिन जिसने वैल्यू नहीं समझी, वो प्रॉब्लम तो उसकी थी। इफ यू आर वेयरिंग डायमंड्स राइट नाउ एंड आई डोंट रिकॉग्नाइज बिकॉज आई डोंट हैव द नॉलेज, तो मुझे वो डायमंड और वो पत्थर में शायद बहुत ज्यादा फर्क नहीं पता चल रहा। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि अनुप्रिया, क्या पत्थर पहन के बैठे हुए हो? पत्थर है ये, कोई काम के नहीं आजकल। एंड मैं दो बार चार बार आपको कहूं और चार लोग मेरे साथ ज्वाइन कर लें कि कनुप्रिया पत्थर पहने हुए हैं, फेंको इसको, ये नुकसान कर रहे हैं। इफ यू रिमेम्बर एंड इफ यू आर अवेयर दैट दे आर डायमंड्स, विल यू थ्रो देम? इवन इफ द होल वर्ल्ड इज टेलिंग यू, फॉरगेट वन और टू पीपल। तो ये अपनी विशेषता की वैल्यू पता होनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज एक जो डिसिल्यूजमेंट ये जो हो रही है, ऑनेस्टी आजकल काम नहीं करती है, सिंसियर होने का फायदा नहीं है, लोग अप्रिशिएट नहीं करते। क्या हमारी विशेषता इसलिए ताकि लोग अप्रिशिएट करें?
2: क्योंकि तुम्हारी ताकत है बेसिकली। ओह यस, दैट्स अ गुड,
1: इट्स माय स्ट्रेंथ। आई, इफ नोबडी अप्रिशिएट्स, फॉरगेट वन और टू पीपल, आई से लेट द होल वर्ल्ड नॉट अप्रिशिएट, यू नो, लेट्स लुक एट द वर्स्ट केस सिचुएशन, पूरी दुनिया नहीं अप्रिशिएट कर रही, फिर भी वो आपकी विशेषता है। आप जिस दिन उसको अप्रिशिएट करना बंद कर देते हैं ना, तब सारे अप्रिशिएट करना बंद करते हैं। बट अगर आपको ही नहीं पता चला कि आपके पास डायमंड्स है, देन यू माइट थ्रो इट अवे, देन द लॉस इज योर्स। तो दूसरे की कोई एक गलत बात के लिए अपनी अच्छाई को खत्म कर देना, ये अपने आप से सबसे बड़ा धोखा है। वो क्या हमारे से धोखा करेंगे?
2: हम अपने आप को,
1: हमने ही अपने आप को इतना बड़ा धोखा दे दिया। उन्होंने तो जो किया वो तो छोटी बात है।
2: एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट है कि दुनिया ये बोलती आपको जाती है कि इतने ट्रस्टवर्दी नहीं बनो, तुम इतनी ट्रस्टवर्दी क्यों हो? आई हैव गॉन थ्रू, ऐसे विश्वास नहीं करते हैं। दुनिया पे विश्वास, दुनिया को समझना सीखो, दुनिया ऐसी है,
1: बिल्कुल,
2: सो इट लाइक यू स्टार्ट फीलिंग दैट यू आर रॉन्ग,
1: यू विल, दैट्स व्हाई वो जो

0: अपना कॉन्फिडेंस है वो मेंटेन रखना पड़ेगा. एंड आस्क योर सेल्फ अगेन, मुझे डाउट करके ज्यादा अच्छा लग रहा है या विश्वास कर. इट्स ऑल अबाउट दैट बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट हाउ यू आर फीलिंग.
1: You know,
0: again, you know, the journey is I meet you, then I meet another person, 10 minutes ke baad I meet another person, aur meri har dealing, har transaction, har exchange of energy tab enjoyable hai if it is based on trust, if it is based on respect. And aaj kal hum zyada tar disturbed kyun rehte hain, kyunki hum har ek jisse mil rahe hain usko doubt karte hain. And har ek pe doubt karte karte karte by the end of the day when I reach home, how can I be happy?
1: Yes, definitely.
0: I have just, transmitted so much of negative energy to people. In return, मुझे इतनी सारी negative energy मिल गई है. घर पहुंच गए रात को 8 बजे और कहे जी बहुत भारी लग रहा, खुशी नहीं है. पता नहीं वैसे कुछ हुआ भी नहीं लेकिन मूड थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा. कैसे अच्छा होगा, सारा दिन हर स्टेप पे क्या किया. एंड ये अपने आप से पूछना है कौन सी चीज मेरे लिए ठीक है. डोंट सी वॉट पीपल आर से, don't see what the majority is saying. Just most important is what makes me feel good. It's all that feel good factor. Feel good factor is very important.
1: Definitely. And Shivani, actually when we talk about relationships, again we talked about we took a question jo ki ek employee aur
0: in ke case pe jo inhone likha, it would be nice ki wo apne aap ko jab stabilize kar le to ek bar jaakar baat bhi karke aaye.
1: Ye strength होता ये है कि जहां धोखा मिला आप अंदर क्योंकि इतने व्हाट आई यूज्ड टू डू इतने हर्ट हो जाते हैं देन आई नेवर यूज्ड टू
0: लेकिन वो हर्ट वाले स्टेज में वैसे भी जाना नहीं चाहिए इंटरेक्ट करने के लिए बिकॉज वो एक नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज है. आई अंडरस्टैंड आई विल हैव टू पुट माई सेल्फ इन योर पोजिशन फर्स्ट एज द एम्प्लॉय एंड ये सोचूं कि पहली बात इवन गिव माई सेल्फ द अदर ऑप्शन कि हो सकता है मैंने ठीक से नहीं समझा, हो सकता है कि ये चीटिंग नहीं थी, हो सकता है इसके पीछे कोई और बात है जो मेरे सीनियर्स को पता है जो मुझे पता भी नहीं है, या हो सकता है किसी कारणवश उन्होंने ये किया है. कुछ भी है, वाई नॉट गो एंड हैव अ डायलॉग. एंड जब अपनी इंटेंशन, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है इंटेंशन, आपसे बात करने से पहले मेरा भाव क्या है. अगर मेरा भाव ये है कि आपको जाकर मुझे बताना है कि आपने गलत किया,
1: चाहे प्यार से ही बताना लेकिन
0: बताना इट वॉन्ट वर्क. दैट भाव, जो भावना पीछे है, दैट्स गोइंग टू डू ऑल द वर्क. तो इंटेंशन बिहाइंड एवरीथिंग वी डू. तो अब जब आप बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपके मन में उनके प्रति एक बहुत रिस्पेक्ट, एक डिसरिगार्ड नहीं, अभी डिसरिगार्ड है. उन्होंने धोखा दिया, आई कैन नॉट रिस्पेक्ट. आई विल हैव टू से हो सकता है कोई बात है. टिल आई फाइंड आउट, लेट मी नॉट कम टू अ कंक्लूजन. लेट मी गिव द अदर पर्सन अ चांस टू पुट अक्रॉस
1: बेनिफिट ऑफ डाउट
0: हिज पॉइंट. एंड फिर भी अगर बात करने के बाद भी लगे कि उनकी इंटेंशन कुछ राइट नहीं थी, टॉक इट आउट एंड बिल्ड द रिलेशनशिप. Tomorrow it will not happen again. And जो सामने वाला व्यक्ति है वो बहुत appreciate करेगा आपके इस
1: पूरे gesture
0: effort को. You know, कि आप आए, आपने बात की और आपके बात में या आपसे उसको कोई negativity जब नहीं मिलती है, he will just be for you totally.
1: वो भी कहीं ना कहीं guilty.
0: हाँ, guilty तो हमेशा होगा और इसीलिए जो guilty है वो बहुत ज्यादा आपके सामने aggressive हो जाएगा, क्योंकि जहां अंदर कुछ खालीपन है तो उसको भरने का सबसे important सबसे सहज तरीका होता है बाहर से बहुत I'm right. I will always keep on projecting it like that because actually internally there is something which is a little missing. तो ऐसे time पर उसको चाहिए कि कोई आकर उसे एक्सेप्ट कर ले. तो जब अगर ये जाकर उनको उस तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे पहले इंटरनली और फिर जाकर उनको उस तरह से बात करेंगे, मिरेकल कैन हैपन.
1: यस,
0: इट विल हैपन.
1: अगेन लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट मिरेकल्स, वी टॉक अबाउट क्रिएटिंग डेस्टिनी, वी आर एबल टू डू इट विद आवर पॉजिटिव थॉट्स.
0: एंड अभी आप देखिए, ये एक बिलीफ इनकी डेस्टिनी चेंज कर सकता है. दैट्स व्हाट एवरी टाइम दैट साइकिल इज एप्लीकेबल. लेकिन हम कह देंगे जी मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे साथ धोखा हो गया. मैंने तो कितनी मेहनत की थी लेकिन लोग ही आजकल ऐसे हैं कि धोखा दे जाते हैं. फिर एस्ट्रोलॉजर के पास हम जाएं, जी मेरा भविष्य क्या है आगे, मैं नौकरी बदलूं. मतलब so much out of control. Yes, जबकि हर चीज हमारे control में, and we are giving away the control.
1: Finally understanding that destiny is within us, within our thoughts. So wonderful. In fact, trust is something which we are lacking. Okay, ये life के examples ले रहे हैं, रिश्तों की बात करेंगे खास.

0: हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में ट्रस्ट की बात बहुत जरूरी है, लेकिन वो हम अपनी अगली कड़ी में करेंगे। आज जो बातचीत रही वो सचमुच काफी क्लैरिटी के साथ हमें नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: थैंक यू।
0: आपके पास भी अगर कोई ऐसा ही सवाल है, कहीं ऐसा लग रहा है कि विश्वास कम हो रहा है, जिंदगी में बहुत सी जिन मूल्यों पर हम खड़े रहना चाहते थे वो कहीं तलाश नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसा है जो कम है, तो भाई आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आप हमें फोन कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। तो इसी के साथ वक्त है कि आपसे इजाजत लें, लेकिन आपको बता दें कि जो जिस विश्वास पर हमारा और आपका रिश्ता है उसी विश्वास को एक बार फिर पति पत्नी के और बाकी रिश्तों में भी तलाशने की कोशिश करेंगे अपनी अगली कड़ी में, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। तो अभी दीजिए इजाजत, मुलाकात करेंगे अगली कड़ी में। नमस्कार।

0: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयरएवर एंड फॉर हाउएवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरे मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चली होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं
1: भारतेंदु हरिश्चंद को आधुनिक युग के हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। वे आधुनिक भारत के महानतम हिंदी लेखकों में से एक हैं। भारतेंदु के साहित्य में आमजन की पीड़ा, समाज के मध्यम वर्ग की बेचैनी और देश के विकास की आवश्यकता बड़ी बुलंदी से दर्ज होती है। भारतेंदु सिद्धवाणी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे। एक और उनकी लेखनी से ऐसे रसपूर्ण सवैये निकले कि उनके जीवन काल में ही चारों ओर लोगों के मुंह से सुनाई पड़ने लगे, तो दूसरी ओर स्वदेश प्रेम से भरी हुई उनकी रचनाएं देश के मंगल का मंत्र फूंकने लगी। कभी उनकी कविताएं भक्तिमालाएं बनकर इष्ट के चरणों में अर्पित होती, तो कभी उनकी रचनाओं में धार्मिक आडम्बरों का माहौल उड़ाया जाता। उनके व्याख्यानों में स्त्री शिक्षा और समाज सुधार की गुहार लगाई जाती। बड़े ही सरल भाव से नए और पुराने में सामंजस्य बिठाकर वे अपनी रचनाओं में अद्भुत माधुर्य पैदा कर देते थे। भारतेंदु की लेखन सामग्री जीवन के हर पहलू को छूती हुई गुजरी और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से देश की उन्नति का कारक सिद्ध हुई।
2: आओ बेटा आओ, आओ जरा राम तो भजलें।

0: जी गुरु जी।
1: तो उठा बेटा एक तारा।
2: जी गुरु जी।
3: तो हो जाए गुरु जी,
1: हो जाए शुरू।
4: तो राम भजो राम भजो राम भजो भाई,
5: राम भजो राम भजो राम भजो भाई,
4: राम भजो राम भजो राम भजो भाई,
5: राम भजो राम भजो राम भजो भाई,
4: राम भजो राम भजो।

0: सूरदास भय कुल कशराई,
1: सूरदास भय कुल कशराई,
0: सूरदास भय कुल कशराई,
1: सूरदास भय कुल कशराई।
0: राम के नाम से घा जंगल की, तुलसीदास भज रघुराई।

0: राज भाई।
1: जय भोलेनाथ,
2: जय जय भोलेनाथ,
1: जय जय बाबा विश्वनाथ,
2: जय जय बाबा विश्वनाथ।
1: मैं महंत और मेरे दोनों चेले बच्चा नारायण दास
2: जय हो,
1: और बच्चा गोवर्धन दास
2: जय हो।
1: पहचान तो लिया होगा आपने।
2: अरे वही अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक वाले।
1: हाँ।
3: जो नाटक बाबा भारतेंदु हरिश्चंद्र लिख गए।
1: शाबाश बच्चा।
2: हम उसी नाटक के पात्र।
1: हाँ तो उस नाते से हरिश्चंद्र हुए हमारे
2: बाप।
1: अबे अब अबे मूर्ख, जनक भी तो कह सकता है।
2: हो हो गुरु जी।
1: हाँ, तो बच्चा गोवर्धन दास का तय हुआ था रे हमरे बीच
3: यही कि आज अंधेर नगरी नहीं बल्कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में तो बाबा भारतेंदु की कथा सुनाएंगे।
1: आजा बेटा, एक तरह लेके जरा सुर तो छेड़ दे। हाँ चलो चलो, शुरू करते हैं। राम

0: राम जपाई।
1: तो काशी नगरी में पैदा हुए हमारे जनक हरिश्चंद्र, गंगा मैया के किनारे विराजे बाबा विश्वनाथ, और यही है उनकी नगरी काशी।
2: और गुरुजी ये भी तो बता दीजिए, एक संपन्न वैश्य कुल में बाबू गोपाल चंद्र के घर भाद्र शुक्ल 5 संवत 1907 को बाबू हरिश्चंद्र का जन्म हुआ।
1: हाँ, हरिश्चंद्र 7 वर्ष के रहे होंगे जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी भड़की।

0: बचपन के संपन्न और सावंती वातावरण के बावजूद उनमें राष्ट्रीय चेतना जाग चुकी थी।
1: दौलत की दमक से वे अंधे न हुए थे कि गुलामी के अंधेरों को देख न सके।
2: काय भैया, बहुत दिन बाद देखे।
3: हाँ, बाहर बहुत घूमत रहे, जगन्नाथ जी गए, हमने कहा हरिश्चंद्र का गुहार है भगवान, ये अंग्रेजन से बचाओ हमका।
0: और भी बहुत सी जगह देखे होंगे।
3: हाँ, बहुत घूमे हम, चुनार, कानपुर, लखनऊ, सहारनपुर, हरिद्वार,

0: गन्ना चुरमुर चुरमुर बोले,
1: चुरमुर चुरमुर बोले,
0: गन्ना चुरमुर चुरमुर बोले,
1: चुरमुर चुरमुर बोले।
2: ओ बाबू खाने को मुँह खोले भैया,
1: खाने को मुँह खोले
2: बाबू खाने।

0: तो बच्चा लोग गाने में मजा आया कि नहीं?
1: अरे गाने में तो बहुत मजा आया गुरु जी, नाटक की याद हो आई, कब से नहीं खेला।
2: एक दो झलक नाटक की मिल जाए तो मजा आ जाए।
0: तो जैसी तुम लोगों की इच्छा, पर पहले भारतेंदु जी जो कमाल दिखाए हैं उसकी बात करेंगे।
1: जैसी गुरु जी की इच्छा। क्या कहते हो गोवर्धन दास,
2: जा में तुम राजी बा में हम भी राजी।
0: सिर्फ 34 साल की जिंदगी रही उनकी, इतनी छोटी जिंदगी में बड़ा बड़ा कमाल किए, वो हिंदी का पहला मौलिक नाटक भी लिखे।
2: और भी तो नाटक लिखे होंगे अंधेर नगरी के अलावा।
0: अरे बच्चा बहुत से लिखे, चंद्रावली, हिंसा ना भवती, भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम योगिनी,
1: और भी कुछ लिखे रहे।
0: अरे वे आशु कवि रहे, कुछ सूझा और कविता बन गई, किसी ने कहा और कविता बन गई।
3: अरे क्या बात है, अभी तक हरिश्चंद्र बाबू नहीं आए, शाम ढली जाती है।
4: अरे फिक्र ना करो, शाम को राम कटोरा मोहल्ला में आए बिना भैया को चैन कहाँ।
3: अरे बनारस में राम कटोरा मोहल्ला के रंग जैसा रंग और कहाँ मिलेगा।
4: लो लो लो, लो देखो भैया इधर ही आ रहे हैं, आ रहे इधर।
5: जय राम जी की भैया।
6: अरे जय राम जी की, जय राम जी की। और सुनाओ।
3: बस आप ही की बात कर रहे थे,
4: हम इनसे कह रहे थे भैया कि आपकी शाम राम कटोरा मोहल्ले से बाहर कटे ये हो ही नहीं सकता।
6: ये भी खूब कही, पहले ये बताओ कि पंचरत्नी तैयार है कि नहीं।
3: एकदम तैयार है, कब से आप ही का इंतजार था।
6: तो लाओ भाई पेश करो, जरा तरंग बने तो बात बने।
4: हाँ हाँ हाँ, ये लीजिए।
6: वाह, इसकी तो खुशबू से ही तरंग बन जाए, ऐसी खुशबू है।
3: तो भैया इसी बात पर कविता बन जाए एक।
6: हाँ हाँ अभी लो, तो बोलो किस पर कविता बनाओ।
4: वो उधर देखिए, उधर देखिए, वो देखिए, वो जो बाई जा रही है ना।
6: हाँ।
4: उसके मुंह पर चेचक के दाग है।
6: हाँ।
4: उस बाई पर कविता बनाइए जरा।
6: अरे अभी लो, तो पेश है एक शेर, सूखे आईना पे दिल।
4: वाह,
6: सूखे आईना पे दिल जो जा जा के फिसलता है।
4: सूखे आईना पे जो दिल
6: जा के फिसलता है, खुदाई दाग चेचक से जरा ठहराव मिलता है।
3: वाह वाह, क्या बात है भैया, इसी शेर पर हो जाए एक और दौर पंचरत्नी का।
1: पर गुरुजी, अंधेर नगरी गजब का नाटक है।
0: हाँ बेटा, सबका लिखा नाटक आज तक जवान है। अरे कुछ नहीं बदला हालात में, और कोई नाटक हिंदी में दिखा दो ऐसा अगर कोई है तो।
2: हमको तो उनकी भाषा बहुत भाती है।
0: हाँ बेटा, एक बात तुम लोगों को बतावे, हम हास्य व्यंग तो उनके खून में था, हंसते हंसते चोट कर जाते थे वे।
1: हाँ गुरुजी, हंसते हंसते चोट कर जाते थे। हाँ, तो हो जाए इसी बात पे।
0: हाँ बेटा, तो उठा एक तारा, जय भोलेनाथ। बम
7: dim tak dim dim dim tak dim dim dim tak dim dim tha
8: oi
7: dim tak dim dim dim tak dim dim dim tak dim dim tha
8: oi
7: dim tak dim dim dim tak dim dim dim tak dim dim tha
8: oi
7: dim tak dim dim dim tak dim dim dim tak dim dim tha
8: oi
4: churan amal vaid ka bhari
7: churan amal vaid ka bhari
4: churan amal vaid

0: Hey. Oh, chica.
1: तो देखा बच्चों, लक्ष्मी बांटो तो घटती है और प्रेम बांटो तो बढ़ता है।
2: सही बात गुरु जी, बिल्कुल बिल्कुल सही।
1: हाँ तो बच्चा नारायण दास
3: जी, गुरु
1: ऐसे आदमी रोज रोज पैदा नहीं होते।
3: 16 आने सच्ची बात।
1: हाँ बेटा, सबके सुख दुख में शरीक। अरे सड़क किनारे ठिठुरते भिगमंगे को अपनी शार उड़ाकर आगे बढ़ जाएं, ऐसे मलंग थे वे।
2: ये सच है ना गुरु जी कि उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए बाल बोधनी पत्रिका निकाली थी।
1: हाँ बेटा सच है ये, तब एक पत्रिका निकालना मुश्किल था, पर उन्होंने 2-3 निकाली और 2-3 और निकालने का विचार रखते थे वे।
3: पता नहीं गुरु जी उस जमाने में कैसे कर गए ये सब।
1: अरे धुन का पक्का हो अगर आदमी तो क्या नहीं कर सकता, वरना पत्रिका निकालना और बेचना बहुत टेढ़ी खीर था।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
4: अरे बड़ी कठिनाई से भैया एक ग्राहक बना पाया हूँ।
1: गनीमत है, हम तो एक भी ना बना पाए।
4: लगे रहिए कोई ना कोई मिल ही जाएगा।
1: अरे कल एक मिला था, बोला अखबार पढ़कर सुना जाया कीजिए। बताओ ये सही बात है।
4: अनपढ़ों के बीच पढ़े लिखे हैं ही कितने जिन्हें अखबार बेचें।
1: अरे पढ़ा लिखा पर होने से क्या होता है, खरीदने को पैसा भी तो हो।
4: अव्वल तो पैसा नहीं और जो पैसा हो तो इच्छा नहीं।
5: बहुत देर से तुम लोगों की बात सुन रहा हूँ, बताओ इसका हल क्या है, क्या बंद कर दे छपाई?
4: सवाल ही नहीं उठता।
1: सवाल ही नहीं उठता।
5: मैं जानता था तुम्हारा यही जवाब होगा, इसीलिए लगे रहो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
3: गुरुजी अब तो 2-4 झलकी हो जाए अंधेर नगरी की, मन बड़ा कुलबुला रहा है।
2: हाँ हाँ गुरुजी, नारायण दास ठीक कहता है।
1: तो ठीक है बच्चा, ले भाई अब शुरू होता है नाटक। तो बच्चा नारायण दास, ये नगर तो बहुत सुंदर है, देख कुछ बिच्छा इच्छा मिले तो ठाकुर जी का भोग लगे।
3: गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है जो है सोता, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो।
1: बच्चा गोवर्धन दास तू पश्चिम की ओर जा, और बच्चा नारायण दास तू पूरब की ओर जा, ठीक है?
3: जी गुरुजी।
1: हाँ तो देख कुछ सीधा सामग्री मिले तो शालिग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो।
2: गुरुजी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ लोग तो बड़े मालवर दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए।
1: बच्चा बहुत लोभ मत करना है, देखना लोभ पाप का मूल है।
6: लोभ पाप का मूल है,
1: लोभ मिटावत मान।
6: लोभ मिटावत मान।
1: अरे लोभ कभी

0: बच्चा ये नगरी कैसी है?
1: बाबा जी इस नगरी की चाल यही है, यहाँ की सब चीज टके ढेर बिकती है।
0: क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है?
1: अंधेर नगरी।
0: और राजा का नाम क्या है?
1: चौपट राजा।
0: बाबा बाबा, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा।
2: अंधेर नगरी चौपट राजा,
3: अंधेर नगरी चौपट राजा,
2: अंधेर नगरी चौपट राजा,
3: अंधेर नगरी चौपट राजा,
2: टका शेर भाजी टका शेर खाजा,
3: टका शेर भाजी टका शेर खाजा,
2: टका शेर भाजी।

0: हाँ बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज नक्शा शेर मिलती है, तो मैंने उसका विश्वास नहीं किया था। ये कौन सी नगरी है और उसका कौन सा राजा है जहाँ टका शेर भाजी और टका शेर खाजा मिलता है?
1: अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा।
0: तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टका शेर भाजी और टका शेर खाजा हो। सेत सेत

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफ स्टाइल कहते हैं। लाइफ स्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफ स्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माई लाइफ स्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणे आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM.
0: आनंदी रहा आणि आनंद ब्रह्मकुमारीज.
2: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विथ ब्रह्मकुमारीज. सिस्टर शिवानी वेलकम.
3: ओम शांति.
2: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति.
3: थैंक यू.
2: पिछली बार मैंने कुछ पढ़ा था लेकिन वो बात भी अधूरी रह गई और कुछ मेरे प्रश्न भी अधूरे रह गए, तो मैं दोबारा उस लाइन को पढ़ना चाहूंगा. इट सेज इफ वी कुड लुक इनटू ईच अदर्स हार्ट्स

0: तीसरा वर्ड है कुड.
1: इफ
0: वी कुड लुक इन टू ईच अदर हार्ट,
1: विच मीन्स इफ वी कुड एवर अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ दैट सोल. इट्स सिंपल. एक सिंपल चीज देखते हैं. सपोज मैं यहां से चल के जा रही हूं और मैं लिंप कर रही
0: हूं,
1: ठीक है, तो वो लिंपिंग टेढ़ा चलना अकॉर्डिंग टू यू विल नॉट बी द डेफिनेशन ऑफ राइट वॉक. राइट, जो हम कहते हैं ना, हमारे अनुसार वो सही नहीं कर रहे, यही तो हमारी डिस्टर्बेंस का मेन कारण है. तो आप कहेंगे ये बिल्कुल सही चलने का तरीका नहीं है. एंड विच इज अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ राइट, क्योंकि हम बार बार जब जस्टिफाई भी करते हैं ना कि नॉर्मल भी तो ऐसे नहीं चलता ना कोई भी, तो ऐसे कैसे चल सकते हैं, तो ये रॉन्ग है, ये गलत है, इसको चलना नहीं आता, जान पूछ के तो नहीं ऐसे चल रहे, मुझे तंग करने के लिए तो नहीं ऐसे चल रहे,
0: डिस्ट्रैक्ट अटेंशन करने के लिए तो नहीं कर रहे,
1: अट्रैक्ट करने के लिए तो ऐसे नहीं चल रहे,
0: विक्टिम अपने आप को पिचारी बताने के लिए,
1: पिटी के लिए तो ऐसे नहीं चल रहे, मुझे डिस्टर्ब करने के लिए तो ऐसे नहीं चल रहे,
0: टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स के लिए,
1: ओ बाबा टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स तो नहीं ऐसे. सी जस्ट सी, एक सिर्फ थोड़ा सा टेढ़ा चलने से कितनी सारी थिंकिंग हो रही है अंदर. नाउ इफ यू कुड एक्चुअली नो द रीजन वाई आई एम वॉकिंग लाइक दैट. जब तक आपको रीजन पता नहीं है तो कितनी नेगेटिव थिंकिंग, कितनी डिस्टर्ब्ड थिंकिंग, कितना मेरे प्रति गलत सोचना कि जान पूछ कर रहे हैं, अटेंशन सीकिंग के लिए कर रहे हैं, सिर्फ एक अलग स्टाइल क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं, कितनी सारी थॉट्स, ओनली वाई, बिकॉज यू डोंट नो द एक्चुअल रीजन. This is the meaning of that. It's such a beautiful line. कि if we could see into the heart of the other person, कि वो ऐसे जो हैं वो क्यों हैं. अब जैसे अगर आपको पता चले कि चोट लगी है, पैर मुड़ चुका है, इसलिए ऐसे चल रहे हैं, तो ये सारी thoughts फिर सारी thoughts खत्म हो जाएंगे.
0: नहीं, अपने आप को भी बुरा लगेगा
1: कि हमने ऐसा क्यों सोचा
0: इसके बारे में.
1: वेरी ट्रू.
0: और वाकई जाके देखो तो बेचारा लंगड़ा है, दर्द में है, और मैं इतने बातें कर रहा हूँ कि देखो अटेंशन सीकर रहा है, विक्टिम बता रहा है, हम क्या क्या कर रहा है मतलब.
1: और फिर जब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली तो लिंपिंग इसलिए है कि चोट लगी है, पैर मुड़ चुका है, तो
0: पैरालिसिस हुआ होगा.
1: अच्छा, तो अब आप क्या करेंगे?
0: अब हम बोले अपने आप को भी बुरा लगेगा,
1: और गिल्ट फील होगा कि हमने गलत सोचा, और
0: कम्पैशनेट हो जाएंगे ना, कि
1: कम्पैशनेट भी हो जाएंगे कि अच्छा इस वजह से ऐसे चल रहे हैं. और कुछ
0: और क्या, अगर कहीं हम उस तरफ जा रहे हैं तो हम कहीं छोड़ देंगे, बोले कि आपको हम लिफ्ट दे देते
1: हैं. परफेक्ट. अब आप हेल्प करेंगे. सी कहाँ थे और कहाँ आ गए जस्ट विद द नॉलेज कि एक्चुअली वो ऐसे क्यों चल रहे हैं. यही तो वो लाइन है कि इफ वी कुड लुक इन टू द हार्ट ऑफ द अदर पर्सन एंड नो द जर्नी ऑफ वॉट दे आर गॉन थ्रू, वी वुड बिकम मोर टॉलरेंट, मोर काइंड, मोर जेनरस,
0: एंड वी विल बी मोर, विल टेक मोर केयर.
1: वही आपने कर दिया कि अगर नहीं पता था क्यों टेढ़ा चल रहे हैं तो इतनी नेगेटिव थिंकिंग, डिस्टर्ब थॉट्स, एंड व्यक्ति ही गलत है. फिर पता चल गया तो अपनी थिंकिंग गलत लगी, दूसरे के प्रति कंपैशन हुआ, और तीसरा उनको हेल्प करना भी चाहा.
0: एक दिन एक स्कूटर पे आदमी जा रहा था, तो एक आदमी रोड क्रॉस कर रहा था, तो स्कूटर वाले ने ब्रेक मार के उसको गाली दी और पूछा कि अंधा है क्या. वो टर्न करके बोला, हाँ बाबा मैं अंधा हूँ. कितना उसको लगा होगा, बोले देखो एक्चुअली अंधा था वो.
1: हर आत्मा जो चल रही है, जिसके लिए हमने कहा कि वो माइंड गेम्स खेल रहे हैं, वो हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो हमें जान पूछ के तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें हर्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, वो तो खुद ही लंगड़ा रहे हैं, वो आपके साथ माइंड गेम्स
0: को कंट्रोल करने की कोशिश करे, वो लंगड़ा रहे.
1: जो किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करे, वो क्यों किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? लेट्स थिंक नाउ, वी रिफ्लेक्ट. यू नो, हमारे पास सारे आंसर्स हैं. अगर मैं आपको कंट्रोल करने की कोशिश करूं, आप मेरा कहना माने, आप मेरे कहे अनुसार चले, मैं जो कहूं वो सही है, आप वैसा करें, इट्स अ सेंस ऑफ
0: मैं वो कहूं,
1: मैं जो कहूं वैसा आप चले, क्योंकि मैं जो कहती हूं वही सही है, आपको वैसा ही चलना चाहिए.

0: उसमें आपका ही फायदा है. दिस इज अ सेंस ऑफ
1: कि आई नो बेटर देन यू
0: एंड इट्स अ सेंस ऑफ
1: सुपीरियर फीलिंग
0: एंड इट्स अ सेंस ऑफ
1: कंट्रोलिंग अदर्स.
0: इट्स अ सेंस कि जब आप मेरे अनुसार चलेंगे तब आई एम पावरफुल. आई फील पावरफुल ना, लोग मेरा कहना मानते हैं. सी, हर आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी पावर है, शक्ति है. जब हम शक्तिशाली महसूस करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, राइट? ईच वन ऑफ अस वॉन्ट्स टू बी पावरफुल. जैसे प्यार हमारा ओरिजिनल क्वालिटी है तो हमें अच्छा लगता है जब हमें प्यार अनुभव हो. लेकिन आज अपनी ओरिजिनल क्वालिटी प्यार नहीं अनुभव हो रही थी तो कब अच्छा लगता था? जब कमी किसी और से प्यार मिले. सम्मान रिस्पेक्ट हमारी ओरिजिनल क्वालिटी थी, नई अनुभव हो रही थी, तब अच्छा लगता था जब कोई और हमें रिस्पेक्ट दे. और अगर किसी और ने रिस्पेक्ट नहीं दी तो हमें रिस्पेक्ट की कमी महसूस होती थी. दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग. पावर हमारी ओरिजिनल क्वालिटी थी. पावर एक्चुअली तब अनुभव होगी जब हम अपने ऊपर कंट्रोल में रहेंगे. लेकिन वो नहीं हो रहा था तो हमें पावरफुल कब फील होता था? जब दूसरे लोग हमारे कंट्रोल में चलते हैं. एवरी क्वालिटी ऑफ द सोल, आत्मा को वो सातों क्वालिटीज अनुभव करनी ही करनी है, उसको चाहिए वो. सिर्फ फर्क ये हो रहा है, जब अपने अंदर से नहीं महसूस हो रही तो वो उसको बाहर से महसूस करने की कोशिश करती है. तो आत्मा जब खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकती थी, अपने मन, बुद्धि, संस्कार, कर्म इंद्रियां कंट्रोल में नहीं, तो द सेंस ऑफ पावर केम फ्रॉम कंट्रोलिंग अदर पीपल. एंड इफ यू सी, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस आर ऑन दिस जर्नी ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल अदर पीपल. वो हम पोजीशन से कंट्रोल करने की कोशिश करें, रिश्ते के नाते कंट्रोल करने की कोशिश करें, हम बड़े हैं एज में इसलिए कंट्रोल करने की कोशिश करें. लेकिन जब लोग मेरे कंट्रोल में हैं तब आई एम पावरफुल. और अगर लोग मेरे कंट्रोल में नहीं तो आई फील अब तो मेरे कोई कंट्रोल में ही नहीं है, वेरी पावरलेस. एंड जब लोग मेरे कंट्रोल से बाहर जाना शुरू करते हैं, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग. तो ये जो आप कह रहे हैं कि कोई हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल मीन्स को किसी न किसी तरह वो ट्राई कर रहे हैं, मैनिपुलेट कह लो उसको. मैनिपुलेट करना भी मतलब क्या करना, कि वो आत्मा कुछ ऐसा ऐसा करेगी जिससे आपकी मन की स्थिति उसके अनुसार चले. मैनिपुलेट कर रहे हैं वो आपको. तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी अपने मन की स्थिति उसके अनुसार नहीं चलती है. हर आत्मा की, ये कोटेशन इतनी ब्यूटीफुल है, हर आत्मा की जीवन में हमें नहीं पता क्या क्या हुआ. उसके बचपन में उसके साथ क्या हुआ हमें नहीं पता. शायद उसको रिजेक्शन मिला हो पेरेंट्स से, किसी को बहुत क्रिटिसिज्म मिला हो पेरेंट्स से, किसी को बहुत ही कंट्रोलिंग पेरेंट्स मिले हो जो बहुत डोमिनेट करते हैं उसके ऊपर.
1: जरूरी थोड़ी पेरेंट्स ही ऐसे हो, तुम खुद ही पैदा हुए ऐसे. आई वांट टू कंट्रोल द वर्ल्ड.
0: चलो, अगर
1: जन्म से आप लेके आए होंगे
0: संस्कार भी लेकर आए हो. संस्कार भी लेकर क्यों आए हो? कभी ना कभी कुछ अनुभव हुआ होगा ना.
1: मतलब आपका ये है कि कोई कंट्रोल करे मुझे तो मैं आगे जाके
0: कंट्रोल करे, एक्सप्लॉइट करे, अब्यूज करे, उस क्षण मुझे ऐसा फील हुआ होगा कि आई एम बीइंग ओवरपावर्ड बाय अदर पीपल, आई एम वेरी वीक. ये मेरे अंदर प्रोग्रामिंग में फिट हो गया. जब मेरी प्रोग्रामिंग में फिट हुआ, आई एम वेरी वीक. अब मुझे, मैं पावरफुल हूं ये मैं कैसे प्रूव करूं अपने आप को? बाय कंट्रोलिंग समवन एल्स. उसके अलावा हाउ विल आई बी एबल टू प्रूव टू माय सेल्फ कि नो आई एम पावरफुल?
1: व्हाई कांट आई से कि यस आई एम वीक एंड आई कांट फाइट दिस?
0: आई कांट फाइट व्हाट?
1: व्हाटएवर इट इज इन लाइफ.
0: वीकनेस किसी आत्मा का संस्कार नहीं है. हर सी वी हैव
1: आपने कहा ना, कहीं जब मुझे कोई कंट्रोल कर गया होगा पहले, एक्सप्लॉइट कर गया होगा, फाइन. आई वॉज एक्सप्लॉइटेड.
0: तो वो दर्द तो हो गया ना यहाँ पे प्रोग्रामिंग में.
1: तो उस वजह से दूसरे के साथ करने की क्या जरूरत है?
0: दूसरे के साथ हम इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं. सी, दैट इज ओनली वॉट इज ट्राइंग टू टेल अस, कि अगर हमें समझ में आ जाए कि यात्रा क्या थी, आत्मा के साथ क्या क्या हुआ था, तो फिर उसका प्रेजेंट बिहेवियर हमें अजीब नहीं. कोई जान पूछ के आके नहीं कंट्रोल करता, हाँ ना अभी मैं इनको कंट्रोल करूंगी, ऐसा कोई नहीं कर रहा है. नोबडी इज मैनिपुलेटिंग और कंट्रोलिंग डेली.

0: परफेक्टली जो वो कर रहे हैं उनको वही करने का तरीका सही लगता है, उनको ये भी नहीं पता चलता कि वो जानबूझ के कुछ कर रहे हैं, उनके हिसाब से जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। बट हमें अब अपने आप को कैसे उनसे प्रोटेक्ट करना है, हमें सी पावर टू टॉलरेट मीन्स व्हाट, सहन करने की शक्ति हमारे अंदर तब आएगी जब हम सामने वाली आत्मा के बिहेवियर को सिर्फ ना देख, बिहेवियर के पीछे की इंटेंशन और उसके पीछे के दर्द को समझने की कोशिश करें।
1: इंटेंशन तो बैड ही है लेकिन दर्द को देखेंगे तो फिर टॉलरेट करने का सवाल ही नहीं पैदा, फिर तो समझ गए।
0: इंटेंशन भी एक्चुअली बैड नहीं है, इंटेंशन बैड नहीं है। बहुत बहुत कम लोग होंगे जो इंटेंशनली गलत कर रहे होते हैं, दैट्स अ वेरी स्मॉल नंबर। मोस्ट ऑफ द अदर थिंग्स जो हमें गलत दिखाई दे रहे हैं,
1: मोस्ट ऑफ द अदर पीपल आर मजबूर
0: अपने संस्कार के परवश,
1: संस्कार की वजह से वो मजबूर हैं कि दे कैन नॉट डू अदरवाइज।
0: यस, वो अपने संस्कार, वो ऐसे प्लान करके इंटेंशनली नहीं कंट्रोल कर रहे।
1: मुझे एकदम गुस्सा आ जाता है तो मैं आपको हर्ट करने के लिए, रुलाने के लिए, तताने के लिए नहीं करता, वो मेरे अंदर का संस्कार है। भाई तो ऐसा झूठ क्यों बोल रहा है भाई साहब, साफ क्यों नहीं बोलता एकदम, फिर मैं चिढ़ जाता हूँ। बट मेरा उसके अंदर इंटेंशन है क्योंकि कि आएगा तो वो ऐसा बोलेगा तो मैं उसको रुलाऊंगा और आप जाके वहां रोने लगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है।
0: एक्जैक्टली, दिस इज इट।
1: अच्छा टेल मी स्ट्रेट ना, व्हाई झूठ क्यों बोलते हो?
0: बस लेकिन अगर मैं अब रोने लगू और उदास हो जाऊं, मतलब ऐसे बोल दिया मुझे गुस्सा कर दिया,
1: आप सोचेंगे कि मैं घर से सोच के आया था कि आज आपको रुलाऊंगा, ऐसा तो था नहीं।
0: ऐसा तो कोई भी नहीं कर रहा, ऐसा कोई भी नहीं कर रहा। सिर्फ ये है कि जैसे गुस्सा एक बड़ी विजिबल एनर्जी है ना, गुस्सा ना दिख जाता है कि कोई गुस्सा कर रहा है, लेकिन उसको भी हम में से मेजोरिटी लोग काफी पर्सनली लेते हैं। मुझे गुस्सा कर दिया, मेरे साथ ऐसे बात कर दी, अभी आपने क्या कहा, मैं जान पूछ के आपके साथ ऐसे बात नहीं की, मुझे
1: ना प्लान किया ना सोच
0: किया, तो कोई नहीं कर दिया।
1: जैसे हम लोग बोल रहे थे ना कि इसका उसकी प्लानिंग है, इंटेंशन है, और क्या क्या वो वर्ड पहले मैंने यूज किया था भूल गया,
0: हर्ट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए।
1: तो मैनिपुलेट करने के लिए तो प्लान करना पड़ता है, तो यहाँ कहाँ, ये तो एक दिस पर ऑफ द मोमेंट आ गया,
0: संस्कार के परवश,
1: हीट ऑफ द मोमेंट खट
0: निकला। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो हीट ऑफ द मोमेंट निकला तो वो क्या निकला, वो आपका संस्कार निकला ना। अब मैं अपने नजरिए से देखू कि अगर आपने आए, मैंने कुछ किया गलत, जैसे आपने कहा चलो झूठ बोला, मैंने अगर झूठ बोला या झूठ नहीं बोला, आपको लगा झूठ बोला तो और भी तकलीफ होती है कि मैंने तो झूठ बोला ही नहीं था एक्चुअली, आपको लगा मैंने झूठ बोला, हीट ऑफ द मोमेंट आपने कहा, रिएक्ट कर दिया। सपोज अब मैं ये थिंकिंग करूं, जब आए मुझे गुस्सा किया, मैंने सच बोला था फिर भी गुस्सा किया, जान पूछ कर मुझे तंग करते हैं, चाहते हैं कि मेरा काम खराब हो जाए, इनको मालूम है इनके गुस्सा करने से आगे मेरे से काम होने वाला नहीं है, ये मुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं मेरा काम गलत करने के लिए। इज ऑल दिस राइट?
1: मेरा प्रॉब्लम मैं बताता हूँ,
0: बट इज ऑल दिस ट्रू?
1: नहीं,
0: इज नॉट ट्रू ना,
1: इज नॉट ट्रू। बट फॉर आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज किसी को ये मालूम करना है कि मैं अपने बेटे के लिए कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट किया कि नहीं, तो अगर कोई मुझसे आके डायरेक्ट पूछे कि भाई साहब फिल्म इंडस्ट्री में ना कभी ऊपर नीचे होता रहता है, कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट सी कर लो जहां से एक मंथली इनकम आए, तो अगर वो नहीं पूछ के बोले देखो मैं तो अपने लिए अपना काफी इन्वेस्टमेंट कर चुका हूं और ऐसा ऐसा है, आपको भी करना चाहिए, तो नाउ दे वॉन्ट टू नो कि सडनली मैं बोलू हाँ हाँ मैंने तो किया है। आप इतना सोच के इतना घुमा के कोई बात करे, दैट काइंड ऑफ अ थिंग।
0: ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी, ऑनेस्ट डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ये भी तो एक विशेषता है ना।
1: अब मैं वो चाहता हूँ क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ।
0: हम ये चाहते हैं कि जो हमारे अंदर विशेषता है वो सबके अंदर होनी चाहिए।
1: मुझे क्या मालूम है विशेषता, मैं समझ नहीं।
0: अच्छा एक मिनट, अच्छा ऑनेस्ट कम्युनिकेशन आपकी विशेषता है, मेरे अंदर नहीं है सपोज, ठीक है, लेकिन मैं इतना गुस्सा नहीं करती,
1: गुस्से की बात नहीं है,
0: हर एक के अंदर अलग अलग।
1: आपको कुछ मेरे से जानकारी करनी है तो इतना घुमा के पूछ, तो मेरे पिताजी ने तो किया था, मेरे माता जी ने।
0: कम्युनिकेशन मेरी क्वालिटी नहीं है।
1: ओके
0: मैं पीस

0: तो आप क्यों नहीं पीसफुल हो जाते एक सेकंड में, आप इतना गुस्सा क्यों करते
1: अभी हैं? उस दिन क्या हुआ, हम लोग शूटिंग कर रहे थे तो यहाँ पर एक टीम आई थी, कोई अपनी पता नहीं क्या उसको बोलते हैं, जो भी उनका मीटिंग थी, जो भी उसमें फंक्शन था, गाना वाना जो भी था, भागते भागते आ रहे हैं, हम आपको देखते हैं। मैंने बोला कैमरा इज ऑन, मुझे गुस्सा रहा, मतलब रुक जाओ। तो आपने क्या किया, प्लीज लेट देम कम, आओ बैठो, हाँ जी हम आपका प्रोग्राम देखते हैं मैम, और बड़ा अच्छा लगता है सुबह अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी से हमने बहुत सीखा। आपने उनको एक डेढ़ मिनट दिया, वो भी खुश, हम भी खुश, सब चले गए। उस दिन अगर मैं आप नहीं होते, मैं उनको डांट देता था, आप इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हो, आप अपने आपके फंक्शन में मैं आके बीच में बोलूं कि एक्सक्यूज मी कैसे लगता है। सपोजिंग आप स्पीच दे रहे हो माइक पे और आप बोल रहे हो कि हमारा प्रोडक्ट दिखता है, बोले हेलो हेलो हेलो आई लाइक यू, आई सेड दिस इज माई बिजनेस लाइक दैट इज योर्स। तो मैं दूसरे एंगल से देखता। आपने क्या किया, उसको डेढ़ मिनट में निकाल दिया। अब वो मेरे में विशेषता नहीं है ना?
0: कोई बात नहीं ना, यही तो हमारी जर्नी है कि हम दो लोगों के अंदर अलग अलग विशेषताएं हैं, इसी तरह हम दो लोगों के अंदर कमजोरियां भी अलग अलग होनी है, कमजोरियां भी अलग अलग होनी है ना। तो अगर डायरेक्ट सीधी बात करना आपकी विशेषता है, हो सकता है वो मेरी विशेषता नहीं होगी। तो मुझे अजीब लगेगा सीधा सीधा पूछना आपने क्या इन्वेस्टमेंट किया है, मैं नहीं पूछ सकती, मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है ऐसे सीधी बात करने का।
1: मुझे बोलते हुए तुसी बड़े ब्लंट हो जी।
0: हाँ तो फिर अब अच्छा अभी ब्लंट, तो अभी आप देखो उस विशेषता को भी जिसके अंदर वो विशेषता नहीं होगी उसको वो विशेषता भी अजीब लगेगी, ऐसे सीधा सीधा बोल रहे
1: हो तुसी कमाल कर दो, ब्लंट हो जी बड़े सीधा सीधा ऐसे कोई बात करते हैं कि मुंह पे पूछ लिया आपने।
0: बस दिस इज व्हाट डिफरेंस इज, वी आर डिफरेंट, वी आर डिफरेंट। अब क्योंकि मैं इतना डायरेक्टली नहीं पूछ सकती कि आपने क्या इन्वेस्टमेंट किया, मेरे से नहीं पूछा जाता ऐसे सीधा सीधा, तो मैं पर मेरे को जानना भी है, तो मैंने कहा अच्छा ऐसा करना चाहिए, आपने किया क्या, ये
1: आप क्यों नहीं कर देते,
0: मतलब दो चार ऐसे ऐसे बात करके ताकि मुझे वो आंसर मिल जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर वो विशेषता नहीं है, मैं इसको जान पूछ के नहीं कर रही।
1: बट दीज आर द थिंग्स ना, मेरे बारे में दिमाग में चलते, ये आया या आई मुझसे पूछने के लिए कि मेरी बेटी के लिए मैंने कुछ किया नहीं किया, क्यों इसको इतनी इंक्विजिटिवनेस है, क्यों जानकारी
0: जानना चाहते
1: हैं, और जानना भी तो सीधा क्यों नहीं पूछा,
0: सीधा नहीं बोलना,
1: क्यों मेरे ऊपर बड़ा एहसान करके कि आई विल शो यू हाउ टू इन्वेस्ट दिस दैट दैट करके इतना अच्छा। अगर मैं बोल दूं कि ये किया तो आई विल शो यू, आप तो शो नहीं करे, आप तो सुन के अपना मतलब सीधा किया भाग गए।
0: मैं उसी के लिए आई थी ना, सीधा पूछना मुझे नहीं आता, मैंने दो तीन तरह से बात करके पूछ लिया, काम हो गया मेरा, मैं जान पूछ के नहीं
1: किया। दिस इज नॉट मैनिपुलेशन,
0: नो दिस इज नॉट मैनिपुलेशन,
1: दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्सन,
0: दिस इज अ संस्कार ऑफ दैट पर्सन कि वो जानना चाहते हैं लेकिन वो डायरेक्टली नहीं पूछ सकते, तो वो कुछ ऐसा ऐसा करेंगे। और आप देखो नॉर्मली भी कुछ लोगों के अंदर संस्कार होता है, सपोज उन्हें कहीं जाने वाले हैं वो, ठीक है, जैसे बहुत बार लोग मिलते हैं उनका प्रोग्राम फिक्स्ड है, वो कहीं जाने वाले हैं, उनकी डेट फिक्स्ड है, उनकी टिकट बुक्ड है, उनका सब कुछ हो गया है, उनसे पूछो आप जाने वाले हैं वहां पे, हाँ सोच रहे हैं, बना रहे हैं प्रोग्राम, चले जाएंगे थोड़े दिन में, वो नहीं बताएंगे कि डेट क्या है, कब जा रहे हैं। अब इनिशियली
1: शायद भी
0: शायद हाँ बन रहा है प्रोग्राम, देखते हैं शायद हो जाएगा। अब फॉर मी इनिशियली आई वुड फाइंड दिस स्ट्रेंज, ऐसे मतलब सब कुछ फिक्स्ड है, पता है, तो बताने में क्या जाता है। लेकिन देन व्हेन यू सी फ्रॉम द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव, नहीं है कॉन्फिडेंस अपनी इन्फॉर्मेशन रिवील करने का, या कोई वहम है कि नहीं बताना चाहिए, एक संस्कार है कि मुझे अपने बारे में सब नहीं बताना है।
1: बिना मतलब के भी लोग झूठ बोलते हैं, बिना मतलब, जैसे एक वन ऑफ माई फैमिली मेंबर्स हु केम टू माई हाउस, बाहर से आया तो मेरा फोन बजा, तो उसको मैंने बोला तुम्हारे लिए फोन है, भाई कब आए, बोले कल ही आए, आगे 10 दिन हुए, आदत है। और उसको दूसरे को फोन किया कि मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, मैंने बोला तुम निकले नहीं आज से आधे घंटे, कोई बात नहीं।
0: अभी तो आपने एक लाइन यूज की, आदत है, आदत है ना, ठीक है। अब इस लाइन को
1: मैं शायद झूठा है नहीं बोल रहा, उसको इस तरह की झूठी बात करने की आदत है
0: वो ठीक है, आदत है बोलना ठीक है, रादर देन थिंकिंग जान पूछ के मुझे झूठ बोला, डेलिबरेटली मुझसे छुपाया, मुझे तंग करने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन दी,

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज। दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम यू वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे, मांग

0: करते रहेंगे एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट.
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.
2: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आप सभी का स्वागत करती हूँ. आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे. आज हम देखते हैं कि आज के समय में लोगों को बोलने से पहले सोचने और समझने की क्षमता कम ही हो गई है. शब्द ही जबकि व्यक्ति की दौलत है. तो आज हम चर्चा करते हैं शब्दों की पूंजी पर. एक गांव में दो पक्के दोस्त रहते थे. एक की उम्र 12 साल तो दूसरे की 8 साल थी. एक दिन खेलते खेलते बड़ा लड़का गेंद उठाने कुएं के पास गया तो उसका पैर फिसल गया और कुएं में गिर गया. छोटे लड़के ने देखा कि मदद के लिए उनके आसपास कोई नहीं है. तब उसने कुएं के पास बड़ी बाल्टी रस्सी कुएं में डाल दी और बड़े लड़के से उसे पकड़ने को कहा. फिर छोटा लड़का उसे खींचने लगा. काफी देर की मेहनत के बाद अपनी भरपूर ताकत झोंक कर छोटे ने बड़े लड़के को किसी तरह बाहर निकाल दिया. दोनों ने सोचा कि गांव में जाकर यह बात सबको बताएंगे तो सब नाराज होंगे. लेकिन हुआ उल्टा. सभी ने उनकी बात को मजाक समझ लिया और 8 साल का छोटा सा लड़का 12 साल के बड़े लड़के को कुएं से खींचकर कैसे बाहर निकाल सकता है, यह तो असंभव लगता है. गांव के ही एक समझदार बुजुर्ग को बच्चे की बात पर यकीन था. सभी ने बुजुर्ग से पूछा, आपको क्यों लगता है कि ये बच्चे सच बोल रहे हैं और छोटा लड़का ऐसा कर सकता है? बुजुर्ग बोले, छोटा लड़का ऐसा कर पाया क्योंकि उस समय उसके आसपास कोई यह कहने के लिए नहीं था कि बच्चे तुम यह नहीं कर सकते. यहाँ तक कि खुद उस लड़के ने भी अपने आप से ऐसा नहीं कहा कि इस परिस्थिति में मैं नहीं कर पाऊंगा. तो देखते हैं अच्छे शब्दों में रचनात्मक शक्ति होती है. तो हम जैसे ऊपर देखे अभी हम देखते हैं कि घटना का जो तात्पर्य है यहाँ कि शब्दों में बहुत ताकत होती है. शब्द इतना प्रेरित कर सकते हैं कि व्यक्ति असंभव को भी संभव कर दे. ये शब्द ही है जो प्रेम का बीज बो देते हैं. तो वेमंस में हम देखते हैं कि भी बढ़ा देते हैं यहाँ पर जहाँ अच्छे शब्दों का प्रयोग करके बात को सकारात्मक दिशा दी जा सकती है. वहाँ कोई एक नकारात्मक शब्द पूरी बात को ही बिगाड़ देता है. अच्छे शब्द छोटे होते हैं और बोलने में आसान भी, लेकिन इनकी जो प्रतिध्वनि लंबी होती है और कभी कभी तो अंतहीन होती है. अच्छे शब्दों में रचनात्मक शक्ति होती है. मनुष्य को जीवन में केवल दो शब्द ही जो है नष्ट करते हैं, अहम और वहम. तो दोस्तों इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक

नमस्कार दोस्तों, कल्याण की धारा इस कार्यक्रम में मैं दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है शब्दों की पूंजी। जैसा कि हम देखते हैं, महान व्यक्ति अपने शब्दों पर हमेशा कड़ी नजर रखता है। शब्दों द्वारा ही सम्मान व अपमान होता है, इसलिए सदा शब्दों को तौल कर बोलिए। अक्सर सुनने में आता है, किसी ने कहा मेरी जुबान जो है वो फिसल गई, इसलिए मैं अपने बोले हुए शब्दों को वापस लेता हूँ या अपने कहे हुए शब्दों पर माफी मांगता हूँ। जिस व्यक्ति के शब्द जितने गरिमा में होंगे, उसका व्यक्तित्व भी उतना ही सम्माननीय और गरिमापूर्ण बनकर उभरेगा। महान व्यक्ति अपने शब्दों पर हमेशा कड़ी नजर रखता है, क्योंकि एक छोटा सा भी नकारात्मक या अनुपयुक्त जो शब्द होते हैं, वो लोगों में घमासान करा सकता है और उसकी जो छवि है उसको दागदड़ कर सकता है। सकारात्मक शब्द लोगों के अंदर, लोगों में जो है उत्साह भर देते हैं, उन्हें चोटी पर पहुंचा सकते हैं। यही है शब्दों की ताकत। हर शब्द का मोल होता है। शब्द सदा कसौटी पर होते हैं। विनम्रता भरी शब्द में वह ताकत होती है जो बिगड़े कार्य भी बन जाते हैं। हर बोल, हर शब्द कीमती है। सही शब्द का उचित उपयोग अच्छी समझ और संवेदनशीलता को ही नहीं बल्कि सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण भी जाहिर करता है। हर शब्द के मायने होते हैं, वैसे ही हर शब्द का मूल होता है। तभी तो कहावत है, तोल मूल की फूल। सटीक व अच्छे शब्दों का सही उपयोग वक्ता को प्रेरक और प्रभावी बनाता है।

संभाली बोली, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द बने औषधि, एक शब्द बने घाव, शब्द संभाले बोलिए, शब्द खींचते ध्यान, शब्द मन घायल करे, शब्द बढ़ाए मान, शब्द मुख से छूट गया, शब्द न वापस आए, शब्द जो हो प्यार भरा, शब्द ही मन में समाए, शब्द में है रंग भाव का, शब्द है मान महान, शब्द जीवन रूपी भी रूप है, और शब्द ही दुनिया जहान, शब्द ही कटुता रूप दे, शब्द ही बैर हटाए, शब्द जोड़ दे टूटे मन, और शब्द ही प्यार बढ़ाए। तो आपने देखा, शब्दों की अगर हम भाषा के साथ अपने शब्दों पर भी ध्यान दें, तो शब्दों की महत्ता अधिक होती है। हमारे शब्द हमारी मान हमारी मर्यादा पर हमारे हर व्यक्तित्व को वो प्रस्तुत करता है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और मैं ब्रेक के बाद फिर से आपसे आकर मिलती हूँ।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धार इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना फिर से आपका स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। आज का हमारा विषय है शब्दों की पूंजी। जैसा कि हम देखते हैं, शब्द जो है, शब्द भी एक तरह का भोजन है। शब्द भी एक तरह का भोजन है। किस समय कौन सा शब्द परोसना है ये आ जाए तो दुनिया में उससे बढ़िया रसोईया कोई नहीं है। शब्द का अपना एक स्वाद है। बोलने से पहले स्वयं चख लीजिए। अगर खुद को अच्छा न लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। जो अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं उनका जीवन सुंदर बन जाता है। अच्छे शब्द मन को आनंद की अनुभूति प्रदान करते हैं। जब हम भगवान की याद में बोलते हैं तो हमारे बोल में ईश्वरीय शक्ति भर जाती है, जिससे सुनने वाले को सुकून मिलता है और वह

बदलने लगता है। शब्दों के द्वारा ही व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। शब्द हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं। शब्दों की शक्ति अतुल्य है। अच्छे शब्दों का प्रयोग व्यक्ति का जीवन बदल देता है। जितनी ज्यादा अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे, उतने ही ज्यादा आप अच्छे शब्द मन में आपके आएंगे। सही बात सही समझ के साथ केवल अच्छे शब्दों के माध्यम से ही की जा सकती है। तो हमारे पास भले ही अधिक संपत्ति अब न हो, लेकिन शब्दों की पूंजी जरूर होनी चाहिए। शब्द है जो वही है शब्दों की पूंजी। और यदि किसी व्यक्ति के किसी व्यक्ति की मौन की धारणा अगर है, उसने मौन रखा है, तो हम देखते हैं कि तो भी उसे शब्दों का ज्ञान तो है ही, अर्थात शब्दों को जन्म देने की क्षमता तो उसमें है ही। शब्द यदि सत्य से जुड़े हैं, तो व्यक्ति हल्कापन महसूस करेगा, और यदि शब्द झूठ से जुड़े हैं, तो अपनी याददाश्त जो उसकी याददाश्त शक्ति है वो तेज रखनी होगी। अतः शब्द ही व्यक्ति की दौलत है, इसे कोई भी चुरा नहीं सकता। इसलिए अपने शब्दों को दूसरों के कल्याण अर्थ उपयोग करें। इसका प्रभाव हमारे पास खुशी के रूप में लौटकर आएगा। तो यही है शब्दों की पहचान और शब्दों की पूंजी। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं, और मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। और तब तक के लिए आप हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। पर स्थिति किसी और की स्थिति, वो परिस्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हर मुस्कान बोलो
1: बच्चा है महान जग में बच्चा है महान बोलो बच्चा है महान जग में बच्चा है महान बच्चे में है भगवान।
2: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
3: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

दिल तो भीगा प्यार में मुस्कुरा, दिल तो भीगा प्यार में मुस्कुरा, सपने में जो आते हैं अक्सर महफिल में उनको बुला।

रूपनगर की भीड़ में हमने खुद को भुला

0: आते हैं अक्सर मैं फिल्म में उनको बोला
1: कल अल्लाह
0: कल जो हुआ सो हुआ भूल जा सपने में जो आते हैं अक्सर मैं फिल्म में उनको बोला।

हो हाय हाय खाना जाए हाय हाय खाना जाए।

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या है।